मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:56 और 56 सेकेंड्स हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप सभी को मिलादुन नबी की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्टूडियो की घड़ी में 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के साथ गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। श्री मोदी ने आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और केंद्र राज्य के बीच मजबूत समन्वय पर बल दिया। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा जरूरी है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने कहा कि अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना 31 अगस्त को मुंबई की नौसेना गोदी में निस्टार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को नौसेना में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। 2016 में शुरू की गई यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के साथ वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की एक दशक की लंबी सफलता की सराहना की है।
1: दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेनदेन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेनदेन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेनदेन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। दीपेंद्र और ऋषु के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर सशक्त बनाना है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्याज की सस्ती बिक्री के लिए विभिन्न स्थानों पर कैंप लगाने और नेफेड से खरीद की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को संसदीय समिति ने सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दी है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय समिति की बैठक में एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच मतभेद रहे। बाद में रिपोर्ट की भाषा पर सहमति बनने के बाद समिति ने एजेंसी में सुधार और उसे मजबूत करने से जुड़ी मसौदा रिपोर्ट को स्वीकृति दे दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 4 दिन की यात्रा पर कनाडा के टोरंटो पहुंच गई हैं। इस दौरान श्रीमती सीतारामन कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांसुआ फिलिप शोपेनिए के साथ पहली भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। इसके बाद वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए अमरीका जाएंगी। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के 4थे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से

0: 38 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रातःकालीन ईश वंदन हमें असीम ऊर्जा, उत्साह, आनंद और शांति से परिपूर्ण कर देता है और भक्ति उस दीप की तरह है जो जीवन के अंधकार को दूर कर आशा का प्रकाश फैलाती है। आइए ईश्वर के श्री चरणों में अपनी भावनाएं अर्पित करते हुए सुनते हैं ये भक्ति रचना।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश का स्मरण हर शुभ कार्य का प्रथम चरण है। जहाँ गणपति का नाम होता है, वहाँ शुभता और सकारात्मकता का वास होता है। आइए अब अपने मन को श्रद्धा और भक्ति से भरते हुए प्रथम पूज्य गणेश जी का आराधना गणेश जी की आराधना करते हैं इस भजन के।
1: उपस्थित भक्त जनों, संगीत पीठ रसेश्वर विश्व विख्यात भजन गायक श्री हरिओम शरण आज की शाम हमारे बीच हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हरिओम शरण एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक मंत्र है। जैसा नाम है वैसा ही काम है। उनको देखने मात्र से ही हृदय में आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत होने लगती है और मन गदगद हो जाता है। श्री हरिओम शरण जी के भजनों में हिमालय सी ऊंचाई है, कल कल करते झरनों सा संगीत है, खिले हुए फूलों सी निर्मल सुगंध है और सागर सी गहराई है। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से हरिओम शरण जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपनी भक्तिपूर्ण मधुर आवाज से आज का कार्यक्रम आरंभ करें।

0: आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। लीजिए सुनिए ये संदेश, उसके बाद फिर से हम सुनेंगे भक्ति रचनाएं।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: बेटा, ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना। चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
3: हाँ माँ, मुझे सब पता है। ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
2: अरे वाह, मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
3: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
4: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम स्वयं में शांति, करुणा और धर्म का संदेश समेटे हुए है। उनका जीवन हमें संयम, कर्तव्य और आदर्श के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए अब रसास्वादन करते हैं इस अमर स्तुति का।

ईश भक्ति का भाव सचमुच अद्भुत होता है, जहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और हृदय स्वयं प्रभु से संवाद करने लगता है। भक्ति में श्रद्धा है, समर्पण है, शांति है और एक ऐसी शक्ति है जो मन को भीतर से आलोकित करती है। इसी पावन भक्ति भाव में डूबते हुए आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम की आखिरी पेशकश का।

0: अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरव ग्रंथों से। आज हम अभी उसको माफ कीजिएगा, प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। आज हम आपको सुनवा रहे हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार।
1: रसूल अल्लाह फरमाते हैं, आदमी के तमाम कर्मों का दारोमदार नियत पर है और आदमी को उसकी नियत के ही अनुसार फल मिलता है। किसी ने पूछा, ईमान क्या है? मोहम्मद साहब बोले, जब तुम्हें अच्छे अमल से मसर्रत और खुशी हो और बुरे काम से रंज और कलक, तो तुम मोमिन हो। तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी वही न चाहे जो अपने लिए चाहता हो। दूसरे लोगों के लिए भी वही चाहो और वही पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते और चाहते हो। उनके लिए भी उन चीज़ों को नापसंद करो जो अपने लिए नापसंद करते हो। मोमिन वो है जिसकी तरफ से अपनी जान और माल के बारे में लोगों को कोई खौफ और ख़तरा ना हो। वो शख्स मोमिन नहीं है जो खुद पेट भर कर खाए और उसके बराबर में रहने वाला उसका पड़ोसी फाका करता हो। मोमिन लेन तैन करने वाला नहीं होता और न गंदी बातें कहने वाला बदकलाम होता है। नहीं व्यभिचार करता कोई मोमिन। जिस वक्त वो व्यभिचार करता है उस वक्त वो मोमिन नहीं रहता। नहीं चोरी करता कोई मोमिन। जिस वक्त वो चोरी करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। नहीं शराब पीता कोई मोमिन। जिस वक्त वो शराब पीता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। और नहीं खयानत करता मोमिन। जिस वक्त वो खयानत करता है उस वक्त मोमिन नहीं रहता। मोमिन तो उल्फत और मोहब्बत, प्रेम और प्यार का मरकज़ है। उस आदमी में कोई भलाई नहीं जो दूसरों से उल्फत नहीं करता और दूसरे उससे उल्फत नहीं करते। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है जैसा कि तुम अल्लाह के लिए उसके बंदों से मोहब्बत करते हो। मोमिन बंदा न ज़बान से हमले करने वाला होता है, न लानत करने वाला, न बदगो, न गाली बकने वाला। आदमी की नेक बख्ती में से ये भी है कि अल्लाह की तरफ से उसके लिए जो फैसला हो वो उस पर राजी रहे। तुम दूसरों के मुतल्लिक बदगुमानी से बचो, क्योंकि बदगुमानी सबसे झूठी बात है। तुम किसी की कमज़ोरियों की टोह में ना रहा करो। जासूस की तरह किसी के ऐब मालूम करने की कोशिश ना किया करो। ना एक दूसरे पर बढ़ने की बेजा हविस करो, ना आपस में हसद करो, ना बुग्ज़ व कीना रखो और ना एक दूसरे से मुंह फेरो, बल्कि ऐ अल्लाह के बंदो, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक भाई भाई बनकर रहो। तुम अपने किसी भाई की मुसीबत पर खुशी का इजहार मत करो। हो सकता है अल्लाह उसे उस मुसीबत से छुटकारा दे दे और तुम्हें मुब्तिला कर दे। सबसे अच्छा दान है वो जिसमें बायां हाथ भी नहीं जानता कि दाहिने हाथ ने क्या दिया है। सबसे अच्छा दान है वो जो दिल से दिया जाता है। सबसे अच्छे हैं वे शब्द जो घायलों के घाव भरने के लिए होठों से निकाले जाते हैं। सबसे अच्छा दान है वो जो कोई गरीब अपनी मेहनत की कमाई में से अपनी औकात के मुताबिक देता है। हर ईमान वाले को दान देना चाहिए। लेकिन किसी के पास देने के लिए कुछ भी ना हो तब? लोगों ने पूछा। मोहम्मद साहब बोले, तब उस आदमी को अपने हाथ से मेहनत करके कुछ पैदा करना चाहिए और उस कमाई में से अपने लिए थोड़ा सा रखकर बाकी दूसरों को दान कर देना चाहिए। आदमी अगर काम करने लायक ही ना हो तब क्या करे? मोहम्मद साहब ने कहा, तब उसे चाहिए कि वो ज़रूरतमंदों और सताए हुए लोगों की मदद करे।
0: विचार बिंदु में अभी आप सुन रहे थे पैगंबर मोहम्मद साहब के विचार। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुने अपना कार्यक्रम।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां।
1: किसान भाई देखा खेती किसानी में उर्वरक का भाई जो प्रयोग किन जात है जौन है अगर ओहमा थोड़ा सा भी लापरवाही हो जाए तो जो मेहनत किन के फसल उगाई जात बाटे वो पूरी चौपट हो जात है। तो जितना भी कृषि रक्षा रसायन बाटे उनके जो प्रयोग बाटे ओकर का तरीका बाटे हमें का सावधानी बरतक बाटे एक बिना आज हमारे बीच में यहाँ भैया डॉक्टर राम लखन पाल विभागाध्यक्ष मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन कुल भास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज प्रयागराज। भैया आपके हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बाटे। सबसे पहले हम अपने किसान भाई के लिए जानकारी चाहब कि जो कृषि रक्षा रसायन बाटे ई का याटे।
2: आधुनिक और वैज्ञानिक युग में फसलों उत्पादन हेतु फसलों को कीट रोग और खरपतवार से बचाने के लिए जो कृषि रक्षा रसायन जैसे कीटनाशक फफूंदी नाशक तथा खरपतवार नाशक प्रयोग किए जाते हैं वास्तव में ये रसायन एक प्रकार के जहर होते हैं। अतः इन रसायनों के प्रयोग में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। जिस प्रकार यह रसायन रोगों एवं अन्य जीवों के लिए घातक हैं उसी प्रकार मानव शरीर में भी इनका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मानव शरीर में इसका प्रवेश नाक मुंह तथा त्वचा के द्वारा होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न संस्थानों जैसे पाचन तंत्र श्वसन स्नायु एवं विभिन्न ग्रंथियों और अंततः संपूर्ण शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से कीट रोग और खरपतवारनाशी रसायन जो कृषि के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं असावधानी एवं अज्ञानता पूर्वक प्रयोग करने पर प्राण घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। अतः रसायनों से बचाव के लिए इनको क्रय करने भंडारण रखरखाव यंत्र घोल बनाते समय छिड़काव और छिड़काव के बाद कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए।
1: हम जानकारी चाहब आपसे जो है कि जो भी किसी अच्छा रसायन है भैया जेका हमका प्रयोग करे बटे जब भी उसका अपने यहाँ लेके आवत है तो का भंडारण के का तरीका बा रखरखाव का तरीका बा खास कर में कौन कौन से ऐसी सावधानी बा जौन अपने किसान भाइयों का बरते।
2: कीटनाशकों के क्रय करने के लिए सावधानियों के क्रम में यह है कि कृषि रक्षा रसायनों को आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: और अगर उनका थैला फटा हुआ हो या सील लगे हुए ना हो खुले हुए हो या रिसाव हो रहा हो तो ऐसे रसायन के डिब्बे को नहीं खरीदना चाहिए। प्रमाणिक लेबल लगे हुए रसायन ही खरीदना चाहिए तथा उस पर रसायन का नाम निर्माण की तिथि तथा अंतिम प्रयोग तिथि अवश्य लिखी होनी चाहिए। भंडारण में जब सावधानी रखनी होती है तो जहां तक हो सके इन्हें बच्चों और पशुओं की पहुंच से दूर ऊंचे स्थान पर सूर्य के प्रकाश से बचाव कर ताले में बंद करके रखना चाहिए। खाद्य पदार्थों तथा टॉनिक की शीशियों के बीच में इन रसायनों को नहीं रखना चाहिए। मकान में विशेषकर उस कमरे में जहां पर भोजन या सोने का स्थान हो इन रसायनों को कदापि नहीं रखना चाहिए। इनकी विषैली गंध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। रसायनों के रखरखाव में और उनके यंत्रों के प्रयोग में भी सावधानी बरती जानी चाहिए। अधिक मात्रा में इन रसायनों के डस्ट या दानेदार रूप में होने पर सिर या कंधे या पीठ पर लाद कर लाने से बचना चाहिए। इन रसायनों को खाद्य पदार्थों के साथ रखकर कभी नहीं लाना चाहिए। रिसते हुए या खराब यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उचित प्रकार का नोजल प्रयोग करना चाहिए। बंद नोजल को मुंह से हवा मारकर कभी साफ नहीं करना चाहिए बल्कि पुराने टूथब्रश में कपड़ा बांधकर उसका प्रयोग करना चाहिए। और घोल बनाते समय सावधानियां ये रखनी चाहिए कि हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग करें ताकि नोजल में डस्ट पार्टिकल ना फंसे रहें।
1: बिल्कुल भैया सही कहे। हम कहीं देखा ये तो हो गया कि जो हमारा सावधानी बरते की बात है लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब घोल जब बनावा जाता भाई अपन रसायन अपने

0: फसल के लिए जौन है जो ले जाता है डाले बिना, तो वह समय का प्रमुख बाटे जौन सावधानी बा ओके बारे में?
1: जब घोल छिड़कते हैं रसायनों को तो उस समय सावधानी ये बरतनी चाहिए कि छिड़काव जब करते हैं तो उस समय फुल आस्तीन के कपड़े पहनना चाहिए और रबड़ के दस्ताने, जूते, मास्क और आंखों के बचाव के लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। केवल संस्तुत मात्रा और उनकी सांद्रता वाला घोल ही प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव साइंग तथा बुरकाव सुबह के समय करना चाहिए। छिड़काव करते समय पत्तियों पर ओस या पानी की बूंदे नहीं होना चाहिए, जबकि बुरकाव के समय पत्तियों पर ओस पड़ी रहे तो अच्छा होता है। कभी भी हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव नहीं करना चाहिए और छिड़काव के बाद में भी सावधानियां रखनी चाहिए। जिस खेत में रसायन का प्रयोग किया गया हो उसमें बोर्ड लगा देना चाहिए कि यह कीटनाशी या रोगनाशी का प्रयोग हुआ है। छिड़काव के बाद स्प्रेयर तथा बाल्टी को साबुन के पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए और छिड़काव में प्रयुक्त हुए कंटेनर, बाल्टी आदि सामानों को घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। बचे हुए घोल का प्रयोग अगर तुरंत नहीं करना है तो उसे तथा खाली हुए रसायन के डिब्बों को कुचलकर बेकार जगह पर गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए। छिड़काव के बाद कपड़ों को साफ कर धूप में सुखाना और साबुन से स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात ही खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। अन्य विशेष सावधानियों में यह है कि स्वस्थ व्यक्ति को ही छिड़काव के लिए प्रयोग करना चाहिए। छिड़काव करने वाले व्यक्ति को एक दिन में 5 घंटे या एक सप्ताह में 15 घंटे यानी एक दिन के अंतर से ही उसको छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय या घोल बनाते समय दवा का दुष्प्रयोग होने पर तुरंत चिकित्सीय सहायता लेनी चाहिए ताकि उसको कोई हानि ना हो। अगर इस तरह से हम रसायनों का कृषि में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर ही सावधानी के साथ करेंगे तो किसी को भी कोई हानि नहीं होगी और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकेंगे।
0: आप समय जानना चाहेंगे, देखें ये कोनो भी रसायन अगर फसल में डाला जाता बाटे तो यह भी देखा जाता है कि भाई शरीर के साथ साथ फसल के भी नुकसान न करे, तो ओका कौन सा ऐसा उपयुक्त समय बाटे जेका फसल में जब डाला जा सके, सुबह का, शाम का, भी दोपहर, इस तरह से भी कुछ सावधानी बरता जाए?
1: बिल्कुल, ये हो कि जब हवा न चलती हो और शांत उसमें हो, सुबह अगर छिड़काव करेंगे तो पत्तियों पर ओस रहेगी तो ओस के समय बुरकाव करना चाहिए ताकि वो पत्ती पर चिपक जाए, और अगर हम ड्रॉप रूप में करेंगे तो वो पत्ती पर आके फिर ड्रॉप से ड्रॉप मिलकर के और लिक्विड बना के वो नीचे चला जाएगा तो हमारी फसल को उतना लाभदायक नहीं होगा, या जिनके लिए सुरक्षा के लिए कीटों के लिए डालते हैं उन पर उसका असर कम होगा। तो सबसे समय उपयुक्त सुबह या शाम ही है, दिन में नहीं डालना चाहिए।
0: अच्छा, इसमें सिंचाई के देखा जाता है कि बहुत से लोग सिंचाई के बाद में या पहले भी दवा का छिड़काव करते थे, तो एक सही मतलब कौन सा ऐसा तरीका बटे?
1: एक तरीका और भी है कि जैसे हम जब फसल की सिंचाई करते हैं तो इसमें एक ड्रॉप विधि होती है जिससे पानी जहां से हमारी नाली में आता है वहां पर एक कंटेनर में रख के और ड्रॉप ड्रॉप करके वो गिरता रहता है, तो उससे भी हमारी फसल में छिड़काव वो क्या नाम पानी के द्वारा आता है। लेकिन वो चीजें जो स्प्रे में प्रयोग करते हैं छिड़काव के रूप में उसमें उसका असर नहीं हो पाता है, वो भूमि में प्रयोग के लिए माना जाता है, यानी मृदा का जब संशोधन करना हो उसके लिए वो ज्यादा बेटर होता है।
0: अच्छा अच्छा, मतलब वो जो रसायन का जो प्रयोग बाटे वो जब भूमि संशोधित करे बाटे या अपन जमीन सुधारे बात तो वो पानी के बहाव के साथ कैसे
1: कर सकते हैं उसको।
0: अब बाकी भाई जो फसल जब उगी आई बाटे तो कोनो रोग बीमारी लग गई बाटे तो
1: उसके लिए
0: स्प्रे के माध्यम
1: छिड़काव करने चाहिए।
0: अच्छा, एक के लिए भी मशीन भी आवत हुए
1: जी? एक स्प्रे आता है, स्प्रे दो तरह के होते हैं, एक तो मतलब ह्यूमन बीइंग द्वारा मानव चालित होता है और दूसरा पावर होता है, जो हम जब ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो ट्रैक्टर से या उस पर रख के उसका स्प्रे करते हैं, उसमें भी आदमी की जरूरत पड़ती है, और जो पीठ पर लाते हैं उसमें कम मात्रा में 5 से लेकर 10 लीटर या 15 लीटर तक जितनी क्षमता हो मनुष्य की उस हिसाब से हम उस कंटेनर को यूज करके और प्रयोग कर सकते हैं।
0: तो मशीन के मतलब गुणवत्ता भी देखा ही पड़ा कि किस तरह का मशीन बा, का सावधानी हमारे रखे पड़ता
1: है? उसकी गुणवत्ता के लिए यह है कि हमें कितने एरिया में छिड़कना है उसी हिसाब से हम उसका प्रयोग करते हैं। अगर कम मात्रा में है तो ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है,
0: बिल्कुल
1: तब हम एक आदमी द्वारा ही या दो आदमी द्वारा ही कर सकते हैं।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई अभी सुन रहे थे डॉक्टर राम लखन पाल से प्रवीण कुमार मिश्र की बातचीत। बातचीत का विषय था कृषि रसायनों के प्रयोग में सावधानियां। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी, इस विषय पर डॉक्टर मुकेश खरे की वार्ता।
1: श्रोताओं नमस्कार। नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी, आइए सुनते हैं इस विषय पर प्रयागराज के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मुकेश खरे से की गई बातचीत। आज सुनते हैं इसका पहला भाग। आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है प्रयागराज के प्रख्यात नेत्र चिकित्सक डॉक्टर मुकेश खरे को।
2: धन्यवाद। मैं आंखों का डॉक्टर हूँ और कुछ नेत्रदान के विषय में ही बात करूंगा।
1: क्या बात है। तो श्रोताओं, सुना आपने कि जैसा कि डॉक्टर मुकेश खरे ने बताया कि आज हम नेत्रदान के ऊपर बात करेंगे। क्या है नेत्रदान, हम कैसे कर सकते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी क्या है समाज के प्रति। डॉक्टर मुकेश खरे, अपने बात किसी की दुनिया को रोशन कर देना बहुत बड़ी बात होती है। हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म से ना देख पाता हो या किसी दुर्घटना में उसकी आंखें चली गई हों, उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो। सबसे पहले ये बताएं कि कोई व्यक्ति नेत्रदान क्यों करे, कोई क्यों अपनी आंखें किसी और को दे।
2: नेत्रदान हमेशा मृत्यु के पश्चात ही किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में नेत्रदान करना भी चाहे तो नहीं कर सकता है। ये लॉ है, हमारे ही देश में नहीं पूरे संसार में कोई जीवित व्यक्ति अपनी आंख का दान नहीं कर सकता है। नेत्रदान मृत्यु के पश्चात किया जाता है। क्यों किया जाता है? हम लोग जब एक दूसरे को देखते हैं सामने से तो हम लोगों को आंखें दिखती हैं काली सी बीच में
1: जी।
2: और दो पलकें होती हैं, एक ऊपर की एक नीचे की। जब वो पलकें बंद हो जाती हैं तो आंखों को अपने में समेट लेती है, आँख को सिक्योर कर देती है। जब आँखें खुलती हैं तो हम लोग देखते हैं। जो हम लोगों को एक दूसरे की काली पुतली दिखती है वो वास्तव में काली नहीं होती है, पूरी तौर पे ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन उसके पीछे एक झिल्ली होती है जिसकी वजह से वो काली दिखती है। इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और कभी कभी चोट लगने से, घाव बन जाने से या किसी ऑपरेशन की वजह से ये सफ़ेद हो जाती है। और जब सफ़ेद हो जाती है तो इसके थ्रू जो रोशनी जाती है दिमाग तक वो नहीं जा पाती है। चिकित्सा विज्ञान ने बहुत प्रोग्रेस की है और अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि इस सफ़ेदी को हम लोग हटा सकते हैं और उसकी जगह एक दूसरी पुतली लगा सकते हैं। लेकिन पुतली हमको एक ह्यूमन बॉडी से ही चाहिए, वो चाहे नवजात शिशु हो या 90 साल का वृद्ध व्यक्ति हो। कोई भी व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। केवल कुछ चीज़ें जैसे रेबीज है, यदि व्यक्ति HIV पॉजिटिव है या हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है या सेप्टिसीमिया जिसमें कि खून में संक्रमण फैल जाता है, इन चार चीज़ों को छोड़ दें तो हर व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है। और उसकी काली पुतली को हम लोग लेके जिस व्यक्ति की पुतली सफ़ेद हो गई है वहाँ पे लगा देते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि आप बीच का हिस्सा लेकर के प्रत्यारोपित करते हैं, इसका मतलब ये है कि पूरी आँख नहीं निकाली जाती नेत्रदान के समय?
2: नहीं, हम लोग आँख पूरी निकालते हैं, लेकिन प्रत्यारोपण जो है वो केवल काली पुतली का ही किया जाता है। पूरी की पूरी आँख किसी की नहीं बदली जा सकती है। साइंस ने ये प्रोग्रेस आज तक नहीं की है, लेकिन हम लोग दोनों आँखें निकाल लेते हैं पूरी की पूरी। फिर वो आँखें आई बैंक जाती हैं, आई बैंक में उसका परीक्षण होता है कि वो आँख इस लायक है कि नहीं कि दी जा सके, किसी को लगाई जा सके। और फिर वो दोनों आँखें आई बैंक के जो रजिस्टर होते हैं जिसमें सबसे ऊपर के दो लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है और उनको लगाई जाती है। इसमें किसी भी तरीके का कोई पक्षपात नहीं होता है। और जो डोनर है, जिसने आँख का दान किया है, उसकी फैमिली और रेसिपिएंट की फैमिली दोनों एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं कि किसने क्या किया है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बातचीत प्रयागराज के प्रख्यात नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश खरे से, नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी। आज आपने

0: ना इसका पहला भाग, इसका दूसरा भाग हम आपको आगे के स्वास्थ्य चर्चा के कार्यक्रम में सुनवाएंगे। जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर मुकेश खरे की वार्ता, नेत्रदान, भ्रांतियां और हमारी जिम्मेदारी।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आपको याद दिला दें कि आप हमारे कार्यक्रम सुन सकते हैं दिनों दिन लगातार न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी। और अब लीजिए सुनिए हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। रात 9:30 पर आपको सुनवाएंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ का आनंद लीजिएगा सुबह 7 से। फिल्मों से भजन कार्यक्रम सुनवाएंगे सुबह 7:10 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे सुबह 7:30 पर पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन। दोपहर 12:15 पर सुनिएगा श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन। और रात 10:30 पर पंडित गोपाल मिश्र का सारंगी वादन होगा।

नमस्कार प्रयागराज कार्यक्रम रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 9 बजे, दिन में 11:30 पर, शाम 5 बजे, रात 8 बजे और रात 10 बजे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर मिताली शर्मा से गीत और भजन का आनंद लीजिएगा। वॉइस ऑफ प्रयागराज सुनेगा सुबह 10:05 पर। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकमाधुरी में इंद्रजीत पटेल और साथियों से लोकगीत सुनेगा सुबह 10:30 पर। फिल्म संगीत एक ही कलाकार सुनेगा सुबह दिन में 11 बजे से। अपने फोन कॉल्स पर आधारित अपने पसंद के फिल्मी गाने सुनेगा। कार्यक्रम हेलो फरमाइश में दोपहर 12:30 पर प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। सवा बजे गृहलक्ष्मी कार्यक्रम होगा। दोपहर 2:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनेगा NCERT। युवा साथियों को अपना कार्यक्रम युवाणी होगा शाम 5:15 पर। शाम 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रद्धा रावत की वार्ता जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि। साथ ही अजय कुमार से नीति वचन और इंद्रजीत पटेल से लोकगीतों का भी आनंद उठाइएगा। शाम 7:30 पर सुनेगा कार्यक्रम बोलते नगमे। इसमें किस्सा गोई सआदत हसन मंटो पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। प्रस्तुति होगी नेहा गुप्ता की और रात 8:30 पर होगा सबरस कार्यक्रम। ये थे हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।

मेगाहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। समय हो चला है श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ का आनंद लेने का। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं श्रीरामचरितमानस से संगीत में पाठ।

पार्वती के मन में शिव जैसे बावले वर की कामना जगाने वाले नारद जी को जब हिमवान तथा उनकी पत्नी मैना के विषाद का समाचार मिला, तो उन्होंने पार्वती के पूर्व जन्म की कथा बताकर हिमवान दंपति को सांत्वना दी। शोकाकुल हिमवान तथा मैना को ये ज्ञात नहीं था कि भ्रमवश सीता का वेश धारण करने के कारण शिव ने सती का त्याग किया था तथा सती ने पिता दक्ष प्रजापति के घर यज्ञाग्नि में अपने आप को भस्म कर दिया था। फिर उन्होंने पार्वती के रूप में जन्म लिया और हजारों वर्षों की तपस्या करके शिव को पुनः वर रूप में पाया है। ये कथा सुनकर मैना, हिमवान, सभी स्त्री पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध समस्त नगर निवासी प्रसन्न हुए और बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गए। प्रस्तुत है जेवनार विवाह मंडप में निर्मित वेदी, ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवताओं का आह्वान, उपस्थित नारी समुदाय के व्यंग्य विनोद का ये प्रसंग।

अभी आपने आनंद लिया श्री रामचरितमानस से, संगीतमय पाठ का स्वर था अनुराधा पौडवाल का और संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं और श्रोताओं लीजिए अब सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मों से भजन।

फिल्मों से भजन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म से भजन। उदित नारायण, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर की शब्द रचना, एआर रहमान का संगीत था। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं साया फिल्म से ये भजन। के और श्रेया घोषाल की आवाजें, सैयद कादरी की शब्द रचना, अनु मलिक का संगीत।

0: अभी आपने सुना फिल्मों से भजन कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। ये समाचार हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें एक निर्णय, 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा देने का है। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं यूपी रोडवेज की सामान्य बसों में वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। जल्दी ही इनके लिए विशेष स्मार्ट कार्ड बनाने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। सरकार का अनुमान है कि प्रतिदिन करीब 88,000 से अधिक महिलाएं इस सुविधा का लाभ ले सकेंगी। इस निशुल्क बस यात्रा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ से करेंगे। प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण 6 लेन में किया जाएगा, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाएगा।
1: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारित है, अब तो 8 लेन। आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार होगा। इसमें खासतौर से जनपद बिजनौर उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH-34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
0: मंत्रिपरिषद ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 25 लाख टैबलेट खरीद के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मानजनक जीवन और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण कल्याण नियमावली 2014 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके अंतर्गत देखभाल न करने वाले या अत्याचार करने वाले बच्चों को अब वृद्ध माता पिता अपनी संपत्ति से आसानी से बेदखल कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों और चिकित्सा विश्वविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले MBBS के छात्रों का स्टाइपेंड 12,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सरकार के इस निर्णय से सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों में अध्ययनरत करीब 4,000 इंटर्न चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 वर्ष पूरे हो गए। वर्ष 2016 में शुरू की गई भुगतान की डिजिटल प्रणाली UPI ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की एक दशक लंबी सफलता को सराहनीय बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपने UPI अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि UPI की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। UPI से लेनदेन की मात्रा में लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मिशन रोजगार के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में 3,572 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसमें उत्तर प्रदेश

0: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग के लिए चयनित 3,446 प्राविधिक सहायक और मंडी परिषद में 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार अगले 6 माह में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर के नौजवानों की दुनिया भर में मांग है।
1: आज दुनिया आ रही है, जर्मनी आ रहा है, इसराइल आ रहा है, कहता है साहब यूपी के नौजवान को हमारे यहाँ भेजे, हम भी अपने यहाँ नौकरी। और मुझे अच्छा लगता है जब यूपी के नौजवानों की लोग तारीफ करते हैं। आज दुनिया मांग रही है यूपी के नौजवानों। 17 के पहले तो ये स्थिति नहीं थी।
0: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चीनी की कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ जनता का ही नहीं बल्कि भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने का सामर्थ्य रखता है।
1: यूपी में चीनी की कमी नहीं, यूपी की एक महीने की कुल खपत है 4,00,000 टन चीनी, हमारे पास मौजूद है 28,00,000 टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90,00,000 टन यानी 900,00,000 क्विंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से, यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है।
0: प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े सभी अस्पतालों को योजना के नियमों और दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि योजना के नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल द्वारा अवैध वसूली, फर्जी बिलिंग और नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगाने के साथ दंड का प्रावधान किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बूथ स्तरीय अधिकारी भारत के लोकतंत्र की नींव हैं। अपने लखनऊ दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने कल लगभग 500 बूथ स्तरीय अधिकारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने बूथ स्तरीय अधिकारियों से आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान मतदान बढ़ाने और प्रत्येक पात्र मतदाता तक पहुंचने की अपील की।
2: बूथ लेवल ऑफिसर भारत के लोकतंत्र की आधारशिला, हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और इतना अच्छा वो काम करते हैं और सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए लखनऊ आए भी।
0: प्रदेश भर में आज ईद ए मिलादुन नबी मनाया जा रहा है। ये हजरत मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश का दिन है। इस अवसर पर लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में जुलूस ए मोहम्मदी निकाला जाएगा। इसे लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और बदायूं में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार राज्य में 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए 1,618 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। अब तक 14,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई स्थानों पर गरज और चमक के साथ बौछारें पड़ने और पश्चिमी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज की बसों में मिलेगी निशुल्क यात्रा की सुविधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया निर्णय। गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक होगा विस्तार। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी। 6 माह में 1,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देगी प्रदेश सरकार। मिशन रोजगार के अंतर्गत नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश भर में मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी। लखनऊ सहित कई जिलों में निकाला जाएगा जुलूस ए मोहम्मदी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 294 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन। राग है तोड़ी और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संपत लाल। तो लीजिए सुनिए पंडित दिनकर राव देशपांडे का राग तोड़ी में ख्याल गायन।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित दिनकर राव देशपांडे का ख्याल गायन। राग था तोड़ी और आपके साथ तबले पर संगत की थी संपत लाल ने।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने को अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात, रिले कर रहे हैं दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव 25 अगस्त से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। इस महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधेयक को मंजूरी दी थी। इसके बाद इसे कानून का रूप मिल गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की प्रौद्योगिकियों को भारतीय रक्षा उद्योग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और घरेलू मूल्यवर्धन करना है। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ये पोत भारत की रक्षा जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। ये पोत पनडुब्बी बचाव अभियानों में भी नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
2: अब तक 9,13,000 से अधिक महिलाओं ने इस योजना के लिए पंजीकरण कराया है और 6,52,000 से अधिक आवेदन अंतिम रूप से जमा किए जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कहा कि वित्तीय सहायता अगले महीने की पहली तारीख से सीधे महिला लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा की जाएगी। दिल्ली के वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए 5,110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। दिल्ली सरकार ने सभी पात्र महिलाओं से समय पर अपना ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने का भी आग्रह किया है। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राजधानी में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है। सरकार ने कहा है कि कीमतें बढ़ने पर नेफेड से प्याज और चीनी खरीद कर लोगों को उचित दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ गठित करने के विचार पर सहमत हो गया है। केंद्र सरकार ने याचिका में सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमी लेयर से जुड़े उम्मीदवारों पर न्यायालय के 11 मार्च के फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार और मजबूत बनाने से जुड़ी सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की ये छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। इसके माध्यम से देश का पहला आधार आधारित राष्ट्रीय असंगठित श्रमिक डेटाबेस तैयार किया गया है। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। नई दिल्ली में स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने मीडिया को बताया कि देश में वर्तमान में फैल रहा इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान अवलोकन किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 25 अगस्त से 2 सितंबर तक कनाडा और अमेरिका की 9 दिन की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करना है। कनाडा की 4 दिन की यात्रा के दौरान श्रीमती सीतारामन वहां के वित्त मंत्री फ्रांसवा फिलिप शॉपिने के साथ पहली आर्थिक और वित्तीय वार्ता में हिस्सा लेंगी। अमरीका में वित्त मंत्री शिकागो, एशविल और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। भारत और चीन ने सीमा

0: मुद्दे के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।
1: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों ने अक्टूबर 2024 में कजान और पिछले साल अगस्त में तियाजिन में बनी सहमति को लागू करने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और 3 निर्धारित सीमा व्यापार मार्गों से सीमा व्यापार समेत लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने का भी स्वागत किया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं विकास नापा।
0: भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुई। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को पूरा करने पर विचार किया। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश में वृद्धि करने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये भारत और मोरक्को के बीच साझेदारी को अधिक मजबूत तथा गतिशील बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। कनाडा ने अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार विवाद के बीच 27 अरब 60 करोड़ डॉलर के अमेरिकी सामान पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने का फैसला किया है। ये जवाबी शुल्क 8 सितंबर से लागू होंगे। गोवा के परनेम स्थित पत्रा देवी शहीद स्मारक का आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अनावरण करेंगे। ये स्मारक गोवा के मुक्ति संग्राम में बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति और उनके योगदान को समर्पित है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि यह स्मारक उन 31 सत्याग्रहियों की याद में बनाया गया है जिन्होंने 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने की मांग को लेकर सत्याग्रह किया था। गोवा में प्रवेश की कोशिश के दौरान पुर्तगाली सैनिकों की गोलीबारी में उन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। स्मारक परिसर में शहीदों की याद में मूर्तियां और अलग अलग संरचनाएं बनाए गए हैं। पत्रा देवी शहीद स्मारक शहीदों को श्रद्धांजलि देने, इतिहास को समझने और आने वाली पीढ़ियों को गोवा के मुक्ति संग्राम से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने की उम्मीद है। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
0: पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। उधर केरलवासी ओणम का सबसे शुभ दिन तिर ओणम मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को ओणम के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि खुशियों और उल्लास का ये रंगारंग त्यौहार पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने ईद ए मिलाद उन नबी की भी शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, केरलम और माहे में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के बीच आज सुबह राज्य में भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिमला में सुबह करीब 5:46 पर हल्के झटके आए जो कुछ सेकंड्स तक चले। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानंदा ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। फाइनल मैच प्रज्ञानंदा और मौजूदा चैंपियन फेबियानो कारुआना के बीच खेला जाएगा। शीर्ष 3 स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ी अगले साल के ग्रैंड चेस टूर के लिए सीधे क्वालिफाई करेंगे। भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेलेगा। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन से पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब आज के

0: समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान की खबर है, देश में अब निजी कंपनियां भी मिसाइल का निर्माण कर सकेंगी। DRDO की तकनीक निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करने की मंजूरी। अमर उजाला लिखता है, सरकार देगी तकनीक, निजी कंपनियां बनाएंगी मिसाइलें। इस फैसले से देश में ही मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, H1N1 संक्रमण के मामले बढ़े, स्कूलों को दी हिदायत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, सीमा विवाद का समाधान तलाशने पर भारत चीन सहमत। NSA अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी की अगुवाई में हुई विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। जनसत्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का कथन दिया है, वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में चढ़ावा चोरी नहीं होने देंगे। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, यूपी में बुजुर्ग महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर। स्कॉलरशिप से वंचित स्टूडेंट्स के लिए फिर खुलेगा पोर्टल, मेडिकल क्षेत्र में भी भत्ता बढ़ा। पंजाब केसरी ने 48 साल पहले की खौफनाक घटना को याद किया है, गीता और संजय के हत्यारे रंगा बिल्ला को आज भी नहीं भूली दिल्ली। 26 अगस्त 1978 को मासूम भाई बहन का अपहरण कर दोनों की हत्या कर दी गई थी। कल हुई मूसलाधार वर्षा पर दैनिक भास्कर ने लिखा है, थम गई दिल्ली, गुरुग्राम में सड़कें धंसी, हाईवे पर गहरा गड्ढा, NCR में जलभराव से लगा जाम।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति बैठक में 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा। दिल्ली सरकार आज लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4,000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। भारत और चीन ने सीमा विवाद के राजनीतिक समाधान की दिशा में काम जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। और दुनिया भर में ईद ए मिलाद उन नबी की रौनक, केरलम वासी मना रहे ओणम का सबसे शुभ दिन तिरुओणम। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिव्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 30,000 करोड़ रुपीज एट प्रगति मीटिंग। Union Home Minister Amit Shah sets one-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agreed to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today, Keralites across the globe celebrating Thiruvonam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Keimer. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi reviewed infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at 53rd Pragati meeting in New Delhi yesterday. The Prime Minister has stressed the need to explore common utility corridors for infrastructure services wherever feasible, particularly while planning major transport and infrastructure projects. Mr. Modi called upon ministries and states to examine such integrated approaches at the planning stage itself, keeping in view their technical and economic feasibility. He said that speed of execution must be accompanied by uncompromising quality. More from our correspondent.
3: The Prime Minister called upon ministries, states and implementing agencies to adopt modern technologies and strengthen quality assurance and supervision at every stage. During the meeting, Mr. Modi reviewed 6 key infrastructure projects across the railway, road and power sectors spanning 9 states with a cumulative cost of more than 30,000 crore rupees. The Prime Minister further emphasized that delays in infrastructure projects have consequences beyond cost escalation, as they also also postpone the benefits intended for citizens, businesses and the economy. He said that infrastructure projects should be viewed and monitored as an integrated whole rather than isolated sections, stretches or packages. During the meeting, ministries and states were asked to adopt an end-to-end approach and address critical gaps that could delay the overall commissioning and delivery of benefits.

0: carries a timeless and universal message: the world is one family. It calls upon us to look beyond artificial divisions and differences, recognize the bonds that unite humanity, and embrace a spirit of mutual respect, harmony, and oneness. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
1: Thank you, Shagun. Most of the dailies lead with NSA Ajit Dobhal's visit to China. The Tribune headlines, India-China eye political fix for boundary dispute, stress need for peace and tranquility along LAC. Newspapers also report Prime Minister reviewed 30,000 crore rupees infra projects. The Asian Age headlines, Modi flags digital arrest, pushes for strict surveillance. The Indian Express citing RBI's monthly state of economy informs, Indian economy resilient amid global uncertainties. The paper adds, India's robust macroeconomic fundamentals continue to provide cushion to the domestic economy. The Statesman writes, Defence Minister Rajnath Singh clears transfer of DRDO missile tech to Indian defence industry. Hindustan Times headlines, 98% flu cases this season due to H1N1 swine flu, says ICMR. And finally, Times of India informs, Dolly Parton, queen of country music, dies at 80. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth 30,000 crore rupees at Pragati meeting. Union Home Minister Amit Shah sets 1-year deadline for 100% implementation of 3 new criminal laws. Delhi government to hand over approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under Lakshmi Yojana today. India and China agree to continue their work in seeking political settlement of boundary question for overall and long-term interests. Eid Milad-un-Nabi, birth anniversary of Prophet Muhammad being celebrated today. Keralites across the globe celebrating Thiruvanam, most auspicious day of Onam. And R. Pragyanan cruises into finals of Grand Chess Tour's last leg after 19-9 win over Germany's Vincent Kaimer. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ममालिक के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में केरला से ताल्लुक रखने वाले लोग थिरुओनम यानी ओनम के सबसे मुकद्दस दिन को भी मना रहे हैं। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर ट्रांसपोर्ट और बुनियादी ढांचे के बड़े प्रोजेक्टों की मंसूबाबंदी के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कान तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही

0: के दौरान जहां भी मुमकिन हो बुनियादी ढांचे की खिदमात के लिए मुश्तरका यूटिलिटी कॉरिडोर्स बनाने के इम्कान तलाश करने पर जोर दिया है। सेवा तीर्थ में प्रगति की 53वीं मीटिंग की सदारत करते हुए जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों से कहा कि प्रोजेक्टों की मनसूबाबंदी के मरहले में ही इस तरह के मरबूत तरीकों का जायजा लिया जाए और इसके लिए तकनीकी और इकतसादी इम्कान को मलहूज रखा जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्टों की तकमील में तेजी के साथ मेयार पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। पेश एक रिपोर्ट।
1: वजीर आजम ने वजारतों रियासतों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वाली एजेंसियों से जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाने और हर मरहले पर मेयार की जांच और निगरानी के निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने रेलवे, सड़क और बिजली के शोबों से मुतालिक बुनियादी ढांचे के 6 अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया। ये प्रोजेक्ट्स 9 रियासतों में फैले हुए हैं और इनकी मजमूई लागत 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मीटिंग में राबते के निजाम को मजबूत बनाने, सनअती और इकतसादी सरगर्मियों को फरोग देने और सरकारी खिदमात को बेहतर बनाने के लिए बेहद अहम प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। इस सिलसिले में खासतौर पर मुकर्रर वक्त की पाबंदी, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान तालमेल, जेर इल्तवा मसाइल के हल और प्रोजेक्टों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मीटिंग के दौरान वजारतों रियासतों से कहा गया कि वो शुरू से आखिर तक एक मरबूत तरीक़ेकार अपनाएं और उन अहम खामियों या कमियों को दूर करें जो मजमूई तौर पर प्रोजेक्टों की तकमील फ़ाल होने और उसके फवायद की फराहमी में ताखीर का सबब बन सकते हैं। जनाब मोदी ने वजारतों और रियासती हुकूमतों के दरमियान फ़ाल और पेशगी इकदामात पर मबनी काम के कल्चर को फ़रोग देने पर भी जोर दिया ताकि प्रोजेक्ट के नफाज के हर मरहले पर ज्यादा जिम्मेदारी और मिल्कियत का एहसास हो। डिजिटल ज़रई मिशन के तहत एग्री स्टैक का जायजा लेते हुए वजीर आजम ने ज़रई आदाद शुमार से ज्यादा फायदा हासिल करने के लिए मसनूई जहानत AI समेत जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने की जरूरत पर जोर दिया। दिल्ली से प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत को हर शोबे में आलमी सतह पर कायद के तौर पर उभरने के लिए अपनी दाखिली सलामती को मजीद मजबूत करना होगा। नई दिल्ली में सिक्योरिटी की हिकमत अमली से मुतालिक कौमी कॉन्फ्रेंस NSSC के इख्तिताम इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का हदफ मुकर्रर किया है और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के लिए मजबूत दाखिली सलामती बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर साबिका हुकूमतों ने मुनशियात, नक्सलिज्म और शिमाल मशरकी रियासतों के मसाइल को बड़े बहरानों में तब्दील होने से पहले ही भांप लिया होता तो मुल्क को कई दहाइयों तक इनके संगीन नतायज नहीं भुगतने पड़ते। वजीर दाखला ने कहा कि हुकूमत ने दाखिली सलामती के चैलेंज वाले इन तीनों महाज पर मौजूद संगीन मसाइल पर काबू पा लिया है और इस कामयाबी का पूरा सहरा रियासती पुलिस फोर्सेज, मरकजी एजेंसियों और मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज को जाता है। उन्होंने कहा कि NSSC फोरम को चाहिए कि वो आइंदा 15 से 20 साल के रुझानात का तजिया करे, मुमकिन तौर पर सामने आने वाले मसाइल की निशानदेही करे और पहले ही निमटने के लिए मुअस्सर हिकमत अमली तैयार करे। जनाब शाह ने मजीद कहा कि 3 नए फौजदारी कवानीन अगले 1 साल के अंदर 100% नाफिज कर दिए जाएंगे। इन कवानीन का मकसद फौजदारी मुकदमात को 3 साल के अंदर सुप्रीम कोर्ट की सतह तक निपटाने और सजा की शरह में 25% इजाफा करना है। दिल्ली हुकूमत आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे सपुर्द करेगी। इस स्कीम के तहत अहल खवातीन को हर माह 2,500 रुपए माली मदद फराहम की जाएगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: दिल्ली हुकूमत ने बताया कि अब तक 9,13,000 से ज्यादा खवातीन इस स्कीम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, जबकि 6,52,000 से ज्यादा दरख्वास्तें जमा की जा चुकी हैं। हुकूमत के मुताबिक माली इमदाद अगले महीने की 1 तारीख से खातून मुस्तफीदीन के बैंक खातों में बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। दिल्ली के 2026-27 के बजट में इस स्कीम के लिए 5,110 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। इस स्कीम का मकसद खवातीन को माली तहफ़ फराहम करना और उन्हें खुद कफील बनाना है। दिल्ली हुकूमत ने तमाम अहल खवातीन से अपील की है कि वो मुकर्रा वक्त पर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लें। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
0: वजारत दाखिला ने जुनूबी रियासत केरला के नए नाम केरलम को बाजाबता तौर पर नोटिफाई किया है, जिसका इतलाक कल यानी 25 अगस्त से हुआ। 11 अगस्त को लोकसभा में और उससे अगले दिन राज्यसभा में केरला का नाम तब्दील करने से

0: काले बिल मंजूर किया गया था। इस महीने के शुरू में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने केरला का नाम तब्दील करके केरलम करने से मुतालिक बिल को मंजूरी दी थी। दुनिया भर में केरला के लोग आज थिरुवोनम मना रहे हैं। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: थिरुवोनम का आगाज ओनापुकुलम से हुआ। ये त्यौहार केरलम के लोग मजहब और जात से कतई नजर मनाते हैं। सबरीमाला, अरनमाला और गुरुवायूर समेत मंदिरों में खसूसी पूजा की जा रही है। दोपहर बाद केरलम में हजारों सकाफती प्रोग्राम और रिवायती खेलों का अहतमाम किया जाएगा। रियासत में बारिश के बावजूद लोग मंदिरों में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कौनैन हैदर।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन अमान बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया है ताकि दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात में मुसलसल इजाफा और पेशरफ्त जारी रह सके। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने कल बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी के साथ भारत चीन सरहदी मसले पर खसूसी नुमाइंदों के मुजाकरात के 25वें दौर की मुश्तरका सदारत की। वजारत खारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों खसूसी नुमाइंदों ने भारत चीन सरहदी मसले पर खुलकर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ने अपने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए सरहदी मसले के सियासी हल की तलाश के लिए मुज़ाकरात और कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक किया। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जारी तजारती कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कनाडा ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 20 अरब डॉलर मालियत की अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ आयद किए हैं। इन मसनूआत में स्टील, डेयरी, बर्फी आलात और ज़रात से मुतालिक साजो सामान शामिल है। नए टैरिफ सनती सामान के अलावा रोजमर्रा की अशिया जैसे सी फूड, पनीर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट पेपर पर भी लागू होंगे, जिनमें से कुछ चीज़ों पर 50% तक ड्यूटी लगाई गई है। कनाडा के ये नए टैरिफ 8 सितंबर से नाफिजुल अमल होंगे, जबकि अमरीकी टैरिफ हफ्ते के रोज से ही लागू हो चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुरमुज में मौजूद तमाम बारूदी सुरंगों को हटा दिया है या धमाके से तबाह कर दिया है। आबनाए हुरमुज एक इंतहाई अहम बहरी गुजरगाह है जिसे मगरबी एशिया में जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने बड़ी हद तक बंद कर रखा है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि ईरान को खबरदार कर दिया गया है कि अगर कोई भी जहाज या कश्ती नई बारूदी सुरंगें बिछाने की कोशिश करेगी तो उसे फौरी तौर पर और मुनज्जम अंदाज में तबाह कर दिया जाएगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान की जानिब से अभी कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। आबनाए हुरमुज को बंद करने के बायस आलमी बाजारों में तेल की कीमतों में शदीद उतार चढ़ाव देखा गया है। ट्रंप अक्सर कहते रहे हैं कि इस इलाके पर अमरीका का कंट्रोल है, ताहम ईरान ने उन बहरी जहाज़ों पर फायरिंग भी की है जिनके बारे में उसका कहना है कि जहाज़ों ने उसकी इजाज़त के बगैर आबनाए हुरमुज से गुजरने की कोशिश की थी। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का योम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मीलाद महफिलों और सीरत पाक के जलसों का एहतमाम किया गया है जिसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा और तालीमात को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर मीलाद के जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि यह दिन दुनिया भर में इत्तेहाद और खुशी को फरोग देगा। वजीर आजम ने तमन्ना की कि रहमदिली, मेहरबानी और मुआशरे की भलाई का जज्बा हमेशा हम वतनों की रहनुमाई करता रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओनम के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजीर आजम ने कहा कि यह रंगारंग फेस्टिवल दुनिया भर में बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। जनाब मोदी ने कहा कि यह फेस्टिवल खुशी, इत्तेहाद और खुशहाली के जज्बे को मजीद फरोग दे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज पर्नेम में पितरा देवी मार्टियस मेमोरियल का इफ्तिताह करेंगे। ये यादगार गोवा की आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए एक खराज तहसीन है और इसका मकसद आज़ादी की तहरीक के दौरान दी जाने वाली कुर्बानियों की याद को महफूज बनाना है। पेश एक रिपोर्ट।
2: वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि ये यादगार उन 31 सत्याग्रह करने वाले लोगों को खराज अकीदत है जिन्हें 1955 में गोवा को भारत में शामिल करने के मुतालबे के साथ दाखिल होने की कोशिश के दौरान पुर्तगाली फौजियों ने शहीद कर दिया था। इस यादगार को इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि

0: हाजरीन गोवा की सत्याग्रह तहरीक की तारीख को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझ सके। तवक्को है कि यह यादगारी मकाम मालूमात और मकामी फख्र का एक ऐसा मरकज बनेगा जो नई नस्ल को गोवा की तारीख से जोड़ने में मदद करेगा। पनाजी से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: दिल्ली सरकार ने कहा है कि कौमी राजधानी में फिलहाल प्याज या चीनी की कोई किल्लत नहीं है। दिल्ली के वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कल दिल्ली में प्याज और चीनी की दस्तियाबी और कीमतों का जायज़ा लिया। हुकूमत ने कहा है कि अगर कीमतों में मजीद इजाफा होता है तो मरकजी हुकूमत के इदारे नैफेड से प्याज और चीनी खरीद कर दिल्ली के मुख्तलिफ मकामात पर आवाम के लिए दस्तियाब कराएगी। हुकूमत ने यह भी यकीन दिलाया कि ये अशिया उसी कीमत पर फरोख्त की जाएंगी जिस कीमत पर उन्हें नैफेड से ख़रीदा जाएगा, जबकि नकल व हमल और दीगर मुतल्लिका अखराजात दिल्ली सरकार बर्दाश्त करेगी। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से शिकस्त देकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरा क्लासिकल मैच जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ी को आखिरी दिन 6 पॉइंट्स की बर्तरी हासिल थी, जिस दिन कम दौरानिए के मैच खेले गए। टूर्नामेंट के फाइनल में प्रगनंदा का मुकाबला अमेरिका के फैबियानो कारवाना से होगा, जो इस इवेंट के दिफाई चैंपियन हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के दौरे चीन से मुतालिक खबरों को अपनी शेष सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, चीन के नायब सदर हान से मिले डोभाल, दो तरफा ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर की बातचीत। दिफाई खुद इन्हसारी की जानब भारत का बड़ा कदम, रिवायती मिजाइल निज़ाम की टेक्नोलॉजी भारतीय सनतों को मुंतकिल करने की मंजूरी। इस खबर को इनकलाब प्रताप समेत कई दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने एक अहम खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, वजीर दाखिला अमित शाह ने दरअंदाजों के खिलाफ कार्रवाई, मफरूर मुजरिमों को मुल्क वापस लाने और कानून के शिकंजे में लाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों को सख्त हिदायत जारी की। आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर पूरे मुल्क में खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस खबर को सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
1: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रगति मीटिंग में 30,000 करोड़ रुपए मालियत के बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों का जायजा लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने 3 नए फौजदारी कवानीन के 100% नफाज के लिए 1 साल की मुद्दत मुकर्रर की। दिल्ली हुकूमत आज लक्ष्मी योजना के तहत 4,000 अहल खातून मुस्तफीदीन को मंजूरी नामे फराहम करेगी। भारत और चीन ने मजमूई और तवील मुद्दती मफादात को मद्देनजर रखते हुए दोनों मुल्कों के सरहदी मसले के सियासी हल के लिए काम जारी रखने पर इत्तेफाक किया। आज पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत ईद मिलादुन्नबी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। और आर प्रगनंदा ने जर्मनी के विंसेंट केमर को 19-9 से हराकर ग्रैंड चेस टूर के आखिरी मरहले के फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं।

0: लगाया जा सकता है।
1: HIV को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के ICTC केंद्र पर HIV टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं नमस्कार, आदाब, वणक्कम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कभी कभी इतिहास में कोई तारीख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती श्रोताओं, वो इंसानियत के सफर में एक रोशन पड़ाव बन जाती है। एक ऐसी शख्सियत की याद से जुड़ा है आज का दिन, जिन्होंने इंसान को इंसान से जोड़ने, कमज़ोर का सहारा बनने, पड़ोसी का हक पहचानने और नफ़रत के बदले रहमत और मोहब्बत का रास्ता दिखाया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं ईद मिलाद उन नबी, जिसे कई जगह मिलाद उन नबी और बारह वफात के नाम से भी जाना जाता है। और मैं हूँ आपकी आज की कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी प्रयागराज का अपना प्रिय कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज। दोस्तों, मिलाद का अर्थ है जन्म,

और मिलादुन्नबी का अर्थ है नबी के जन्म की याद। ये अवसर पैगंबर हजरत मोहम्मद के जीवन, उनके आदर्शों और उनके शिक्षाओं को याद करने का अवसर है। मक्का से उठी इंसानियत की आवाज, आइए कुछ पल के लिए समय की घड़ी को पीछे ले चलते हैं। लगभग 1400 वर्ष पहले का अरब मक्का, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और धार्मिक केंद्र, समाज में कलीबाई पहचान बहुत मजबूत थी। सामाजिक असमानताएं थी और कमजोर वर्ग अनेक कठिनाइयों का सामना करते थे। इसी परिवेश में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमीना था। बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया और उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी पहले उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब और बाद में उनके चाचा अबू तालिब ने संभाली। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान किसी पद या संपत्ति से नहीं बनी, उनकी पहचान बनी सच्चाई और ईमानदारी से, अमानतदारी से। मक्का के लोग उन्हें अस सादिक अर्थात सच्चा और अल अमीन अर्थात विश्वसनीय कहते थे। जरा सोचिए, किसी व्यक्ति के पैगंबर बनने से पहले ही समाज उसे सच्चा और विश्वसनीय कहने लगे। इससे उनके चरित्र की ऊंचाई का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक बेहद रोचक तथ्य हदीस में आता है कि जब उनसे सोमवार के रोज़े के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने जन्म और उस दिन वही आने का उल्लेख किया, यानी सोमवार उनके जीवन में विशेष महत्व रखने वाला दिन था।

ये प्रसंग हमें ये बताता है कि उनके जीवन में महत्वपूर्ण घटनाएं केवल इतिहास की बातें नहीं थी, वो आत्मचिंतन और कृतज्ञता से भी जुड़ी हुई थी। रहमत का पैगाम, कुरान में पैगंबर मोहम्मद के बारे में कहा गया है कि वमा अरलस सलाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, अर्थात हमने आपको सारे संसार के लिए रहमत बनाकर भेजा। कुरान सूरह अल अंबिया कितना खूबसूरत संदेश है, रहमत यानी दया, रहमत यानी करुणा, रहमत यानी किसी के दर्द को समझना, और यही मिलाद का सबसे सुंदर संदेश भी कहा जाता है।

दिल में रहमत हो, जुबान में मिठास हो, व्यवहार में इंसाफ हो और जीवन में इंसानियत हो। मोहब्बत केवल शब्द नहीं, व्यवहार है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन में पड़ोसियों के अधिकार, ज़रूरतमंदों की सहायता, यतीमों के प्रति संवेदना, व्यापार में ईमानदारी और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार जैसे विषयों पर विशेष जोर मिलता है। यानी उनकी शिक्षाओं का संदेश केवल इबादत तक सीमित नहीं था, इंसान के साथ हमारा व्यवहार भी हमारी अच्छाई की पहचान ही है और इसी बात से रूबरू कराता है हमें उनका दिया हुआ संदेश। और शायद आज के समय में भी यही बात सबसे अधिक सुनने की ज़रूरत है। जब सोशल मीडिया पर एक शब्द किसी को आहत कर सकता है तो सोचिए, समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली बातें तेज़ी से फैल रही हैं तो उसका क्या असर होगा।

श्रोताओं, एक बार फिर कहना चाहूंगी, जब छोटी सी बात रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है, जब समाज को जोड़ने के बजाय तोड़ने वाली बातें तेजी से फैलती हैं, तब मिलाद का संदेश हमें याद दिलाता है। बोलिए मगर ऐसा कि किसी का दिल ना टूटे, मदद कीजिए मगर बिना अहंकार के, माफ कीजिए मगर सच्चे दिल से, और इंसान को उसकी पहचान से पहले इंसान समझिए। 12 वफात एक नाम कई भाव। 12 वफात नाम का संबंध उस प्रचलित परंपरा से भी है श्रोताओं, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के पैगंबर मोहम्मद के जन्म और उनके विसाल की स्मृति से जोड़ा जाता है।

जन्म और उनके विसाल की स्मृति से इसे ज़रूर जोड़ा जाता है, और साथ ही जन्म और विसाल की सटीक तारीख को लेकर अगर हम बात करें तो इतिहासकारों और विद्वानों के बीच कुछ मतभेद भी मिलते हैं। लेकिन इस अवसर में दो भाव हम एक साथ देख सकते हैं, वो एक खुशी का और एक स्मरण का। श्रोताओं, मिलाद की महफिलों में नात, सीरत का बयान, दुआ, दुरूद, सलाम और ज़रूरतमंदों की मदद जैसी परंपराएं कई

मुस्लिम समाज में देखने को मिलती हैं। लेकिन इस अवसर की सबसे खूबसूरत बात शायद ये है कि रोशनी सिर्फ गलियों में न हो, दिलों में भी हो। सजावट सिर्फ घरों की न हो बल्कि चरित्र की भी हो। खुशी सिर्फ अपने लिए ना हो, किसी ज़रूरतमंद के चेहरे की मुस्कान भी बने। तो आज के लिए एक संदेश, इस पवित्र अवसर पर हम अपने आप से एक छोटा सा सवाल करें, क्या मेरे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है? क्या मैं किसी ज़रूरतमंद का सहारा बन सकता हूँ? क्या मैं अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर में नफ़रत से ज़्यादा मोहब्बत फैला सकता हूँ? अगर जवाब हाँ है तो समझिए किसी महान व्यक्तित्व को याद करने का अर्थ हमने समझ लिया।

श्रोताओं, महान लोगों की याद केवल इतिहास की किताबों में नहीं रहती, बल्कि उसे हमें अपने व्यवहारों में नित दिन दिखाई देते रहना चाहिए। और इस मुबारक अवसर पर यही हम दुआ करेंगे कि हर दिल में सुकून हो, हर घर में खुशहाली हो, ज़रूरतमंद को सहारा मिले, कमज़ोर को सम्मान मिले और हमारे समाज में अमन और भाईचारे की खुशबू यूं ही बिखरती रहे हर ओर। एक छोटी सी पंक्ति, रोशनी ऐसी हो कि अंधेरा मिट जाए, मोहब्बत ऐसी हो कि हर दिल जुड़ जाए और इंसानियत ऐसी हो कि इंसान इंसान के काम आ जाए। और इसी खूबसूरत पैगाम के साथ ईद मिलादुन्नबी के इस मुबारक अवसर पर आप सभी को दिली मुबारकबाद पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से। आज का ये कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज आप सुन रहे थे अपने आज के कार्यक्रम होस्ट और दोस्त मोना पांडे के साथ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे फिल्म संगीत।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
1: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
3: चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
9: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
8: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
9: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
10: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं फिल्म संगीत। आज फिल्मी गीतों के सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म के इस गाने से। गाया है श्रीराम ने, गीत के बोल लिखे अमिताभ भट्टाचार्य ने, धुन तैयार की है प्रीतम ने।

फिल्म संगीत कार्यक्रम में अब हम आपके लिए लेकर आए हैं अभिजीत भट्टाचार्य और श्रेया घोषाल के मिले जुले स्वर में बेशरम फिल्म का ये गाना। राजीव बर्नवाल ने इसे लिखा है, ललित पंडित का संगीत है।

इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं हम थाम लेते हैं। आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर। बस कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे जिले की हलचल। ये कार्यक्रम हम रिले कर रहे हैं अपने लखनऊ केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए चंदौली और ललितपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं चंदौली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज त्रिपाठी का।
2: गत दिनों चंदौली के जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने गंगा के जलस्तर में वृद्धि होने पर तटवर्ती क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने नियंताबाद विकास खंड के संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कुंडा खुर्द, सुल्तानीपुर, सहजौर और कैली सहित तटीय इलाकों का स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनका हाल जाना और प्रशासन की ओर से उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने नदियों से हो रहे कटान पर चिंता जताई। इस पर जिलाधिकारी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए अधिशासी अभियंता बंदी से टेलीफोन पर वार्ता कर तत्काल प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही उप जिलाधिकारी PDDU नगर को एक विशेष जांच कमेटी गठित कर कटान प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय सर्वेक्षण कराने और रोकथाम की ठोस योजना तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया। जिला

0: अधिकारी ने अधिकारियों को हिदायत दी कि बाढ़ से पूर्व सभी तैयारियां दुरुस्त कर लें। प्रभावित लोगों के लिए भोजन, पेयजल और आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पहले से ही सुनिश्चित करें। इसके अलावा मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने तथा उनके चारे पानी का समुचित प्रबंध करने के लिए भी निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी PDDU नगर, खंड विकास अधिकारी नियंताबाद समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ की तैयारी को लेकर अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने विस्तार से जानकारी दी कि
1: नदी के जलस्तर को हम लोग सतत उस पर निगरानी रखे हुए हैं। पर डे 2 टाइम हमारी रिपोर्ट आती है और लगातार हम लोग वॉच कर रहे हैं कि जलस्तर का किस लेवल तक पहुंचा है। पूरी तरह सचेत है और हमारी तैयारी है। जितने भी हमारे टेंडर्स होने चाहिए थे वो सब हमने कर लिए हैं। जो भी बाढ़ के दृष्टिगत जन सामान्य को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक होता है उन सभी की टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
0: चंदौली में 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर ध्वजारोहण कर झंडे को सलामी दी। राष्ट्रीय गान के उपरांत सभागार में उपस्थित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं पुष्प देकर सम्मानित किया। जनपद में स्वतंत्रता दिवस का उल्लास हर तरफ देखने को मिला। स्कूली छात्रों और युवाओं की टोली के देशभक्ति नारे से पूरा जनपद गुंजायमान रहा। इसके साथ ही पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायालय में जिला जज और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल मंडल में DRM के साथ ही समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी भवनों एवं शिक्षण संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद सलामी दी गई। जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के मारुपुर के नदेसर गांव में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमर शहीद चंदन राय के घर पर 70 फीट ऊंचे तिरंगे का लोकार्पण बतौर मुख्य अतिथि सूबे के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के कर्तव्य निष्ठा की सराहना की। कैबिनेट मंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की बधाई व शुभकामना देते हुए लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के उद्बोधन का जिक्र करते हुए युवाओं से 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में जुड़ जाने की अपील की। कैबिनेट मंत्री ने तिरंगा यात्रा का शुभारम्भ कर यात्रा में शामिल होकर युवाओं का उत्साह वर्धन भी किया। तिरंगा यात्रा में युवाओं ने देशभक्ति के नारे लगाकर लोगों में जोश भर दिया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने जनपद के अमर शहीदों के परिजनों को अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत देश विश्व पटल पर मजबूत ताकत के रूप में उभरा है। विगत दिनों राज्यसभा सांसद दर्शना सिंह ने चंदौली के चहनिया विकास खंड में स्थित महालक्ष्मी महरौड़ी देवी धाम के सुंदरीकरण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि विधान से किया, जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग द्वारा स्वीकृत 192.58 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए जाएंगे। प्रस्तावित परियोजना में मंदिर परिसर में बहुउद्देशीय हॉल, आधुनिक प्रकाश व्यवस्था, सुलभ प्रसाधन, पेयजल व्यवस्था, साइनेज, यात्री बेंच, लैंडस्केपिंग, सोलर सिस्टम, बोरिंग के साथ ही अन्य आवश्यक विकास कार्य कराए जाएंगे। राज्यसभा सांसद ने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल जाएगा। उन्होंने बताया कि
2: ये जो 1,92.58 लाख रुपए धन आवंटित हुआ है यहाँ के सुंदरीकरण के लिए, वो उसमें बहुउद्देशीय हॉल से लेकर सोलर सिस्टम, बेंच की व्यवस्था, सुंदरीकरण और सुलभ प्रसाधन और अन्य कई चीजें इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि इस काम को होने के बाद न सिर्फ यहाँ इस गांव वासियों को, न सिर्फ चंदौली के लोगों को, बल्कि जो आसपास के जिले के लोग आते हैं उनको बड़ा ही यहाँ सुविधा मिलेगी, बड़ा ही लाभ मिलेगा।
3: चंदौली जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं ललितपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार का।
4: सावन माह में ललितपुर भगवान भोलेनाथ की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। जिले के शिव मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। पाली के नीलकंठेश्वर भगवान मंदिर, तालबेहट के हजारिया देव मंदिर, चंडी माता मंदिर और तुमन मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त जल अभिषेक कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। वही कांवड़ यात्री पवित्र जल लेकर शिवालयों में पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहे है। ललितपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से 1.5 साल की बच्ची को उसके परिजनों तक सकुशल पहुंचाया गया। बच्ची 18 अगस्त को पनारी रोड के पास मिली थी। सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन PRB पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात बच्ची को परिजनों की तलाश पूरी हुई और उसे सुरक्षित परिजनों के सपोर्ट कर दिया गया। जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक में शहरिया और गरीब परिवारों के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सरकारी

0: योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक धरातल पर पहुंचे। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को घर घर जाकर पात्र बच्चों और गर्भवती महिलाओं को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए गए। मेहरौनी क्षेत्र में खराब प्रगति पर संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया। कृषि विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत बुकिंग कराने वाले किसानों के लिए ई लॉटरी 21 अगस्त को होगी। जिला स्तरीय ई लॉटरी दोपहर 12 बजे विकास भवन सभागार में आयोजित की जाएगी। लक्ष्य से अधिक बुकिंग वाले कृषि यंत्रों के लिए ई लॉटरी के जरिए लाभार्थी किसानों का चयन होगा। बारिश के बीच शहर में जल भराव की समस्या को लेकर नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने सिविल लाइन आजादपुरा, तालाबपुरा और लक्ष्मीपुरा समेत कई इलाकों का निरीक्षण किया। नालों पर अतिक्रमण और उनमें गोबर, पॉलीथिन व घरेलू कचरा डाले जाने से जल निकासी बाधित मिली। संबंधित लोगों से अभिलेख मांगे गए। प्रशासन का उद्देश्य जल भराव की समस्या कम करना और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। जिलाधिकारी की जानकारी दी।
1: काफी सारे सड़कें मरम्मत हो गई है और इसको युद्ध स्तर पे पूरी सूची बनवा ली गई है कि सड़कें कहाँ कहाँ पे पाइपलाइन बिछने के बाद अभी मेंटेनेंस बाकी है, तो काफी तेजी से काम चल रहा है। जो बचे हुए हैं उसको भी जल्दी से जल्दी काम पूरा करा।
0: शिक्षा विभाग को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स और जिला शिक्षा अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। परिषदीय विद्यालयों को 19 मूलभूत सुविधाओं से 100% संतृप्त करने के निर्देश दिए गए। बारिश के मद्देनजर स्कूलों के संपर्क मार्ग, परिसर, साफ सफाई और पेयजल व्यवस्था दुरुस्त रखने पर जोर दिया गया। साथ ही 6 से 14 वर्ष तक के किसी भी बच्चे को स्कूल में प्रवेश से वंचित नहीं रहने के निर्देश दिए गए। विद्यालयों में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। आपदा के समय प्राथमिक सहायता, आपातकालीन स्थिति से निपटने और सुरक्षा उपायों की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्राथमिक उपचार के बारे में बताया। अधिकारियों ने नियमित प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल कराने पर जोर दिया। ललितपुर रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF की संयुक्त टीम ने यात्रियों के मोबाइल चोरी करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से सैमसंग और वीवो कंपनी के 2 मोबाइल बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रेनों में यात्रियों के मोबाइल चोरी करता था और उन्हें बेचने की फिराक में था। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उधर आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिलाधिकारी की जन सुनवाई जारी है। कलेक्ट्रेट में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंच रहे हैं। अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण करने के साथ ही फॉलोअप और मॉनिटरिंग के निर्देश दिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर ललितपुर में सावन की भक्ति के साथ प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हैं। बच्चों की सुरक्षा, पोषण और शिक्षा से लेकर आपदा प्रबंधन तक प्रशासन सक्रिय है। वहीं बारिश के दौरान जल भराव की समस्या के समाधान, किसानों को कृषि यंत्रों का लाभ दिलाने और रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी कार्रवाई जारी है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, और लीजिए अब सुनिए उर्दू कार्यक्रम, रिले कर रहे हैं लखनऊ केंद्र से।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेशे खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेजबान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज 12 रबीउल अव्वल है, जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाइए। माह रबीउल अव्वल की इन पुरबहार और पुरनूर साहतों में हम लेकर के हाजिर हैं एक खुसूसी तमसीली प्रोग्राम। उन्वान है चिराग़े इश्क़ अहमद से मुनव्वर हो गया जहां सारा। तहरीर, तहकीक और आवाज़ मोहम्मद फर्रुख जमाल की है। तो समाअत फरमाइए हमारी ये खास पेशकश।

में सहर नूर का पैकर आया, अर्श से फर्श पे रश्के महे अनवर आया, आसियो पाए मोहम्मद पे झुकाओ सर को, लो मुबारक हो तुम्हें शाफ़ए महशर आया।

सदियां थी मुंतजिर जिन मुबारक अय्याम की, आज वह हसीन घड़ी आ गई जिसके आमद की बशारत अंबिया इकराम ने दी थी, जिसकी तशरीफ आवरी का जिक्र आसमानी सहीफों में दर्ज है। वो जो दुआएं

सदियां थी मुंतजिर जिन मुबारक अय्याम की, आज वह हसीन घड़ी आ गई जिसके आमद की बशारत अंबिया इकराम ने दी थी, जिसकी तशरीफ आवरी का जिक्र आसमानी सहीफों में दर्ज है। वो जो दुआए खलीली है, वो जो नवेदे मसीह है, कुरान ने जिसको सिराजम मुनीरा बताया, जो यासीन भी है और ताहा भी, वो नूर अजल, वो पैकरे जमालो कमाल, आज के ही दिन इस खाक दाने आलम पर जलवा फरोज हुआ। आमना बी के लखते जिगर आ गए, दोनों आलम के नूरे नजर आ गए, है जिनके सर पे ताजे शफात सजा, आज दुनिया में वो ताजवर आ गए। जख्म भर जाएंगे जिनके दीदार से, जख्म भर जाएंगे जिनके दीदार से, वो मसीहाए कल्बो जिगर आ गए।

हुजूर पुरनूर आकाए दो जहां सयाह ला मकां खुसरुए खूबां ताजदार मदीना सुरूरो कल्ब सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस खाकदान गीती पर रोशन अफरोज हुए तो हालत ये थी, पाकीज़ा बदन नाफ बुरीदा खतना शुदा कस्तूरी व अंबरी में बसे हुए बहालत सजदा मक्का मुकर्रमा की मुकद्दस सरजमीन पर अपने वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के घर पैदा हुए। मस्जिद अक्सा से रोशन है जमाल मुस्तफ़ा, गुम्बद खजरा से जाहिर है जलाल मुस्तफ़ा, मुंतहाए मंजिल इरफान ख्याल मुस्तफ़ा, एक तनवीर मुकम्मल है जमाल मुस्तफ़ा। एहतराम शौक से आंखें बिछाओ मोमिनों, कौनती है हर तरफ बरक़े जमाले मुस्तफ़ा।

वालिये दो जहां शहनशाहे कौनो मकां सैयदे इंसो जां सरवरे लाला रुखां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो जहालत के अंधेरे छट गए, कुफ्रो शिर्क की आंधियों में तौहीद का चिराग रोशन हुआ। वहशत व बर्बरियत की स्याह रात में अमन व मसावात का आफताब तुलू हुआ। इंसानियत को इज्जत मिली, गुलामों को वक़ार, बाग़ हस्ती में बहार आ गई, ज़हन व दिल की खुश्क खेतियाँ लहलहा उठीं। सरकारे दो जहाँ ने मिट्टी के ज़र्रों को, पानी के कतरों को, पहाड़ों की बुलंदी को, ज़मीन की पस्ती को और उमड़ते बादलों को सिर्फ़ और सिर्फ अपने इखलाक़े करीमाना से ज़ेर किया। आपने इखलाक़ो औसाफ़ की ऐसी सीरत पेश की कि आपके मुनकिर भी आपकी सीरत के कायल थे। इसमें कोई शक नहीं कि आपकी सीरत बेमिसल है।

अदल, मसावात, रहम, अखुवत, इंसानी इज्जत और हुस्न अखलाक की तालीम दी और एक ऐसे माशरे की बुनियाद रखी जिसमें इंसान की कदर उसके कबीले या माल से नहीं बल्कि उस इंसान के तकवा और किरदार पर होने लगी। मोहसिन इंसानियत ने भटकती हुई कश्ती इंसानियत को हक़ व सदाकत का रास्ता दिखाया।

ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन। गाड़ियों का शोर

0: سے خدا کھلا زبا اس کا جمال.
1: ब्रेकिंग न्यूज, आज के सफर पर पापा हैं ड्राइवर और मैं उनकी नेविगेटर, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन उससे पहले सीट बेल्ट ऑन. गाड़ियों का शोर एक दूसरे से आगे निकलने की हो. अभी अभी हमको गलत ढंग से ओवरटेक करते हुए गुजरी है एक मोटरसाइकिल, 3 पैसेंजर और वो भी बिना हेलमेट. हम चल रहे हैं सीधे आगे क्रॉसिंग पर, हम लेंगे राइट टर्न. स्पीड लिमिट इज 40 किलोमीटर पर आवर. अरे हमारे सामने से हमारी लेन में क्यों आ रही है ये स्कूल वैन जिसमें हैं बच्चे जरूरत से ज्यादा, और ड्राइवर का ध्यान है विंडस्क्रीन पर नहीं मोबाइल स्क्रीन पर. अब सामने नजर आ रही है क्रॉसिंग और वहाँ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट है ग्रीन, पर समय है कम तो हमें बढ़ानी होगी अपनी रफ्तार इससे पहले कि सिग्नल हो रेड, पर ये होगा खतरनाक इसलिए हम चलेंगे नॉर्मल स्पीड.
2: यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित रहें. हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं. मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर. बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सुगम संगीत. आज की कलाकार हैं मिताली शर्मा. आप सुनेंगे इनके स्वर में गीत और भजन, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये संदेश.
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
3: डायल कीजिए 8700014242.
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242.
5: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है.
6: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा.
5: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है. और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
6: डस्टबिन में. स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा.
7: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा. सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें. स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी.

अभी आप सुन रहे थे मिताली शर्मा के स्वर में भजन। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। बस थोड़ी ही देर में यानी 10 बजे से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले कर रहे हैं अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। श्री मोदी ने कल सेवा तीर्थ में प्रगति मंच की 53वीं बैठक की अध्यक्षता की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में प्रधानमंत्री ने 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा भी की।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि बड़ी परिवहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाते समय बिजली, पानी और अन्य सेवाओं के लिए साझा गलियारे विकसित करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। बैठक में 9 राज्यों से जुड़ी हुई रेलवे, सड़क और बिजली क्षेत्र की 6 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई। इनकी कुल लागत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक है। श्री मोदी ने किसानों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि क्षेत्र के डिजिटल डेटा प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के बेहतर उपयोग का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर जागरूकता अभियान, प्रशिक्षण और सुरक्षित डिजिटल व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बहुत जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि अगले 15 से 20 वर्षों की संभावित चुनौतियों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोकने की रणनीति बनाई जानी चाहिए। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।

0: अर्जुन शर्मा।
1: गृह मंत्रालय ने केरल का आधिकारिक नाम बदलकर केरलम कर दिया है। ये बदलाव कल से लागू हो गया है। केरल का नाम बदलने से संबंधित विधेयक 11 अगस्त को लोकसभा और अगले दिन राज्यसभा में पारित हुआ था। दिल्ली सरकार आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपेगी। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर भी बल दिया गया है। दोनों देशों ने कहा इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेचिंग में भारत चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। भारतीय नौसेना निस्तार श्रेणी के दूसरे गोताखोर सहायता पोत निपुण को 31 अगस्त को मुंबई में डॉकयार्ड में शामिल करेगी। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में सुधारों को लेकर संसदीय समिति ने मसौदा रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। समिति ने एजेंसी को वैधानिक दर्जा देने समेत इसमें सुधार की सिफारिशों पर सहमति व्यक्त की। कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक की अध्यक्षता वाली समिति की यह छठी बैठक थी। ई श्रम पोर्टल को आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। ये भारत के असंगठित कार्यबल के लिए सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2021 में इस पोर्टल को शुरू किया था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद ए मिलादुन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरलम में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने ईद ए मिलादुन नबी और ओणम की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंड शतरंज टूर के फाइनल्स के खिताबी मुकाबले में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सेमीफाइनल में जर्मनी के विंसेंट कीमर को 19-9 से हराया। भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच के चौथे दिन आज श्रीलंका 8 विकेट पर 265 रन से आगे खेल रहा है। श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र। हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। और श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज सुनने का। आज डॉक्टर अजय शुक्ल से अभिनव प्रज्ञ पांडे की भेंटवार्ता आपको सुनवा रहे हैं। प्रस्तुति है अभयकांत तिवारी की।
3: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, वॉइस ऑफ प्रयागराज के पिछले अंक में आपने सुना प्रख्यात नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ल से की गई बातचीत का पहला भाग। आइए सुनते हैं आज इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
4: ये आप इतने सारे इलाज, इतनी सारी सर्जरीज बता तो रहे हैं, लेकिन एक जो आम धारणा बन गई है कि अगर कुछ गंभीर बीमारी देखने में आ गई है किसी को भी, तो प्रयागराज से बाहर चलो, ये जो सुविधाएं आप बता रहे हैं ये प्रयागराज में हैं?
5: हाँ, ये सुविधाएं प्रयागराज में स्टार्ट हो गई हैं। इम्प्लांट भी स्टार्ट हो गया है। हाँ, थोड़ा सा महंगा पड़ता है। इवन गवर्नमेंट ने अब तो कई सारी चीज़ें कर दी हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट ऐड देती है
4: जी।
5: अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है और तो सरकार ने सुविधा दी है, उनको फ्री आपका सर्जरी होती है, उनको पैसा नहीं खर्च होता।
4: आयुष्मान के अंतर्गत?
5: आयुष्मान में नहीं, उसका अलग से फंड आता है गवर्नमेंट का।
4: अच्छा।
5: वो आयुष्मान में नहीं कवर होता।
4: अच्छा।
5: तो उसके अगर बीपीएल कार्ड दिखाते हैं तो उसकी सर्जरी निःशुल्क होती है। लेकिन बस फोकस हमको ही करना है कि जितनी जल्दी से जल्दी सर्जरी हो।
4: बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं गले के ऊपर। गले में आमतौर पर देखा जाता है कि जो सबसे आम समस्या होती है बच्चों में भी युवाओं में भी, टॉन्सिलाइटिस की, ये कितना गंभीर हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर हम इसको साधारण खांसी ज़ुकाम समझ करके अवॉइड करते हैं या जाने देते हैं। ये कितना गंभीर हो सकता है और क्या इसमें भी लेज़र या जितनी तकनीकें आप बता रहे हैं आधुनिक, ये बिना चीर फाड़ के हो सकता है?
5: जी, टॉन्सिल की सर्जरी बिना चीर फाड़ के होती है और अगर किसी को बार बार गला खराब हो रहा

0: रिकरेंट से इन्फेक्शन है, एक साल में 4 बार से ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बच्चा खाना नहीं खा पा रहा है, या अब हम बड़े हो गए खाना खाने में दिक्कत हो जा रही है, खाना गले में फंस जा रहा है, तो टॉन्सिलाइटिस एक उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है। एग्जामिन करने के बाद अगर लगता है कि टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी है, बढ़े हुए हैं, तो उसको जैसे मैंने पहले बताया कि कॉर्बोरेटर के माध्यम से
1: जी
0: उसको टॉन्सिल को रिमूव कर दिया जाता है, उसमें कोई चीरा कट नहीं मारा जाता, तो बहुत सारी चीज़ें गले में खराश है, भारीपन है और समस्या है खाना ना खा पाने की, उन सब चीज़ों से हम छुटकारा पा सकते हैं।
1: ये खर्राटों में भी कोई भूमिका है क्या इसकी?
0: हाँ, खर्राटों में अगर ओरल कैविटी पूरा क्लियर नहीं है और टॉन्सिल बहुत बढ़े हुए हैं तो आप सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे, तो ऐसे लोगों को खर्राटे बहुत ज़्यादा आते हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक ज़रूरी प्रश्न मन में आ गया। आज का भारत विश्व का सबसे युवा देश है। आजकल हम अक्सर देखते होंगे कि बाइक्स चलाते समय या सिंपल बैठे भी हैं तब भी वो कान में ईयरबड्स का प्रयोग करते हैं, ईयरफोन का प्रयोग करते हैं और फुल वॉल्यूम पे करते हैं। ये किस तरह से नुकसानदेह होता है?
0: ये विनोद जी बहुत ही हानिकारक है। अगर आप लगातार ईयरबड्स का उपयोग कर रहे हैं तो जो आपके कान की नसें होती हैं वो नसें कमज़ोर हो जाती हैं,
1: ओ
0: तो उससे क्या होगा कि हियरिंग कान कम हो जाएगी और दैट इज डैमेज इरिवर्सिबल। एक बार अगर नसें कान कमज़ोर हो गए तो उनकी रिकवरी कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो हम तो यही कहें कि आप इसको अवॉइड करिए, जब बहुत ही
1: जी
0: ज़रूरी हो तभी ईयरफोन का उपयोग किया जाए, अदरवाइज इस ईयरफोन का उपयोग ना किया जाए बेहतर रहेगा।
1: एक गीत हमारे श्रोताओं के लिए।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत था डॉक्टर अजय शुक्ला। हम डॉक्टर साहब रेडियो के स्टूडियो में बैठे हैं और आवाज़ की दुनिया में हम काम करते हैं, ऐसे लोग जिनको जिनका पेशा ही गले से जुड़ा हुआ है, जैसे गायक हैं या कलाकार हैं या रेडियो जॉकीज़ हैं, उनके गले के लिए भी कुछ आधुनिक उपचार पद्धतियां हैं क्या, जैसे अचानक किसी को कोई समस्या आ गई तो?
1: अक्सर बहुत सारे लोग आते हैं कि गले की आवाज़ भारी हो गई है, और तो हम लोग उसमें इंडोस्कोप चेक करते हैं, उसको बोलते हैं वीडियो लरिंगोस्कोपी, उसमें वोकल कॉर्ड दिखाई पड़ जाते हैं। तो अक्सर ऐसे लोगों को अगर भारी या फोर्स आवाज़ है तो बोलने के तार में नाडुल या गांठ बन जाती है। ये टीचर्स को होता है, सिंगर्स को होता है, वेंडर्स को, हॉकर्स को, जो लोग ऊंची आवाज़ चिल्ला के बात करते हैं, सबको नहीं होता, अपनी अपनी क्षमता कैपेबिलिटी होती
0: जी
1: है।
0: जी जी
1: तो अगर इसमें ये चीज़ें हैं तो ये इसके लिए हम लोग सर्जरी करते हैं, जो वोकल कॉर्ड में गांठ होती है उसको दूरबीन के माध्यम से निकाला जाता है, उसको बोलते हैं MLS, माइक्रो लेरिंजल सर्जरी, और उसको निकालने के बाद बहुत अच्छा आवाज़ वापस निकल के आती है। तो ऐसे लोगों को एक तो लगातार आपको बोलना है तो थोड़ा स्लो बोलिए, धीमा बोलिए, तेज़ आवाज़ में बात नहीं करना है, बीच बीच में थोड़ा सा लुक वार्म वाटर, गुनगुना पानी पिए,
0: जी
1: अगर लंबा हमको स्पीच देना है या लंबा हमको टॉक करनी है, तो इन सब चीज़ से सावधानी करनी पड़ेगी।
0: बहुत सारे लोग आजकल नशे का, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, धूम्रपान, इसका भी प्रयोग करते हैं, खासकर युवा। क्या ये भी ENT की बीमारियों के लिए, नाक कान गले की बीमारियों के लिए किसी प्रकार से उत्तरदायी है?
1: जी, अगर आप लगातार गुटखा मसाला खा रहे हैं तो ओरल कैंसर का सबसे बड़ा रीज़न है।
0: जी
1: मुंह में कैंसर जो होता है, ये आजकल के जो चलन चल गया है, गुटके पान मसाले कांड खा के लगातार मुंह में दबाए रखना, उसको निकालना नहीं है, मोस्ट कॉमन काज ओरल कैंसर का। और इसमें अगर आप जल्दी डॉक्टर पास जाते हैं तब तो मैक्सिमम लोग ठीक हो जाते हैं, अगर आप डिले करते हैं तो ठीक की संभावना कम रहती है।
0: इसमें ENT के चिकित्सक का क्या रोल होता
1: हाँ,
0: है?
1: अगर ओरल कार्सिनोमा है तो ENT सर्जन पहले देखेगा उसको, कई बार छोटे दाने पड़ जाते हैं, प्लॉक पड़ जाता है, तो उसको रूल आउट करना होता है कि सिंपल छाला है या कोई कार्सिनोमा तो नहीं है, बायोप्सी करनी पड़ती है। अगर बायोप्सी में रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई तो सर्जिकल इसमें होता है, सर्जरी करने के बाद अगर एडवांस स्टेज नहीं है तो छोड़ दिया जाता है, अगर स्टेज एडवांस निकल गई, लिम्फ नोड आ गया, कोई गांठ बन गई है, तो
0: जी
1: कीमो रेडिएशन बाद में किया जाता है।
0: एक और गीत हमारे श्रोताओं

0: तो ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत है श्रोताओं, नाक कान गले की समस्याओं को लेकर के आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अजय शुक्ल, उनसे हम बात कर रहे हैं। बातचीत आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। बड़ों में भी हो सकता है, खासकर बच्चों में कान बहने की समस्या अक्सर ये देखने में आती है कि लगातार कान बहता रहता है, कभी कोई रुई लगा लेता है, कभी तेल डाल लेता है, ये क्या कोई गंभीर बीमारी का द्योतक?
1: जी जरूर, अगर लगातार कान बह रहा है तो सबसे बड़ा रीजन बच्चों में होता है जुकाम होना। हमारी नली होती है जो नाक से कान को ज्वाइन करती है, गले से कान को, उसे बोलते हैं स्टिचन ट्यूब। लगातार जुकाम है या एडनॉइड बढ़ा हुआ है, टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, तो ऐसे बच्चे के कान में लगातार इन्फेक्शन होता रहेगा। और अगर कान बहता रहेगा तो कान की हीयरिंग कम हो जाएगी। सेम चीज़ बड़ों में भी है, अगर बड़ों में बार कान बह रहा है बार बार, तो उसको अगर पर्दे में छेद हो गया, परफोरेशन हो गया है, पीछे कान की हड्डियाँ गल रही हैं, तो उसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा ठीक किया जाता है। उसमें आजकल भ्रांतियाँ हो गई कि नहीं ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है या ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ये गलत चीज़ है। अगर कान के पर्दे में छेद है तो उसका एक ही इलाज है का माइक्रोस्कोपिक सर्जरी, उसके अलावा उसका दूसरा कोई इलाज नहीं है।

0: तो मतलब सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है, और
1: जी
0: ये दूरबीन या एंडोस्कोपी से
1: जी
0: हो
1: दोनों
0: सकती है।
1: दोनों विधि होती हैं,
0: जी
1: इंडोस्कोपिक भी माइक्रोस्कोपिक भी।
0: ये बच्चों में एडिनॉइड की सर्जरी क्या होती है, इसके बारे में ज़रा बताएं।
1: एडिनॉइड बच्चों में जो हमारा है नेजोफेरिंग्स होता है, नाक के पीछे पोर्शन होता है, वहाँ पर मांस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं एडिनॉइड्स। तो ऐसे बच्चे लगातार मुंह खोल सांस लेते हैं, नाक से सांस नहीं आ पाती है, लगातार नाक बहती रहती है और कंसंट्रेशन उनका नहीं लग पाता है, तो उसके लिए हम लोग कॉबलेटर के माध्यम से इंडोस्कोपिक सर्जरी करते हैं बाय यूजिंग ऑफ कॉबलेटर एंड माइक्रो डिवाइडर। उस सर्जरी से नॉइड्स हटा दिया जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, बच्चे अपना फिर नॉर्मल सांस लेते हैं, उन ग्रोथ भी है, पढ़ाई में मन भी लगना स्टार्ट होता है, कंसंट्रेशन भी उनका स्टार्ट होता है।
0: कई बार साहब ऐसा भी देखने में आता है कि जो आम समस्याएं होती हैं, जैसे चक्कर आना, लोग चक्कर आना पहले तो ठीक है ग्लूकोज पी लिया, कुछ नमक चीनी का घोल पी लिया, नमक चीनी पानी, या समस्या ज़्यादा बढ़ती है तो वो सबसे पहले जाते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास। क्या चक्कर आने की समस्या ENT जो चिकित्सा है उसका एक भाग है?
1: यस, जो हमारा इनर ईयर होता है वो हियरिंग का बैलेंसिंग काम उसी से होता है, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है चक्कर आने का।
0: मतलब हमारे कान हमारा संतुलन भी स्थापित
1: बिल्कुल,
0: करते
1: संतुलन
0: हैं।
1: बनाते हैं कान हमारा, और वो हमारे फिर ब्रेन से कोऑर्डिनेट करते हैं, तो दोनों का रोल होता है कि ईयर का भी और ब्रेन का भी। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजेनिक वल्टाइगो, मतलब कान से कान जो वल्टाइगो होता है दैट इज ऑटोजेनिक वल्टाइगो।
0: जी
1: तो इसमें रूल आउट करते हैं हम लोग कि जो कान मैक्सिमम क्या होता है, कई बार कान की हेयर सेल डैमेज हो जाती है, नसें कान की डैमेज हो जाती हैं, कान के अंदर क्रिस्टल्स होते हैं, फ्लूड्स होते हैं, जब अपनी पोजीशन चेंज करते हैं क्रिस्टल तो चक्कर आने स्टार्ट होता है। तो अगर चक्कर आपको आ रहा है तो आप ENT के पास जरूर मिलिए, डॉक्टर को जरूर दिखाइए, ENT सर्जन को,
0: जी
1: जिससे कि हर चीज़ पता चल सके कि वास्तव में उसका रीज़न क्या है चक्कर आने का।
0: हम बात कर रहे थे ENT यानी कि नाक कान गला रोगों की आधुनिक तकनीकों द्वारा उपचार के ऊपर, और इस बातचीत में हमारे साथ थे प्रयागराज के प्रख्यात ENT सर्जन, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शुक्ल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में आने के लिए।
1: धन्यवाद अभिनव जी।
0: तो अगली बार फिर इसी कार्यक्रम में किसी और हस्ती के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव प्रज्ञ पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

अभी आपने सुना कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज। डॉक्टर अजय शुक्ल से अभिनव प्रज्ञ पांडे ने बातचीत की थी। प्रस्तुति थी अभयकांत तिवारी की। हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज़ ऑन एआर ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए लोकगीत। आज के कलाकार हैं इंद्रजीत पटेल और साथी। सबसे पहले सुनते हैं इनके स्वर में ये देवी गीत।

लोकगीतों के इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवी गीत। इंद्रजीत पटेल और साथियों के स्वर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं झूमर।

आप सुन रहे हैं लोक गीतों का कार्यक्रम। अभी आपने सुना था इंद्रजीत पटेल और साथियों के स्वर में झूमर, और अब आपको सुनवा रहे हैं इनके स्वर में देशभक्ति गीत।

लोकगीतों के इस कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए इंद्रजीत पटेल और साथियों के स्वर में ये निर्गुण।

इंद्रजीत पटेल और साथियों के गाये से लाचारी के साथ ही लोकगीतों का कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर।

प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार से। श्रोताओं, भारतीय फिल्म संगीत के आकाश में कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें केवल संगीतकार कहना केवल उनके व्यक्तित्व को सीमित कर देना होता है। वे अपने आप में एक संगीत परंपरा होते हैं। उनकी धुनों में समय की आवाज होती है, मिट्टी की खुशबू होती है, लोक जीवन की सहजता होती है और इंसानी भावनाओं की गहराई होती है। आज का ये हमारा कार्यक्रम समर्पित है ऐसे ही महान संगीत साधक को, जिन्हें संगीत प्रेमी प्यार और सम्मान से बर्मन दादा के नाम से जानते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं आज सचिन देव बर्मन की। एक ऐसा नाम जिनकी धुनों में कभी नदी की लहरों की रवानी सुनाई देती है, कभी किसी नाविक की पुकार और कभी प्रेम की कोमलता, कभी विरह की टीस और कभी जीवन को उसकी पूरी सादगी के साथ स्वीकार करने का भाव। किसी ने खूब कहा है कि कुछ धुनें कानों से नहीं दिल से सुनी जाती है, कुछ आवाजें वक्त के साथ नहीं वक्त के पार जाती हैं, और सचिन देव बर्मन का संगीत भी कुछ ऐसा ही है।

श्रोताओं, सचिन देव बर्मन का जन्म 1 अक्टूबर 1906 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के कुमिल्ला में हुआ, जो आज बांग्लादेश में है। उनका संबंध त्रिपुरा के राज परिवार से था। उनके पिता नवदीप देव बर्मन संगीत के अच्छे जानकार थे, इसलिए संगीत से उनका परिचय किसी बाहरी दुनिया से नहीं था। संगीत उनके घर के वातावरण का हिस्सा था, लेकिन राज परिवार में जन्म लेना और महान संगीतकार बन जाना, इन दोनों के बीच बहुत लंबी दूरी थी। उस दूरी को बर्मन दादा ने अपनी साधना से तय किया। उन्होंने संगीत की गंभीर शिक्षा प्राप्त की और अनेक महान संगीतज्ञों से सीखा। शास्त्रीय संगीत की परंपरा ने उनके भीतर सुरों की गहराई पैदा की, लेकिन उनके मन में सबसे अधिक आकर्षित किया लोक जीवन के संगीत ने। वे लोक गायकों के साथ सीखते थे, आम लोगों की धुनों को ध्यान में से सुनते थे और प्रकृति की आवाजों में भी संगीत तलाशते थे। उनका मानना था कि संगीत जीवन से अलग नहीं होता, और शायद यही सोच आगे चलकर उनके संगीत की सबसे बड़ी ताकत बनी। पूरी बंगाल की धरती, नदियां, नावें, मल्लाहों के गीत, गांवों की सहज धुनें, इन सब ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उनके संगीत में आगे चलकर भाटियाली जैसे लोक परंपराओं की छाप स्पष्ट दिखाई दी। भाटियाली यानी नदी और नाविकों का संगीत। उनमें एक खुलापन है, एक अकेलापन है और एक ऐसी पुकार जो दूर तक जाती हुई महसूस होती है। शायद इसी वजह से बर्मन दादा की कई धुनों में हमें पानी की तरह बहता हुआ संगीत सुनाई देता है। फिर आया वो दौर जब रेडियो भारतीय जनजीवन में अपनी जगह बना रहा था।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से कार्यक्रम एक ही कलाकार से, और आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार सचिन देव बर्मन पर। 1932 में सचिन देव बर्मन ने कलकत्ता रेडियो से अपने गायन की शुरुआत की। एक युवा कलाकार, रेडियो का शुरुआती दौर, माइक्रोफोन के सामने बैठी आवाज और दूसरी तरफ अनगिनत अनदेखे श्रोता, यही रेडियो उनके लिए ऐसा माध्यम बना जिसने उनकी आवाज को घर घर तक पहुंचाना शुरू किया। इसी वर्ष उनका पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड भी आया।

यानी एक तरफ रेडियो और दूसरी तरफ ग्रामोफोन, दोनों माध्यमों से बर्मन दादा की पहचान तेजी से बनने लगी। उनकी आवाज में आपको शायद वही चमक नहीं मिलेगी जो पारंपरिक अर्थों में किसी प्रशिक्षित फिल्मी गायक की आवाज में अपेक्षित होती है। लेकिन उनमें कुछ और था। 1930 के दशक में उन्होंने बंगाली फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। धीरे धीरे उनकी पहचान एक संगीतकार के रूप में होने लगी। उन्होंने महसूस किया कि फिल्म का संगीत केवल सुंदर धुनों का संग्रह नहीं, गीत कहानी का हिस्सा भी होना चाहिए, चरित्र के स्वभाव को व्यक्त करना चाहिए, दृश्य के भाव को मजबूत करना चाहिए और श्रोता के मन में वो एहसास होना चाहिए जिसे संवाद कभी कभी पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा संसार था, बंबई की फिल्मी दुनिया। मुंबई उस दौर में सपनों का शहर थी। हर दिन कलाकार आते, हर कोई अपनी प्रतिभा लेकर आता, हर कोई पहचान चाहता था, लेकिन पहचान मिलना आसान नहीं था। बर्मन दा के सामने

चुनौतियां भी थी। उन्हें अपनी अलग संगीत भाषा के साथ जगह बनानी थी। उन्होंने ना तो लोक संगीत छोड़ा और ना शास्त्रीय संगीत की गहराई। उन्होंने दोनों को अपने ही अंदाज में जोड़ा और धीरे धीरे एक ऐसी शैली सामने आई जिसे सुनकर श्रोता कह सके ये बर्मन दा का संगीत है। सचिन देव बर्मन ने केवल संगीत सीखा ही नहीं, उसे जिया भी।

इसी बीच उनकी जो पहचान हुई कुछ महान रचनाकारों से हुई, उनमें एक नाम था गुरुदत्त का। गुरुदत्त की संवेदनशील सिनेमाई दृष्टि और बर्मन दादा का संगीत, दोनों का मेल बहुत प्रभावशाली रहा। फिर आई प्यासा। बर्मन दादा ने संगीत के माध्यम से इसको और गहरा कर दिया। किसी ने ठीक कहा है कि जब शब्द अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं तब संगीत बोलना शुरू करता है। प्यासा में बर्मनदा का संगीत कुछ ऐसा ही था। इसके बाद बर्मनदा का सफर जो लगातार आगे बढ़ता चला गया, लेकिन उनकी सफलता का एक और महत्वपूर्ण कारण था गायकों की आवाज को समझने की उनकी क्षमता थी। वे जानते थे कि किस आवाज में कौन सा भाव सबसे खूबसूरती के साथ सामने आएगा। और इसी क्रम में उनकी जोड़ी बनी कई महान गायकों के साथ, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, आशा भोसले और सबसे यादगार साझेदारियों में से एक थे किशोर कुमार। ये आवाज जब बर्मन दादा की धुन से मिलती थी तो गीत में जैसे जिंदगी आ जाती थी।

वरमंदा हर गायक की अपनी विशेषता पहचानते थे। फिल्म की संवेदना और भारतीय लोकधुनों की सादगी का एक ऐसा मेल सुनाई देता है जो सीधे मन को छूता है। वरमंदा के संगीत में लोकधुनों का प्रयोग कभी दिखावे के लिए नहीं होता था। ये लोक को सजावट की तरह नहीं, जीवन की तरह देखते थे।

बर्मंदा के व्यक्तित्व की में एक अलग तरह की सादगी थी। फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के बीच भी वे अपनी निजी जिंदगी में काफी सादगी पसंद थे। उनके बारे में कई संस्मरणों में उनकी मितव्ययी आदतों और पान के शौक का उल्लेख मिलता है, लेकिन सादगी उनके काम के प्रति गंभीरता को कम नहीं करती थी। जब संगीत का काम सामने होता तो पूरी तल्लीनता के साथ उसमें डूब जाते। उनके लिए संगीत केवल पेशा नहीं, ये साधना थी, और साधना में समझौते की जगह नहीं होती। उनके निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष उनका परिवार भी है। उनकी पत्नी मीरा बर्मन और उनके पुत्र राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन। आगे चलकर आरडी बर्मन ने भारतीय फिल्म संगीत में अपनी ऐसी पहचान बनाई कि वो स्वयं एक युग के नाम बन गए, एक पिता दूसरा पुत्र, और दोनों ने भारतीय संगीत को अलग अलग समय में नई दिशा दी। एसटी बर्मन की धुनों में लोक और भारतीयता की गहरी जड़ें थी। आरडी बर्मन ने उसी विरासत को आधुनिक प्रयोगों और नई धुनियों के साथ आगे बढ़ाया। ये केवल पिता पुत्र की कहानी नहीं, ये संगीत की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलती हुई परंपरा है। जब उनकी प्रतिभा को देश और फिल्म उद्योग ने अनेक सम्मानों से उनको स्वीकार किया, उन्हें 1958 में संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। फिल्म संगीत के क्षेत्र में उन्हें फिल्म फेयर के महत्वपूर्ण सम्मान भी मिले। और आइए सुनते हैं उनकी आवाज में ये मधुर गाना।

श्रोताओं, जिस कलाकार ने 1932 में रेडियो के माइक्रोफोन से अपनी यात्रा की शुरुआत की, वो चार दशक बाद भी श्रोताओं के मन पर उतना ही प्रभाव डालता रहा। यही रचनात्मकता असली ताकत है। उम्र बढ़ सकती है, समय बदल सकता है, लेकिन सच्चा संगीत बूढ़ा नहीं होता। फिर आया 31 अक्टूबर 1975 का दिन। सचिन देवबर्मन इस संसार से विदा हो गए, लेकिन उनके जाने से संगीत की वो धारा नहीं रुकी जिसे उन्होंने अपने जीवन भर बहाया था। 2007 में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया और एक छोटे से डाक टिकट पर उनका चेहरा, लेकिन उस छोटे से चित्र में भारतीय संगीत का एक बहुत बड़ा इतिहास समाया हुआ था। उनकी धुनों में बंगाल की मिट्टी, नदी की रवानी, लोकगीत की सादगी, शास्त्रीय संगीत की गहराई और इंसान के दिल की धड़कन है। इसलिए बर्मनदा आज भी हमारे साथ हैं। जब भी कोई पुराना गीत बजता है, जब रेडियो पर कोई परिचित धुन सुनाई देती है, जब कोई बीती हुई याद अचानक लौट आती है, तो लगता है जैसे बर्मनदा कहीं दूर नहीं गए हैं, वो यहीं हैं, हमारी यादों में, हमारे संगीत में और हमारी आवाजों में। इसी अमर संगीत के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुझे दीजिए अनुमति।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार से। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्ज पर।

लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आज का दिन उस महान व्यक्तित्व की याद से जुड़ा है जिनकी पूरी जिंदगी इंसानियत, रहमत, सच्चाई, न्याय, दया और भाईचारे का संदेश देती है। ईद मिलाद उन नबी के इस पावन अवसर पर हम याद करते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को, जिन्होंने लोगों को केवल इबादत का रास्ता ही नहीं बल्कि इंसान से इंसान प्रेम सम्मान के साथ पेश आना ही सच्ची इंसानियत है आज की। मोहम्मद साहब का जीवन जो था संघर्षों से भरा था। मक्का की धरती से शुरू हुई उनकी जीवन यात्रा में दुनिया को ऐसा संदेश दिया कि इंसान को उसकी जाति, भाषा, रंग या हैसियत से नहीं बल्कि कर्म और चरित्र से पहचानने की प्रेरणा मिलती है।

श्रोताओं, इस मुबारक अवसर पर हम संकल्प लें कि हम अपने व्यवहार में सच्चाई लाएंगे, अपने रिश्तों में प्रेम बढ़ाएंगे, जरूरतमंद की मदद करेंगे, अपने पड़ोसी का सम्मान करेंगे और समाज में अमन और भाईचारे को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। क्योंकि मोहब्बत से बड़ा कोई पैगाम नहीं, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और अमन से खूबसूरत कोई सपना नहीं। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को ईद-ए-मिलाद-उन-नबी की दिली मुबारकबाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने को हैं, अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के उपलक्ष्य में कल पंजाब और हरियाणा के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ का आयोजन कर रहा है। ये संवाद मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को खेल, फिटनेस और युवा नेतृत्व वाले विकसित भारत के दृष्टिकोण को एक साथ जोड़ना है। गृहमंत्री अमित शाह ने अगले एक वर्ष में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए मजबूत आंतरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करने के लिए भारत को आंतरिक सुरक्षा और मजबूत करनी होगी। उन्होंने बताया कि मादक पदार्थ, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर की सुरक्षा चुनौतियों पर सरकार ने प्रभावी कार्रवाई की है। गृह मंत्री ने राज्यों से नशे के खिलाफ अभियान तेज करने और सुरक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर बल देते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षित, घुसपैठ मुक्त और नशा मुक्त भारत बनाना है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और चीन ने सीमा मुद्दे के राजनीतिक समाधान के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। दोनों देशों ने कहा है कि इससे द्विपक्षीय संबंधों के विकास और प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल पेइचिंग में भारत

चीन सीमा मुद्दे पर विशेष वार्ता की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर विस्तार से चर्चा हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय लीडर से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मजबूत कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। सरकार अखिल भारतीय निगरानी नेटवर्क के माध्यम से देश भर में प्रचलित मौसमी श्वसन संबंधी बीमारियों के रुझानों पर कड़ी नजर रख रही है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ राजीव बहल ने कहा है कि देश में वर्तमान में फैल रहे इन्फ्लुएंजा वायरस पिछले कुछ वर्षों में देखे गए मौसमी पैटर्न के अनुरूप है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान मामले किसी नए इन्फ्लुएंजा खतरे के उभरने का संकेत नहीं देते हैं और स्थिति सामान्य मौसमी इन्फ्लुएंजा जैसी ही है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। केरला में ओणम का सबसे शुभ दिन तिरु ओणम्मा भी मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। पाकिस्तान में आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल के स्त्री रोग वार्ड में आग लगने से 14 नवजात शिशुओं की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने एक बयान में बताया कि अस्पताल के मातृ और शिशु वार्ड की तीसरी मंजिल पर आग लगने से नवजात शिशुओं की मौत हुई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मिला जुला रुख देखने को मिला। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक बढ़कर 77,751 पर और निफ्टी 27 अंक गिरकर 24,308 पर आ गया। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मैच के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में भोजन अवकाश तक 2 विकेट पर 83 रन बना लिए थे। श्रीलंका पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 अंक बनाकर घोषित की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Akashvani at 90.
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज आप इसमें सुनेंगे श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन, राग है मधुवंती। तबले पर संगत की है श्री अनूप कुमार बनर्जी ने। तो आइए सुनते हैं श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव से सितार पर बजाया राग मधुवंती।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्रीमती रेशमा श्रीवास्तव का सितार वादन, राग था मधुवंती, तबले पर संगत की थी अनूप कुमार बनर्जी ने। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर। लीजिए सुनिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति है मधु कुमार की।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: सुरेंद्र यादव, बांका जलालपुर।
0: जी
1: जी गाना सुनना है जी।
0: जी बताइए सुरेंद्र जी।
1: सर सादा फिल्म का
0: जी
1: आपका हाथ मिला, आपका शुक्रिया,
0: आपने याद मुझको किया, शुक्रिया शुक्रिया। तो देखिए आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें याद किया है और शारदा फिल्म के गाने की फरमाइश की है सुरेंद्र जी ने। तो सुरेंद्र जी,
1: मैम नाम लेना चाहता
0: हूं। बिल्कुल ले लीजिए।
1: शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा राधा सिटी से
0: जी,
1: और ये राजेंद्र कुमार प्रतापगढ़ के, इन लोग को कॉल सुनने में बहुत अच्छा लगता है जी मैम।
0: जी जी
1: मेरे को जी।
0: तो भाई राजेंद्र जी अगर सुन रहे हैं तो सुरेंद्र जी ने, हाँ जी बिल्कुल रेगुलर कॉलर है जिनके आपने नाम लिए हैं, वो अगर सुन रहे हैं कार्यक्रम,
1: सुनने में अच्छा लगता है मैं।
0: अच्छा अच्छा चलिए अच्छी बात है। तो आप सुनिए अपनी पसंद का शारदा फिल्म का ये गाना।

0: शुक्रिया।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
2: मौसम बोल रहे
1: हैं जी। मौसम जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
2: चांदनी फिल्म।
1: गाने के बोल बताइए।
2: पर्वत से काली
1: घटा टकराई। तो भाई चांदनी फिल्म का ये गाना ऋषि कपूर और श्रीदेवी के ऊपर फिल्माया हुआ था और इसकी फरमाइश आई है विंध्याचल से, मौसम जी ने की है। तो मौसम जी सुनवाएंगी तो आपको
2: जी मैम।
1: लीजिए सुनिए। नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: मैं गांव नवादा, जिला प्रतापगढ़, बिहार बाजार से पवन कुमार साहू बच्चा था।
0: जी पवन जी, कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मुझे कव्वाली सुनना है।
0: जी,
1: हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने।
0: तो आपकी पसंद की ये कव्वाली हम सुनवाने जा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश और मैं हूं मधु आपके गीतों के साथ। अपना नाम बताइए।
1: आकाश मानी का जमीन दिल में रहता है हमारे पल, गंगा नदी के पास में घर है मेरा, जहाँ बहता है जल, नाम है मेरा राजगंज, गांव है पोस्टा, जिला है प्रतापगढ़।
0: जिला प्रतापगढ़ से राजेंद्र जी हमारे साथ हैं, तो राजेंद्र जी क्या फरमाइश है आपकी?
1: मैम आज की हमारी फरमाइश है वो बचपन की फिल्म से है
0: जी,
1: और इस गीत के बोल है आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे।
0: देखिए एक समय था कि जब खिलौने वाले बाहर जब खिलौने बेचने जाते थे तो गांव में और शहरों में छोटे छोटे बच्चे आसपास इकट्ठा हो जाते थे
1: जी, और तो, वो दौर बहुत अच्छा था मैम, हमारे बचपन था
0: जी जी,
1: हम भी लोग खिलौने लेके बहुत खेलते थे, तो याद करते हुए हमने की फरमाइश की है मैम।
0: बिल्कुल आपने
1: और
0: कहा सही है।
1: तो नाम लेना चाहते हैं?
0: हाँ ले लीजिए नाम।
1: हमारे जो श्रोता मित्र हैं ये जो शारदा प्रसाद प्रजापति, इन्होंने हमारा नाम लिया था, उनके हमें बहुत अच्छा लगा था।
0: अच्छा अच्छा
1: हाँ, और जैसे की विकास है और प्रभाकर तिवारी जी है और आर्या है
0: जी जी,
1: प्रेमचंद यादव है जी मैम।
0: आपको सुनवाते हैं बचपन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बता दीजिए।
1: प्रभाकर तिवारी, रसूलपुर गुलराहा, रसूली बाजार, पोस्ट रामनगर, भोजपुर, बाबा गुलशन नाम धाम, जनपद प्रतापगढ़ से प्रभाकर तिवारी बोल रहे हैं।
0: जी प्रभाकर जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: मैडम जी, फिल्म का नाम है विश्व आत्मा, गीत के बोल हैं सात समुंदर पार।
0: जी तो सुनिए अपनी पसंद का विश्वात्मा फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी मधु कुमार की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में स्थान बना चुका है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में परिवर्तन संरचनात्मक है और तेजी से होते शहरीकरण, मध्यम वर्गीय का स्तर बढ़ने और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे का इसमें अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि ये अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में नए अवसर सृजित कर रही है। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं में भारत के डिजिटल तंत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत 4000 पात्र महिला लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता देकर उन्हें सशक्त बनाना है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू उच्च अधिकारियों और हितधारकों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। बैठक में पायलटों और चालक दल के सदस्यों के शरीर में मनोसक्रिय पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने वाला मोका डोप टेस्ट सिस्टम और नागर विमानन आवश्यकताओं CAR में जरूरी बदलावों पर चर्चा हो रही है। इसमें नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक और एयरलाइन ऑपरेटर्स के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू H1N1 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। अब तक इसके 2000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली चिकित्सा संघ दिल्ली में इन्फ्लुएंजा की स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और इस संक्रमण से होने वाली बीमारी और मौतों की निगरानी कर रही है। इन्फ्लुएंजा के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और बचाव के जरूरी उपाय अपनाने की अपील की गई है। नॉर्वे में कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में की जा रही ज्यादती के खिलाफ प्रदर्शन किया। नॉर्वे की संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की बर्बरता और हिंसा का मुद्दा उठाया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAEC के साथ एकजुटता दिखाते हुए इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को खत्म करने की मांग की। भारत ने इस बात पर जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि P. Harish ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया। भारत ने नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र समिति की रिपोर्ट में किए गए उल्लेखों का इन लोगों को खारिज कर दिया है। भारत ने इन्हें राजनीति से प्रेरित और बेहद दुर्भावनापूर्ण

0: highlighting the life and teachings of Prophet Muhammad. Delhi government will hand over the approval letters to 4,000 eligible women beneficiaries under the Delhi Lakshmi Yojana today. Under the scheme, eligible women will receive financial assistance of 2,500 rupees every month. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has expressed gratitude to India and President Draupadi Murmu for conveying Independence Day greetings to the people of Ukraine. President Murmu yesterday extended her greetings to the people of Ukraine on the occasion of the country's 35th Independence Day. In men's cricket, host Sri Lanka were 108 for 2 against India in the second innings of the Colombo Test when reports last came in. India enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in the first innings. Resuming the penultimate day 265 for 8, Sri Lanka managed to add only 25 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: दोपहर के 1:10 होने को हैं, अब इलाकाई खबरें नश्र की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है, इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने खसूसी बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस स्कीम से उत्तर प्रदेश में 60 साल और उससे ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त बस सफर मिलेगा। एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना तकरीबन 88,438 खवातीन मुसाफिर इस स्कीम से मुस्तफीद होंगी। स्कीम के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन को मुफ्त सफर के लिए ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की जानिब से खसूसी स्मार्ट कार्ड फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माँ अहिल्याबाई हिम्मत और इज्जत नफ्स की अलामत हैं, इसलिए हमने इस स्कीम का नाम लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना रखा है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के मौके पर 27, 28 और 29 अगस्त को खवातीन को एक साथी के साथ मुफ्त बस सफर की सहूलत मिलेगी। इस मौके पर उन्होंने कहा,
3: रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखाकर इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं।
2: वजीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में कल हुई काबीना की मीटिंग में 24 अहम तजावीज को मंजूरी दी गई। एक फैसले में 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर शामिल था। लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र की खवातीन अपना वोटर आईडी या आधार कार्ड पेश करके यूपी रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। उनके लिए खसूसी स्मार्ट कार्ड बनाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। हुकूमत का अंदाजा है कि रोजाना 88,000 से ज्यादा खवातीन इस सहूलत से फायदा उठा सकेंगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ रियासती काबीना के इजलास में गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक तौसी देने की तजवीज भी मंजूर की गई। मीटिंग के बाद वजीर खजाना सुरेश खन्ना ने कहा कि मुजोविजा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 6 लेन के साथ तामीर किया जाएगा, जिसे मुस्तकबिल में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है।
4: गंगा एक्सप्रेसवे को हरिद्वार तक विस्तारित करने के संबंध में 6 लेन विस्तारीकरण अप टू 8 लेन आज मंत्रिपरिषद ने इसको सहमति प्रदान की है। ये 10,761 करोड़ रुपए की लागत से ये बन के तैयार होगा। इसमें खास तौर से जनपद बिजनौर और उत्तर प्रदेश से हरिद्वार तक जाने के लिए मुख्य रूप से राष्ट्रीय मार्ग NH 34 मेरठ बिजनौर हरिद्वार राष्ट्रीय मार्ग की सुविधा उपलब्ध है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण हो जाने से बिजनौर हरिद्वार से सीधे जुड़ जाएगा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से इसका सुलभ संपर्क प्रदेश की राजधानी से भी होगा।
2: काबीना ने 7,968 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर में एक मरबूत मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर कायम करने की तजवीज को भी मंजूरी दी। रियासती हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों के बावकार जिंदगी को यकीनी बनाने और उनके हकूक के तहफ्फुज़ के लिए उत्तर प्रदेश वालिदैन और बुजुर्ग शहरियों की देखभाल और बहबूद के उसूल 2014 में अहम तरमीम किया है। इस तरमीम के तहत अब बूढ़े वालिदैन उन बच्चों को आसानी से अपनी जायदाद से बेदखल कर सकेंगे जो उन्हें नजरअंदाज करते हैं या उनके साथ ज्यादती करते हैं। हिंदुस्तान के डिजिटल अदायगियों के निज़ाम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को कल 10 साल मुकम्मल हो गए। 2016 में शुरू किया गया UPI ने अपने बेमिसाल पैमाने और काबिल-ए-एतमादी के

0: जरिए आलमी सतह पर पहचान हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की दिहाई तवील कामयाबी की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने साथी शहरियों से अपने यूपीआई के तजुर्बात शेयर करने की अपील करते हुए कहा कि हर हिंदुस्तानी को यूपीआई की वसी रसाई और तौसी पर फख्र करना चाहिए। यूपीआई के जरिए लेन देन का हुज्म तकरीबन 13,000 गुना बढ़ गया है। नबी करीम मोहम्मद साहब का यौम विलादत ईद मिलादुन नबी आज मुल्क और रियासत भर में मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर लखनऊ, अमरोहा, पीलीभीत, फरुखाबाद और रियासत के मुख्तलिफ अजला में जलसा मोहम्मदी के जुलूस निकाले जा रहे हैं। नबी करीम मोहम्मद साहब की सीरत और तालीमात पर मीलाद की महफिलें और सीरत कॉन्फ्रेंसों का इनेकाद किया जा रहा है। इस जुलूस को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश व खरोश का माहौल है। जुलूस मोहम्मदी में बड़ों के साथ साथ बच्चे भी इस्लामी झंडे और तिरंगा उठाए हुए हैं और नबी करीम की शान में नातें पढ़ी जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ कम्युनिटीज जुलूस पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल कर रही हैं। लखनऊ में आज बरोज हफ्ता जुलूस के पुरमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए पुलिस इंतजामिया ने सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर अमन कानून बबलू कुमार ने बताया कि जुलूस की हिफाजत के लिए 57 गजेटेड अफसरान समेत कुल 2,989 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सिक्योरिटी मकासद के लिए पूरे इलाके को 5 जोन और 23 सेक्टर्स में तकसीम किया गया है। बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से रियासत में कई नदियों की सतह आब में इजाफा हुआ है। तरती पार बलिया में दरियाए घाघरा और बदायूं में दरियाए गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अब तक 14,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। दरियासना महकमा मौसमियात ने आज रियासत में कई मकामात पर गरज चरम के साथ मगरबी इजला में मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। बहनें सुने अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी।

0: गृहलक्ष्मी सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा रितिका
1: और
0: और
1: मेरा गुंजन का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार
0: श्रोताओं, हम आ गए हैं आज का आपका कार्यक्रम लेके, प्यारी सभी बहनों के लिए उनका मन पसंदीदा कार्यक्रम गृहलक्ष्मी लेके। और आज किसी भी बात या किसी भी विषय पर चर्चा करें उससे पहले इस बात को हम ज़रूर आज के कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे कि समाज के प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन हम किन किन तरीकों से कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, देखिए समाज किसी एक पर्सन से तो नहीं बनता है। कहते हैं ना कि एक मानव को भी समूह में रह कर के कार्य करने का ही एक स्रोत होता है, या वो अकेले नहीं चल सकता है, उसको चाहिए हर किसी को।
0: बिल्कुल,
1: तो समूह में कार्य जब हम करेंगे तो वो कहीं ना कहीं योगदान की एक सीढ़ी बनता जाता है। जब एक से एक, कहते हैं ना साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, तो वाकई में एक से एक कड़ी जब जुड़ती है तो वो कहीं ना कहीं सभी का समावेशित योगदान से ही स्वरूप बनता है, समाज बनता है।
0: और समाज के जो सुंदर रूप की एक संरचना है वो सभी के योगदान से ही संभव है।
1: जी,
0: अगर हम एक सुंदर समाज की परिकल्पना कर रहे हैं तो उसमें हमारा योगदान, सेवा स्वरूप, उसमें हमारी जिम्मेदारियां, उनका निर्वहन, वो सभी एक ऐसे पड़ाव तक बहुत मायने रखती हैं जहाँ तक हम अपनी भागीदारी निभाते हैं। और इसी को आज चर्चा का विषय भी बना रहे हैं हम आज के कार्यक्रम में, स्वयं सेवा यानी कि वॉलंटियरिंग समाज परिवर्तन का माध्यम। स्वयं सेवा यानी वॉलंटियरिंग का अर्थ बिना किसी व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की अपेक्षा के अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार समाज, समुदाय या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए समय, श्रम, ज्ञान और कौशल के रूप में अपनी सेवा प्रदान करना, ये केवल किसी की मदद करने का कार्य नहीं बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और सकारात्मक बदलाव के प्रति अपनी भागीदारी निभाने का भी माध्यम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जहाँ आप निस्वार्थ भाव से जुड़ते हैं, आप किसी के कहने से या किसी को दिखाने के लिए नहीं

0: अपनी एक भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। आप खुद की खुशी के लिए किसी के प्रति अपना एक हाथ बढ़ा रहे होते हैं और उसमें आप दूसरे की खुशी नहीं बल्कि आप खुद को एक खुशी प्रदान कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप संतुष्ट हो रहे होते हैं। तो यही होती है स्वयं सेवा। अच्छा, अगर हम देखें रितिका, तो स्वयं सेवा अगर हम थोड़ी देर के लिए रुकें और सोचें कि आखिर ये महत्वपूर्ण है क्यों, अगर इसके पीछे हम कारण जानना चाहें, हालांकि अगर आप कारण जानना चाहेंगे किसी चीज़ का, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप कारण की खोज करने लग जाएंगे किसी भी कार्य के पीछे, तो आप फिर वो कार्य कर नहीं पाएंगे उतना डिवोटेड होके।
1: बिल्कुल।
0: तो जब जहां आप जानना छोड़ देते हैं ना, वहीं से आप दूसरे के लिए हाथ बढ़ाना शुरू कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जब आप अपने लिए एक फायदा सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों करूं मैं, क्या कुछ मुझे मिल रहा है, तब आप वो कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सेवा और योगदान की बात करूं उस परिप्रेक्ष्य में, तो आखिर ये क्यों महत्वपूर्ण है?
1: समाज में अनेक समस्याएं ऐसी हैं जिन्हें केवल सरकार या संस्थाएं अकेले हल नहीं कर सकती। शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, बुजुर्गों की सहायता, रक्तदान, आपदा राहत, महिला एवं बाल सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता जैसी अनेक गतिविधियों में आम नागरिकों की भागीदारी बेहद आवश्यक है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि समाज की समस्या केवल किसी और की जिम्मेदारी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है, तब सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत अपने आप हो जाती है।
0: वहीं से शुरुआत एक हो जाती है और फिर धीरे धीरे कारवां शुरू हो जाता है, है ना?
1: और स्वयं सेवा तो कहते हैं ना कि कोई उसका एक माध्यम या एक रूप नहीं है। उसके विभिन्न रूप है। स्वयं सेवा के लिए हमेशा ऐसा मतलब जरूरी नहीं है कि आप अगर आर्थिक रूप से ही सहायता करें तो ही वो आपकी सेवा
0: मतलब
1: में,
0: आप किसी एक रूप से बंधे नहीं है,
1: बंधे नहीं।
0: अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ऐसी तमाम चीजें हैं जिसका सहयोग देकर के आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं।
1: जी, हम अपनी योग्यता, समय और श्रम के माध्यम से भी सेवा कर सकते हैं। जैसे किसी बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना, जरूरतमंदों के लिए पुस्तक या कपड़े एकत्रित करना, पौधारोपण और स्वच्छता अभियान में भाग लेना,
0: साथ ही साथ जैसे जो वृद्धजन है, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, उनकी सहायता करना, या आप रक्तदान या स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में भी अपना एक सपोर्ट दे करके आगे बढ़ा सकते हैं, है ना? और जैसे बाढ़ पीड़ित हैं और कोई भी आपदा है, प्राकृतिक आपदा है, उस समय भी अगर जहाँ पे दो हाथ लगे हुए हैं और आपका एक दो हाथ मिल जाएंगे तो सोचिए चार हो गए। तो आप ऐसे ही धीरे धीरे जुड़ते जा सकते हैं, वहाँ आप अपना योगदान दे सकते हैं। किसी व्यक्ति को डिजिटल माध्यमों का उपयोग कैसे करना है, कैसे सिखाना, और ये मत सोचिए कि मैं इसको सिखा रहा हूँ मेरा कुछ जा नहीं रहा, वो जा रहा है, मतलब समझिए कि देखिए आपका एक रिविज़न हो रहा है, जो आपका ज्ञान है वो और पुख्ता हो रहा है।
1: बिल्कुल, आज का जो युग है, आज का जो समय है, पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम पर या डिजिटल चीज़ों पर आधारित हो गया है। तो अगर इस तरीके में से अगर आप किसी की मदद कर पा रहे हैं या ये आप किसी को सिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, ये भी आपका बहुत बड़ा
0: योगदान। बिल्कुल, और फिर सब यहीं आके सीखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: मानना है, और सब इसी समाज से एक दूसरे से सीखते हुए चलते हैं, एक दूसरे को मुझे लगता है कि एक सिखाते भी रहना चाहिए कि वो एक कड़ी जुड़ती जाती है और क्या।
1: साथ ही अपने आसपास के लोगों को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा या पर्यावरण जैसे विषयों पर जागरूक करना भी अपने आप में सेवा है। और इसीलिए सेवा का मूल मंत्र यही है कि मेरे पास जो है मैं उसमें से समाज को क्या दे सकता हूँ ना। स्वयं सेवा से समाज में क्या परिवर्तन आता है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और स्वयं सेवा का सबसे बड़ा प्रभाव भी यही है कि इससे सहयोग और सामुदायिक भावना जो होती है
0: उसको बल मिलता,
1: वो मजबूत होती है। जब लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं तो समाज में विश्वास बढ़ता है और अकेलेपन की भावना कम होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मोहल्ले की कुछ युवा मिलकर हर रविवार स्वच्छता अभियान चलाते हैं तो धीरे धीरे दूसरे लोग भी उनसे जुड़ने लगते हैं। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति 10 बच्चों को पढ़ा रहा है तो उन बच्चों की शिक्षा और भविष्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अर्थात एक छोटा सा स्वयंसेवी प्रयास व्यक्ति से परिवार, परिवार से समुदाय और समुदाय से पूरे समाज तक परिवर्तन की श्रृंखला बन सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही एक चेन बनती जाती है। तो हम आज ही से क्यों ना प्रण लें कि हम छोटे छोटे प्रयास करेंगे, एक दूसरे को आगे लेके चलेंगे और अपने देश की तरक्की में शामिल होंगे। और इन्हीं पंक्तियों के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और आप सबको सुना देते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: और जब बात कर रहे हैं स्वयं सेवा में समाज के क्या परिवर्तन है, तो जब हम ये बात कर रहे हैं उसमें जब हम ये बात ना करें कि युवाओं की क्या भूमिका है, तो कहीं ना कहीं ये चर्चा
1: अधूरा सा
0: पूरी
1: रह
0: नहीं होगी।
1: जाता
0: तो युवा वर्ग स्वयं सेवा के माध्यम से समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावशाली
1: है।
0: माध्यम बन सकता है, और युवाओं के पास ऊर्जा, नए विचार और तकनीक का ज्ञान है। वो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जन भागीदारी बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। युवा यदि महीने में कुछ घंटों के लिए भी सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित अपने आप को करें, तो उनका व्यापक रूप से प्रभाव हो सकता है।
1: जी, स्वयं सेवा केवल समाज को ही नहीं बदलती, बल्कि स्वयं सेवक के व्यक्तित्व को भी बदलती है। स्वयं सेवा से ही संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, सहयोग की भावना और जिम्मेदारी का विकास होता है। किसी जरूरतमंद की सहायता करने के बाद मिलने वाली आत्मसंतुष्टि यह अनुभव कराती है कि हमारे छोटे से प्रयास का भी कितनों के जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल, स्वयं सेवा और सामाजिक जिम्मेदारी हमें स्वयं सेवा को केवल किसी विशेष दिवस या अभियान तक सीमित रखने का संदेश नहीं देती। ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन सकती है। किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने से लेकर किसी बच्चे को पढ़ाने तक सेवा के ये सभी अवसर हमारे आसपास मौजूद हैं। आवश्यकता है तो केवल उन्हें पहचानने और पहल करने की।
1: सामाजिक परिवर्तन हमेशा बड़े आंदोलनों से ही शुरू नहीं होता। कई बार परिवर्तन की शुरुआत एक व्यक्ति के छोटे से प्रयास से ही शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें यह संकल्प लेना चाहिए, मैं समाज की समस्याओं का केवल दर्शक नहीं बनूंगा, बल्कि समाधान का हिस्सा बनूंगा। क्योंकि एक कौशल, एक प्रयास और एक संवेदनशील कदम के रूप में स्वयं सेवा में दिया गया थोड़ा सा समय भी किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।
0: बिल्कुल,
1: स्वयं सेवा वास्तव में मैं से हम की यात्रा है, और यही यात्रा एक बेहतर, संवेदनशील और जिम्मेदार समाज का निर्माण करती है।
0: इसलिए सभी आप श्रोता जो सुन रहे हैं, और आपके माध्यम से आप जितनों को भी ये संदेश दे सकते हैं कि स्वयं सेवा, जिसे हम वॉलंटियरिंग भी कहते हैं, समाज में और समाज के उद्धार में, समाज के विकास में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके लिए अपनी भागीदारी आप सभी बढ़ चढ़ कर निभाएं। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को आज के दूसरे गीत की ओर।

0: तो अब भाई बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम के अगले चरण में रितिका, और जिसमें हम लाए हैं अपनी श्रोता बहनों के लिए एक वार्ता जिसका विषय है मैं की तलाश कितनी जरूरी कितनी सार्थक। वार्ताकार हैं डॉक्टर रश्मि कुमार, तो आइए सुनते हैं।
1: मैं का प्रश्न यूं तो हर व्यक्ति के लिए विचारणीय है, परंतु स्त्रियों के संदर्भ में मैं इसे अधिक संगत मानती हूं। अतः इसी संदर्भ में मैं की तलाश पर मैं अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। मुझे एक घटना याद आ रही है। पिछले दिनों मैं एक विवाह समारोह में सम्मिलित होने गई थी। वहां मेरी मुलाकात एक परिचिता से हुई जिससे मैं वर्षों बाद मिली थी। इस बीच उसका विवाह हो चुका था और बच्चे भी थे। इतने दिनों बाद उससे मिलकर मैं बहुत खुश थी और बीते दिनों की बात कर रही थी कि इसी बीच लगभग 7-8 वर्ष की एक प्यारी सी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। मैंने हंसते हुए उसकी ओर इशारा करके परिचिता से पूछा, इसका परिचय? यह जानने के लिए कि यह उसी की बच्ची थी या किसी अन्य संबंधी की। उसके उत्तर देने के पहले ही बच्ची ने तुरंत बड़ी मासूमियत से कहा, मेरे पास परिचय नहीं है। मेरे हाथ के इशारे से वह शायद यही समझी थी कि मैं उससे कुछ मांग रही हूं। उस समय तो उस बच्ची के इस बाल सुलभ उत्तर पर वहां उपस्थित सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े और मैं भी हंसी।

0: परंतु बाद में मैं इस एक उत्तर में छुपे मर्म पर विचार किए बिना न रह सकी। एक स्त्री के जीवन का कितना बड़ा सच यह बच्ची अनजाने में ही बोल गई थी। सच, भारतीय समाज में एक स्त्री का अपना कोई परिचय नहीं है। विवाह के पूर्व वह पितृग्रह के कुल के नाम से जानी जाती है, तो विवाह के पश्चात पतिग्रह के कुल नाम से। कहीं कहीं तो विवाह के पश्चात कन्या का नामकरण संस्कार के द्वारा नाम ही बदल दिया जाता है। आशय, कन्या को नए नाम के साथ विवाह पश्चात ओढ़ी गई जिम्मेदारियों का निरंतर एहसास कराना कि उसकी पहचान अब बदल चुकी है और उसकी निष्ठा अब नए परिवार से ही अपेक्षित है। विवाह तो पुरुष का भी होता है, गृहस्थी की जिम्मेदारी पुरुष पर भी आती है, परंतु उससे तो अपना नाम, अपना परिचय, अपनी पहचान छोड़ना अपेक्षित नहीं है। विडंबना तो यह है कि नाम बदलने के बावजूद उसके नाम को कोई अहमियत नहीं दी जाती। वह बाद में भी किसी की बहू, किसी की अम्मा और कभी कभी तो मायके वाले शहर के नाम से ही अधिक संबोधित की जाती है, जैसे पटने वाली चाची, कानपुर वाली मौसी इत्यादि। एक बार फिर उसे यह एहसास कराने के लिए कि उसका अपना कोई परिचय नहीं है, उसका कोई मैं नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्त्री मैं शब्द का प्रयोग नहीं करती, परंतु अपनी बात करते समय या मैं क्या हूँ ये सोचते समय वह स्वयं को समाज के इन्हीं रिश्तों में, इन्हीं ताने बानों में उलझा हुआ पाती है। उसका अस्तित्व है, परंतु इन ताने बानों में उलझा हुआ, इन सब के बीच वह स्वयं कहाँ खड़ी है वह नहीं जानती। स्वयं अपने मैं से अपरिचित है वो। समाज ने कभी अपेक्षा ही नहीं की कि वह स्वयं को जाने, पहचाने अथवा स्वयं से प्यार करे। समाज ने उसके द्वारा अनजाने में ही सही किए गए ऐसे किसी भी प्रयास को दबाया ही है।
1: परिवार और समाज द्वारा दिए गए कर्तव्य बोध से वह ऐसी दबी कि वह अपने को ही खो बैठी। स्त्री की यह स्थिति केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य कई संपन्न देशों में भी है। यहां मैं टीवी कार्यक्रम ओपरा द्वारा अमेरिका की महिलाओं पर किए गए एक सर्वेक्षण का उल्लेख करना चाहूंगी। अमेरिका में महिलाओं पर अपनी पहचान को लेकर एक सर्वेक्षण हुआ जिसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। सर्वेक्षण में 80% महिलाओं ने बताया कि वह महसूस करती हैं कि उन्होंने अपने को खो दिया है। वह स्वयं पूरी तरह भ्रमित महसूस करती हैं। किसी ने अपने माता पिता, किसी ने पति, किसी ने प्रेमी, किसी ने संतान तो किसी ने नौकरी में ही अपने अस्तित्व को मान लिया था। इन सब के प्रति अपने कर्तव्यों को करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन चुका था। माता पिता की पुत्री, पति की पत्नी, प्रेमी की प्रेमिका, बच्चों की माँ या नौकरी करने वाले संगठन की कर्मचारी, केवल इन्हीं रूपों में उन्होंने स्वयं को पहचाना था। परिणाम सामने था। माता पिता की मृत्यु पर, पति या प्रेमी से बिछोह पर, बच्चों के बड़े होकर घर से चले जाने पर या नौकरी छूट जाने पर, इन सभी परिस्थितियों में स्त्रियों ने जैसे अपने आधार, अपनी जमीन को ही खो दिया था, स्वयं को खो दिया था। वह ये समझ ही नहीं सकी कि इनके बगैर भी उनका कोई अस्तित्व है, इसके आगे भी कोई डगर है। कुछ अवसाद का शिकार हुई, कुछ जीवन के प्रति उदासीन हो गईं, कुछ अत्यधिक भोजन करने लगी और बेहद मोटी हो गईं, तो किसी ने आत्महत्या तक का प्रयास किया। उन्हें लगा ही नहीं कि इस एक पहचान के खत्म होने पर भी उनकी अपनी पहचान बाकी है। वो स्वयं बाकी हैं। वो दूसरों से हटकर स्वयं अपने लिए भी जी सकती हैं। जिस शरीर का वह त्याग करने जा रही हैं वह उनका है और किसी का नहीं। बेवजह खाकर जो शरीर मोटा, भद्दा और बीमार हो रहा है वह उन्हीं का शरीर है। उसकी देखभाल दूसरा कोई नहीं करेगा, उन्हें स्वयं ही करनी है। उन्होंने अपने कर्तव्य में केवल दूसरों की देखभाल, दूसरों का ख्याल शामिल किया था, स्वयं का नहीं। इसीलिए इस संकट की घड़ी में वे अपने मैं को न पा सकें और खोया हुआ महसूस किया। कहाँ तलाशा जा सकता है इस खोए हुए मैं को? यदि उन्होंने अपने जीवन का एक कोना अपने लिए सजा सवार कर रखा होता तो इस प्रकार की संकट की घड़ी में उस कोने में जाकर सिर्फ स्वयं से संपर्क करके खुश होने का

कारण तलाश सकती थी, खुद को संतुष्ट कर सकती थी और इन संकटकालीन परिस्थितियों का सामना कर सकती थी। परंतु अधिकतर स्त्रियां परिवार और समाज के द्वारा दिए गए कर्तव्यों के दबाव में इस अमूल्य मैं को खो देती हैं और समाज को उन्हें अबला कहने का मौका देती हैं। तभी तो किसी ने कहा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। पर स्त्री क्या वास्तव में अबला है? कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी स्त्री का हाथ होता है, परंतु किसी ने यह कभी नहीं सोचा कि स्त्री स्वयं असफल क्यों नहीं है। सच तो यह है कि स्त्री का अस्तित्व केवल यहीं तक सीमित होकर रह गया है कि वह पुरुष के पीछे खड़ी हो। क्यों? क्योंकि जीवन में सफलता केवल पुरुषों के संदर्भ में ही जानी जाती है। जो नारी पुरुष के असफलता में धैर्य बंधाने वाली है, जो पुरुष को सही राह दिखाने वाली है, जो पुरुष को सफलता की राह पर आगे बढ़ने के लिए उसका सहारा बनती है, वह नारी स्वयं अपना सहारा क्यों नहीं बन सकती? वह नारी स्वयं सफल क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि उस नारी ने सफल व्यक्ति की भूमिका में अपने को देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? इसका उत्तर समाज और उसका अपना परिवार ही दे सकता है। परिवार और समाज ने जानबूझकर स्त्री की इस क्षमता को क्षीण किया है। स्त्री, विशेष रूप से भारतीय स्त्री को जन्म से ही यही घुट्टी पिलाई जाती है कि एक पुरुष के बिना उसका जीवन अधूरा है। बेटी का जन्म होते ही माता पिता को उसके व्यक्तित्व और उसके मैं के विकास की चिंता कम और उसके योग्य वर की तलाश एवं विवाह की चिंता अधिक होती है। विवाह को समाज का नियम माना गया है, परंतु इस नियम को न मानने का विकल्प पुरुष के पास तो है, स्त्री के पास नहीं। स्त्री को तो किसी न किसी पुरुष के नाम को अपनाना ही है, चाहे उसके लिए उसे जितने भी समझौते करने पड़े। क्यों? क्योंकि पति से ही उसकी पहचान है। विडंबना तो यह है कि पति भी उसके अस्तित्व का महत्व पुत्र जनने के सामर्थ्य से ही जानता है। वह पति जिसके लिए पत्नी ने अपनी पहचान, अपनी जड़, अपनी धरती छोड़ी, स्वयं को पूर्ण रूप से उसको समर्पित किया, वही पति पुत्र न दे पाने पर उसका त्याग कर सकता है और दूसरा विवाह कर सकता है। स्वयं स्त्री भी अपनी भूमिका को इसी रूप में देखती है और पति को पुत्र न दे पाने पर स्वयं को दोषी मानते हुए अपनी पहचान और अपना अस्तित्व खुद ही समाप्त करने पर को अपना परम कर्तव्य समझती है। जबकि वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि बेटे का जन्म पिता पर निर्भर करता है, माता पर नहीं। त्याग, त्याग और त्याग। स्त्री से केवल त्याग ही अपेक्षित है। पति और परिवार के लिए स्वयं को हाशिए पर ले जाने वाली स्त्री को उसका पति और परिवार भी हाशिए पर ही रखता है। कई बार स्त्रियां इस बात को महसूस करती हैं, परंतु तब जब बहुत देर हो चुकी है। मुझे अंग्रेजी की लेखिका कैरोल पियर्सन की एक मार्मिक कविता याद आ रही है, मिलीज मदर्स रेड ड्रेस। इस कविता में मिली नाम की एक बेटी अपनी मरणासन्न माँ को देखने पहुंचती है और वहां अलमारी में टंगी एक लाल ड्रेस को देखकर वह माँ से पूछती है, माँ मैंने तुम्हें यह ड्रेस पहने कभी देखा ही नहीं। माँ का जवाब था, मैंने इसे कभी पहना ही नहीं। और फिर माँ बेटी को बैठाकर मरने से पहले एक सीख देती है। वह बताती है कि कैसे उसने जीवन भर एक आदर्श पत्नी और आदर्श माँ का कर्तव्य निभाया, स्वयं फटे पुराने कपड़े पहने, भूखी रही, रातों जागी, पर पति एवं बच्चों की सभी जरूरतें पूरी की, अपने पर कभी एक पैसा नहीं खर्च किया, लेकिन बच्चों पर, छोटी छोटी जरूरतों पर सब कुछ खर्च किया। पिछले साल जिंदगी में पहली बार, हाँ पहली बार बाजार में यह लाल ड्रेस देखकर उसने अपने मन की लगाम खुली छोड़ी और मन पर उमंग को हावी होने दिया और मन को भाने वाली यह लाल ड्रेस खरीदी थी। परंतु तब तक शायद यह भड़कीली ड्रेस पहनने की उसकी उम्र निकल चुकी थी। उसे इस बात का कटु एहसास पति के इस कटाक्ष से हुआ जब पति ने पूछा कि यह ड्रेस तुम पहनोगी कहाँ।
क्या ओपेरा में?

0: पति का यह व्यंग्यात्मक कथन वह सहन नहीं कर पा रही थी और उसने अपनी बेटी से कहा, पहले मैं सोचती थी कि इस लोक में अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी तो ईश्वर उस लोक में सब कुछ देगा, परंतु अब मैं ऐसा नहीं सोचती। अब मैं जान चुकी हूँ कि ईश्वर भी चाहता है कि हम सभी इसी लोक में अपने लिए भी कुछ चाहें और हासिल करें। वह नया जीवन नई पहचान के साथ फिर से जीना चाहती थी, परंतु यह संभव नहीं होने पर वह बेटी से कहती है कि तुम वचन दो कि तुम मेरे जैसी आदर्श नहीं बनोगी। यह सीख शायद हर माँ को अपनी बेटी को देने की ज़रूरत है। परिवार के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करो, त्याग करो, परंतु स्वयं को मत भूलो। दूसरों के लिए जियो, परंतु अपने लिए भी कुछ पल निकालो। अपने को पहचानो, अपनी इच्छा, रुचि, आकांक्षा, जीवन मूल्यों को समझो और स्वीकार करो। यदि तुम इन्हें महत्व नहीं दोगी तो दुनिया में कोई दूसरा इन्हें महत्व नहीं देगा। यदि तुम अपने अस्तित्व को हाशिए पर डालोगी तो दुनिया तो तुमसे पहले ही तुम्हें हाशिए पर डाल देगी। स्वयं को पहचानो, उसे निखारो, उसमें सुख पाओ। परंतु मैं यहां पर यह आगाह भी करना चाहती हूं कि मैं स्त्रियों द्वारा इस मैं की तलाश के सार्थक रूप को ही महत्व देती हूं। मैं की तलाश निरर्थक ना हो, हमें इस बारे में सचेत रहना चाहिए। मैं की तलाश के प्रयास में स्त्री का समाज और परिवार से अलग हो जाना, मेरे मैं पर कोई हावी न होने पाए इस दुराग्रह से विवाह संस्था से ही दूर हो जाना, इस तलाश को सार्थक कभी नहीं बना सकता। हर चीज़ की अति बुरी है। संतुलन में ही सुंदरता है, जीवन है, सृजन है। मैं की तलाश स्त्री को उसके उद्देश्य से दूर न ले जाए, इस बारे में सचेत रहने की ज़रूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए स्त्री एक नए समाज का निर्माण कर सकती है। समाज स्त्री का सहयोगी हो, उसमें उसके स्वाभिमान को कुचलने वाला नहीं। यदि स्त्री अपने मैं की रक्षा कर पाएगी, उसको तलाश कर उसको निखार पाएगी, तो समाज भी उसके महत्व को समझेगा। समाज में रहना है तो समाज के नियमों को पालन तो होगा ही, पर समाज के ये नियम उसकी रजामंदी से, उसकी इच्छा से बने, यही हमें देखना है। ईश्वर भी शायद उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता खुद करता है। मैं अंत में स्त्रियों से यही कहना चाहूँगी, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है।
1: आप सुन रहे थे वार्ता का विषय, मैं की तलाश कितनी ज़रूरी, कितनी सार्थक। आपसे वार्ता कर रही थी वार्ताकार डॉक्टर रश्मि कुमार। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को आज के गीत की ओर।

0: सके।
1: और अब आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं गृह लक्ष्मी टिप्स की, जिसमें आज का विषय है कि घर के हर सदस्य को बांटे छोटी छोटी जिम्मेदारियां। और घर की जिम्मेदारी केवल माँ या घर के किसी एक सदस्य की होती भी नहीं है। एक खुशहाल और व्यवस्थित परिवार वही है जहाँ हर सदस्य अपनी क्षमता और उम्र के अनुसार घर के कामों में सहयोग करता है। छोटी छोटी जिम्मेदारियाँ बांटने से न केवल एक व्यक्ति पर काम का बोझ कम होता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों में सहयोग, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है।
2: बच्चों को भी आप शुरुआत से ही उनकी उम्र के अनुसार छोटे काम दे सकते हैं, जैसे अपने खिलौने और किताबें अच्छे से मैनेज करके रखना, स्कूल बैग तैयार करना, अपना बिस्तर ठीक करना या खाने के बाद अपनी प्लेट को सही से वॉश बेसिन में रखना, बड़े बच्चे पौधों को पानी देने, खाने की मेज़ लगाने या घर की छोटी मोटी चीज़ें व्यवस्थित करने में आपका सहयोग कर सकते हैं।
1: साथ ही इसी तरह जो घर के हमारे बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं या जो एक नॉर्मल एज से बड़े बच्चे हैं, अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी, बिल जमा करने, ज़रूरी सामान लाने या बुज़ुर्गों की सहायता करने जैसी जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। ध्यान रखें कि जिम्मेदारियां बांटते समय बेटा हो या बेटी हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं करना है। बेटियों को भी आत्मनिर्भर बनाना ज़रूरी है, वहीं बेटों को भी घर के काम सिखाना बेहद ज़रूरी है। और इससे बच्चों में ये समझ विकसित होती है कि घर चलाना सभी की साझा जिम्मेदारी होती है। काम में कोई भी छोटी गलती अगर हो भी जाती है, मान लीजिए, तो डांटने के बजाय उसे समझाकर दोबारा अवसर दें कि जब काम पूरा हो और वो अच्छी तरीके से किया जाए, और जब वो अच्छी तरीके से हो तो उसकी सराहना भी की जाए।
2: बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिम्मेदारी का अर्थ केवल काम करवाना ही नहीं बल्कि परिवार का हिस्सा होने का एहसास कराना है। इसलिए अपने घर में एक छोटा सा नियम ज़रूर बनाइए कि हर सदस्य अपना काम स्वयं करेगा और ज़रूरत पड़ने पर दूसरे की मदद भी करेगा, क्योंकि जब घर का हर सदस्य थोड़ा थोड़ा सहयोग करता है तो किसी एक पर काम का बोझ नहीं रहता और परिवार में सहयोग, सम्मान और खुशियाँ बढ़ती जाती हैं।
1: बिल्कुल। और जब इस तरीके की बात हम करते हैं और जब हमारे कार्यक्रम में इस तरीके के विषयों पर हम चर्चा करते हैं, तो इसका सीधा संकेत या सीधा जो एक हम कहें कि जुड़ाव है, वो इस बात से ही है कि घर हो, समाज हो, सभी जगह हमारी जो भागीदारी है वो एक न्यूट्रल तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है और इसको हमें निभाना है। और अगर ये जेंडर बायस है तो भी गलत है, अगर ये बाकी चीज़ों को देखते हुए है तो भी गलत है। तो हमें करना यही है कि बस अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छी तरह से करना है, समाज के प्रति अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और उनका निर्वहन करना है, उनको पूरा करना है। साथ ही आज का कार्यक्रम हम यहाँ ख़त्म तो कर रहे हैं, विदा ले रहे हैं आप सबसे, लेकिन आशा करेंगे कि जल्दी ही आपसे मुलाकात फिर हो। तब तक के लिए नमस्कार।

0: There's no cause for panic, just heightened vigilance required. Festival of Onam been celebrated with tradition fervor. Birthday of Prophet Hazrat Muhammad, Eid Miladun Nabi, been celebrated in various parts of the country. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर जोर दिया। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाई जा रही है। पूर्वी और उत्तर पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और यहां व्यापक अवसर, निरंतर वृद्धि, युवा आबादी, बढ़ती खपत तथा तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजारों का अनूठा संयोजन निवेश के मजबूत अवसर प्रदान करता है। कनाडा के टोरंटो में आज भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारामन ने ये बात कही।
2: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। भारत में हो रहा बदलाव केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक और संरचनात्मक परिवर्तन है। तेजी से हो रहा शहरीकरण, बढ़ता मध्यम वर्ग और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचा अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में नए अवसर पैदा कर रहे हैं।
1: वित्त मंत्री ने कहा कि देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे ने वित्तीय और वाणिज्यिक सेवाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ाया है। भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी के बढ़ते महत्व का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि कनाडा में भारतीय प्रवासी दोनों देशों के बीच एक रणनीतिक सेतु है।
2: भारत और कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में हाल के समय में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इन संबंधों को हमारे साझा लोकतांत्रिक और बहुलतावादी मूल्यों, बढ़ते आर्थिक सहयोग और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क ने मजबूत किया है।
3: ब्रिज बिटवीन टू वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज एंड टू इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमीज।
1: श्रीमती सीतारामन ने जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नए सिरे से मजबूत करने को लेकर बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों देशों ने भविष्य केंद्रित रणनीतिक साझेदारी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। श्रीमती सीतारामन 4 दिवसीय यात्रा पर कल टोरंटो पहुंची। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि जापान के शीर्ष कारोबारी और वित्तीय क्षेत्र के प्रमुखों से व्यापार, मोबिलिटी, औद्योगिक, बैंकिंग और बीमा क्षेत्रों में भारत में निवेश बढ़ाने और मौजूद कारोबारी अवसरों के बारे में चर्चा की गई। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जापान यात्रा के दौरान भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता का लाभ उठाने और देश की भूमिका को वैश्विक निर्यात केंद्र के रूप में मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल प्राथमिकता मौजूदा संघर्षों के मानवीय परिणामों को कम करने के लिए कदम उठाना होना चाहिए। जन संकट, वैश्विक और स्थानीय खाद्य संकटों को कम करने में सुरक्षा परिषद की भूमिका शीर्षक से सुरक्षा परिषद की खुली बहस को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने सुरक्षित, त्वरित और निर्बाध मानवीय सहायता पहुंच के साथ प्रभावी संघर्ष निवारण व्यवस्थाओं के समर्थन का आह्वान किया।
4: खाद्य असुरक्षा सशस्त्र संघर्षों के सबसे गंभीर मानवीय परिणामों में से एक है। आज के संघर्षों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव पूरी दुनिया में देखने को मिल रहे हैं। ऊर्जा बाजारों, उर्वरक आपूर्ति, समुद्री परिवहन, मानवीय सहायता की व्यवस्था और कृषि व्यापार में होने वाले व्यवधानों से स्पष्ट है कि किसी क्षेत्रीय संघर्ष से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरा खतरा पैदा हो सकता है।

0: pendant.
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माय भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है। नई दिल्ली में दिल्ली लक्ष्मी योजना के स्वीकृति पत्र सौंपते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि योजना के शुभारंभ के बाद से 9,22,000 से अधिक महिलाओं ने इसके लिए पंजीकरण कराया है।
2: 1 अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली 2,500 बहने हैं जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि ये वित्तीय सहायता महिलाओं को बच्चों की देखभाल और शिक्षा, घरेलू आवश्यकताओं और आजीविका तथा व्यवसायिक गतिविधियों में सहायता जैसी महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है। भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने इन्फ्लुएंजा ए के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। IMA H1N1 का कहना है कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है। IMA ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक्स न लेने की सलाह दी है। IMA ने विशेष रूप से एजिथ्रोमाइसिन, एमिक्सुलिन, क्लूवेंटनेट और सेफिक्साइमिम जैसी एंटीबायोटिक्स नहीं लेने की चेतावनी दी है। IMA ने बताया है कि H1N1 में आमतौर पर अचानक तेज बुखार और ठंड लगना, लगातार सूखी खांसी, गले में खराश, मांसपेशियों में तेज दर्द और थकान जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, नाक बहना या बंद होना, मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEPG और AICE PhD 2026 परीक्षा के अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया है कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लिए महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया और सदन में इसके पारित होने में बाधा डाली। उन्होंने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की कांग्रेस शासित सरकारों में महिला मंत्रियों की अनुपस्थिति को लेकर राहुल गांधी से सवाल किया। आकाशवाणी कोलकाता ने आज प्रसारण के 100वें वर्ष में प्रवेश किया है। आकाशवाणी कोलकाता की शताब्दी यात्रा का ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: आकाशवाणी कलकत्ता ने आज अपना शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है, जो बंगाल में प्रसारण की इतिहास का एक महत्वपूर्ण पर्व है। केंद्र ने 26 अगस्त 1927 को अपना पहले बंगाल प्रसारण शुरू किया था। पिछले 100 वर्षों में आकाशवाणी कलकत्ता बंगाल के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। समाचार, संगीत, साहित्य, नाटक, शिक्षा और जनसेवा कार्यक्रम के माध्यम से इसने कई पीढ़ियों के श्रोताओं को जोड़ा और ज्ञान चर्चा को दिशा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रसार के अधीन ये केंद्र आज आधुनिक माध्यमों के जरिए श्रोताओं तक पहुंचने के साथ साथ अपनी समृद्ध विरासत को भी संरक्षित कर रहा है। संदीपन दासगुप्ता के साथ अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, कलकत्ता।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मना रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: तिरुओणम के अवसर पर पारंपरिक पुष्प सज्जा ओण पुक्कलम से उत्सव की शुरुआत हुई। इसे पौराणिक राजा महाबली के स्वागत के लिए बनाया जाता है। फसल का ये प्रमुख पर्व सभी केरल वासियों द्वारा उत्सव के साथ मनाया जाता है। सबरीमाला, अरुणमुला और गुरुवायूर

0: सहित राज्य के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पारंपरिक केरल भोज ओण साध्या भी तिरुओणम के प्रमुख आकर्षणों में शामिल है। आज राज्य भर में आधिकारिक आयोजनों सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक खेल आयोजित किए जाएंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद ए मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। इसके लिए जगह जगह सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी समाचार के पूर्व समाचार वाचक पंचदेव पांडे का आज निधन हो गया। उन्होंने 1963 में आकाशवाणी वाराणसी से उद्घोषक के रूप में अपने सफर की शुरुआत की थी। उन्होंने 1983 से 1997 तक आकाशवाणी दिल्ली में समाचार वाचक के रूप में अपनी सेवाएं दीं। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राजस्थान, आंध्र प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शनिवार तक तेज हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने अगले सप्ताह देश में बारिश कम होने की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में कल आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई बारिश के बाद महानदी का जलस्तर बढ़ने से उड़ीसा में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश के बाद कटक के मुंडली में लगभग 6,70,000 क्यूसेक पानी पहुंचा, जिससे महानदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। बाढ़ का पानी आरड़ी, सुंदरपुर, नंदापुर और उलाग पंचायत को प्रभावित कर रहा है। 6 जिलों में 1,00,000 से अधिक लोग प्रभावित है। अधिकारी नदियों के जलस्तर और संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। IMD ने आज उड़ीसा के लिए बारिश की कोई चेतावनी जारी नहीं की है, लेकिन कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: उधर उत्तरी नेपाल में आज सुबह अचानक आई भीषण बाढ़ ने सीमावर्ती बस्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है और निचले इलाकों के कई जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बाढ़ सुबह तिब्बत की दिशा से आती हुई भोटे कोशी नदी में उमड़ी। नेपाल की सेना ने एक बयान में कहा कि पानी के अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिरुमुरे और पास के सियाफुरुबेसी इलाके में भारी तबाही हुई है। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT और नेटफ्लिक्स ने कहानी कहने वालों की अगली पीढ़ी को समर्थन देने के लिए 100 भारतीय विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को 6 व्यावसायिक कार्यक्रमों में 80% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनमें 1 वर्षीय 2 डिप्लोमा कार्यक्रम और 6 माह के 4 प्रमाण पत्र कार्यक्रम शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव और IICT बोर्ड के अध्यक्ष चंचल कुमार ने कहा कि भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस वर्ष अगस्त में नेटफ्लिक्स के सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेड सारंडोस के साथ हुई बैठक के बाद की गई है। भारत ने अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों में सैनिकों के लिए स्वदेशी पैराशूट तकनीक में बड़ी सफलता हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की आगरा स्थित ADRDE द्वारा डिजाइन और विकसित मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम का लद्दाख के न्योमा के मुद ड्रॉप जोन में सफल परीक्षण किया गया। ये दुनिया के सबसे ऊंचे ड्रॉप जोन में शामिल है। इस दौरान प्रशिक्षित जंपरों ने शून्य से नीचे करीब 15 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई। कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे और अंतिम मुकाबले के चौथे दिन का खेल जारी है। फॉलो ऑन मिलने के बाद श्रीलंका ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 185 रन बना ली हैं। इससे पहले श्रीलंका की टीम पहली पारी में आज 290 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने पहली पारी 503 रन बनाकर घोषित की थी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय व्यापारी समुदाय को संबोधित किया। कहा, भारत का परिवर्तन संरचनात्मक है जो तीव्र शहरीकरण और विश्व स्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे से प्रेरित है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। 2,500 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। भारतीय चिकित्सा संघ ने देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा के प्रसार को लेकर परामर्श जारी किया। कहा, घबराने की जरूरत नहीं, सतर्कता बरतने पर दिया जोर। ओणम का त्योहार पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले दो दिन

0: तक मूसलाधार बारिश की संभावना। और क्रिकेट में भारत ने कोलंबो टेस्ट मैच में श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जो हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से संजय मार्कंडेय, ममता मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने।
2: लिखते हैं, मित्रता की कोई उम्र नहीं होती, ना ही सीमा होती है, बस जहाँ मन और विचार मिले वहाँ हो जाती है।
3: बहुत सुंदर विचार आपका, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: और इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का।
3: और अगला संदेश हमें मिला है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी का।
2: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सर प्रेम नमस्ते जी। टेलीविजन की कहानी सुनने की बहुत ही अभिलाषा थी, ये अभिलाषा उमंग कार्यक्रम ने पूरी कर दी है। टेलीविजन की कहानी नाटक के रूप में उमंग कार्यक्रम में सुनकर बहुत ही खुशी प्राप्त हुई। उमंग कार्यक्रम की समस्त टीम बधाई का पात्र है, बहुत बहुत बधाई।
3: और अगला संदेश हमें मिला है भाटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। श्रृंखला ये भी जाने में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है।
3: श्रोताओ, क्या आपने कभी ऐसी रात की कल्पना की है जब आसमान में तारे गिने न जा सकें, जब आकाश गंगा किसी दूधिया नदी की तरह स्तर के ऊपर बहती हुई दिखाई दे और जब ऐसा लगे मानो धरती और आकाश के बीच की दूरी ही समाप्त हो गई हो। विमलेश जी, क्या ऐसी जगह है भी?
2: जी अजीत जी, सच्चाई तो ये है कि महानगरों की भागम भाग और व्यस्त जीवन में शायद हमने आकाश की ओर देखना ही छोड़ दिया है या भूल गए हैं, और यदि आकाश को देखना भी चाहें तो प्रदूषण के कारण धूल और धुआं छोड़कर कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
3: तो इसीलिए उमंग कार्यक्रम के माध्यम से आज हम आप सभी श्रोताओं को लेकर चल रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे गांव में जहां दिन में हिमालय की विराट मनमोहक सुंदरता मन मोह लेती है और रात होते ही पूरा आकाश मानो चमकते हुए तारों से भर जाता है। ऐसा लगता है मानो आकाश में हीरे ही हीरे जड़े हों।
2: जी, इस अद्भुत स्थान का नाम है हनले, जो लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में हिमालय पर्वत श्रृंखला में समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। लोग कहते हैं यदि रात में आकाश की सुंदरता के दर्शन करने हो तो हनले गांव से बेहतर कोई और स्थान हो ही नहीं सकता।
3: जी हाँ श्रोताओ, हनले एक छोटा सा गाँव है लेकिन इसकी पहचान पूरी दुनिया में है। यहाँ ना शोर है, ना ऊंची ऊंची इमारतें और न शहरों जैसा प्रकाश प्रदूषण। यही कारण है कि रात का आकाश यहाँ इतना स्वच्छ दिखाई पड़ता है कि हजारों लाखों तारे एक साथ चमकते हुए नजर आते हैं। आकाश गंगा भी इतनी स्पष्ट दिखाई देती है कि लगता है मानो किसी चित्रकार ने नीले कैनवस पर दूध की एक चमकती धारा उकेर दी हो।
2: इसी अद्भुत प्राकृतिक वातावरण के कारण हनले गाँव को सरकार द्वारा भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व घोषित किया है। इसका उद्देश्य केवल पर्यटन बढ़ाना नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए रात के प्राकृतिक आकाश को सुरक्षित रखना भी है।
3: लेकिन एक बात समझ में नहीं आई विमलेश जी कि डार्क स्काई क्यों कहा जाता है? मेरा मतलब डार्क स्काई रिजर्व का क्या मतलब है?

0: अजी जी, ये बहुत ही वैज्ञानिक और रोचक प्रश्न है। यदि हम अपने महानगरों को देखें या गांवों को भी देखें तो आकाश में प्रकाश प्रदूषण बहुत अधिक है, यानी शहरों और गांवों में बिजली की कृत्रिम रोशनी का अंश आकाश में जरूर होता है। करोड़ों बल्ब जल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है, शहर रोशनी से चकाचौंध हैं। इसीलिए हमारे ऊपर जो आकाश है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हंदले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और

0: है वो प्राकृतिक रूप से अब डार्क नहीं रहा।
1: जी हाँ, आपने बहुत सही बताया। लद्दाख की पहाड़ियाँ, विशेषकर हंदले गांव के आसपास का आकाश इतना स्वच्छ और कृत्रिम रोशनी से वंचित है कि वो डार्क है
0: जी।
1: लाखों करोड़ों तारे, आकाशगंगा और बहुत ही खगोलीय घटनाएं, ग्रहों की गति इत्यादि नंगी आंखों से भी स्पष्ट दिखाई देती हैं।
0: और अजीत जी, यही कारण है कि हनले में स्थित है भारतीय खगोलीय वेधशाला, जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रमुख वेधशालाओं में से एक है। यहाँ विशाल दूरबीनों की सहायता से वैज्ञानिक ग्रहों, तारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का अध्ययन करते हैं।
1: जी हाँ, कितना रोचक और प्रेरणादायक है ये जानना कि जब देश के अधिकांश लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब हंदले की पहाड़ियों पर वैज्ञानिक ब्रह्मांड के नए रहस्यों की खोज में जुटे रहते हैं।
0: जी अजीत जी, एक बात और साझा करना चाहती हूँ। हनले केवल विज्ञान का केंद्र ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक शांति का भी घर है। यहाँ स्थित लगभग 400 वर्ष पुराना हनले मठ बौद्ध संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।
1: जी, आपने बिल्कुल सही बताया। पहाड़ की चोटी पर स्थित ये मठ लगता है दूर से ही यात्रियों का स्वागत कर रहा है। यहाँ की प्रार्थनाएं, रंग बिरंगे प्रार्थना ध्वज और शांत वातावरण मन को गहरे सुकून से भर देते हैं।
0: श्रोताओं, जैसा कि हमने बताया, हनले का प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। दूर दूर तक फैले भूरे शुष्क पहाड़, नीला आकाश, ठंडी हवाएं और विशाल मैदान इस स्थान को किसी दूसरी नई दुनिया जैसा बना देते हैं।
1: जी हाँ श्रोताओ, यदि जीव जगत की बात करें तो आसपास के क्षेत्र में तिब्बती जंगली गधे, हिमालयी मामोत, याक और अनेक दुर्लभ पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
0: जी,
1: इसीलिए तो इस जगह को प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों का स्वर्ग कहा जाता है।
0: बता दें, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। लेह से लगभग 260 किलोमीटर की यात्रा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम रास्तों से होकर गुजरती है, लेकिन जो यात्री इस कठिन सफर को पूरा करते हैं वे कहते हैं, हनले पहुंचने के बाद हमें लगता है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों जी जी, अब समापन किया जाए?
1: जी हाँ बिल्कुल। एक बात लेकिन जरूर कहना चाहूंगा कि शहरों की भागदौड़ में हम अक्सर ऊपर देखना भूल जाते हैं।
0: जी,
1: हम चमकती रोशनियों के बीच में रहते हैं, लेकिन असली चमक तो उस आकाश में है जिसे हमारे पूर्वज हर रात निहारा करते थे।
0: जी,
1: हंदले हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर कलाकृति हमारे सिर के ठीक ऊपर फैली हुई है, बस उसे देखने के लिए थोड़ी शांति, थोड़ा अंधेरा और थोड़ा समय चाहिए।
0: श्रोताओं, अगली बार जब आप भारत के किसी अनोखे स्थान की यात्रा की योजना बनाएं, तो हनले को अवश्य याद रखें। शायद वहां पहुंचकर आपको केवल तारों का संसार ही नहीं बल्कि अपने मन के भीतर की शांति भी मिल जाए।
1: तो इसी सुंदर विचार के साथ आइए अब चलते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। लेकिन सबसे पहले आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: डार्क स्काई रिजर्व किसे कहते हैं?
1: आप अपना उत्तर हमारे टोल फ्री नंबर यानी 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। आप इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन को भी लगातार फॉलो कर सकते हैं।
0: और यदि आपको एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना है या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम या ध्वनि पुस्तकों को सुनना है, तो कृपया ये दो वेबसाइट के पते नोट कर लीजिए। पहली वेबसाइट है एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ और दूसरी है एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आप इन विकल्पों पर जाकर अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम अरावली की कहानी।
0: एनसीईआरटी की कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी देता है और बताता है कि उत्तर भारत को मरुभूमि बनने से बचाने में इसकी कितनी अहम भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।

0: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता, हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें?
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: आह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं। क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते? पहाड़ी कहते हैं।
3: जी, पहाड़ी।
0: अरे वाह, अच्छा। लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
1: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों, जानना है ना इसके बारे में?
2: यस मैम।
1: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
2: अच्छा।
1: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
2: अच्छा।
1: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
2: अच्छा, मैंने भी देखा है।
0: आरा और वली यानी अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम, अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
1: बिल्कुल, जरूर बताएंगे। अब जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
1: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
2: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
0: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
1: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
4: जी मैम,
3: जी मैम, हमेशा याद रखेंगे।
0: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
1: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गयी।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
1: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन।
2: सॉइल इरोजन,
1: बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं जो राजस्थान में ही है।
0: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
1: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों, जानना चाहोगे ना?
4: जी मैम।
3: यस मैम।
1: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
3: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
1: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं

0: कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं। क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती हैं?
1: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी, नीलगाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
2: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
1: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
2: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
1: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
2: ओह,
1: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना
2: जी।
1: और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
3: जी मैम।
2: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
3: बहुत अच्छी लगी।
2: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
3: धन्यवाद सर।
4: धन्यवाद मैम।
5: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
2: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
5: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे NCERT की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीष शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा दीक्षा।
1: आइए सुनते हैं एक और कहानी। शीर्षक है सुखो माजरी गांव की कहानी।
2: नव भारत वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाटक के द्वारा बताया गया है कि कैसे सुखो माजरी गांव के लोगों ने वहां की बंजर भूमि को हरा भरा बना दिया और सूखे की समस्या से छुटकारा पाया।
1: एक गांव था सुखो माजरी, जो काफी हरा भरा था। चारों तरफ पेड़ पौधे और प्रकृति की सुंदरता थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि उसके आसपास के जंगल धीरे धीरे काट दिए गए। गांव वालों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। जंगल कटने के कारण यहां जल स्तर घटने लगा। कुओं और तालाबों का पानी भी धीरे धीरे सूखने लगा और नदियों का पानी मटमैला हो गया। गांव में पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई और लोग पानी की कमी से जूझने लगे।
3: माँ माँ, पानी धोना बहुत प्यास लगी है।
4: बेटा, घर में पीने के लिए पानी नहीं है। अपने बाबू को बोलो ना, कहीं से पीने का पानी ले आए। अजी, सुनते हो?
5: हाँ, बोलो, क्या हुआ?
4: घर में एक बूंद पानी नहीं है, ना तो खाना पकाने के लिए है और ना ही पीने के लिए।
5: अच्छा ठीक है, करता हूँ मैं कुछ, लाता हूँ।
1: गांव वाले पानी के लिए परेशान थे। किसी को कुछ भी नहीं सूझ रहा था। परंतु सन 1970 में कुछ ऐसा हुआ कि सुखो माजरी गांव पूरा बदल गया। लेकिन वो कैसे, आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि गांव के ही एक व्यक्ति झुनुआ को एक उपाय सूझा। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा,
5: गांव वालों, अगर आप सभी अपने इस खूबसूरत गांव को बचाना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
6: जी हाँ, हाँ।
5: हम सभी गांव वालों पर जल और जंगल की मुसीबत आई है। इसका हमें डट कर मुकाबला करना होगा। सभी को मिलजुल कर काम करना होगा।
7: हाँ हाँ, आप उपाय तो बताइए।
6: हाँ हाँ, उपाय, हाँ हाँ, उपाय बताइए।
5: तो सुनिए, सबसे पहले हम सबको एक ग्राम सभा बनानी होगी।
8: ग्राम सभा?
7: ठीक है।
8: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है,
5: समझे। और हर किसी को अपना पूरा योगदान देना होगा।
6: हाँ हाँ, हम तैयार है, ठीक है।
5: बच्चों, तुम्हें जगह जगह पौधे लगाने हैं।
9: जी, हम लगाएंगे, जरूर लगाएंगे।
10: और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे।
5: तो तय रहा कि बच्चे पौधे लगाएंगे और रामू, तुम अपने साथ मीना, बिरजू और भोला को ले लो और बारिश का पानी जमा करने का प्रबंध करो।
11: वो कैसे?
12: क्या गड्ढा बनाना है?
13: तालाब नदी में तो पानी गिरता ही है और इकट्ठा भी हो जाता है।
7: फिर इसकी क्या जरूरत है?
11: हाँ हाँ, मीना और भोला ने बिल्कुल ठीक कहा।
5: वो तो ठीक है, लेकिन हमें पानी इकट्ठा करने के नए तरीके अपनाने होंगे।
7: नया तरीका?

0: कौन सा तरीका? बताओ बताओ।
1: हाँ हाँ, हमें भी बताओ।
2: हमें भी बताओ।
3: हमें एक बड़ा सा सिंचाई का टैंक बनाना होगा।
0: सिंचाई टैंक?
1: सिंचाई टैंक,
3: ताकि हम पानी वहाँ इकट्ठा कर सकें। उसके चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगाने होंगे ताकि हरियाली बढ़े। इससे पानी की कमी काफी हद तक दूर हो सकेगी।
2: अच्छा, सुझाव तो बड़ा अच्छा है।
4: हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा।
5: तो साथियों, सुखो माजरी गांव में ग्राम सभा बनाई गई और सबने मिलजुल कर जल और जंगल की समस्या से निपटने के लिए काम करना शुरू किया और सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग गए। सभी ने खूब मेहनत की, मिलजुल कर काम किया, गड्ढा खोदकर सिंचाई टैंक बनाया, गांव में जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सभी गांव वालों की मेहनत और कड़े परिश्रम से सुखो माजरी गांव अब फिर से हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखने लगी। जल स्तर में भी सुधार हुआ और पेड़ों के लगने से वर्षा भी खूब होने लगी। कुओं और तालाबों में भी पानी रहने लगा। कुछ ही समय में सुखो माजरी गांव हरा भरा और खुशहाल गांव बन गया। तो दोस्तों, जो सुखो माजरी गांव में हुआ वह किसी भी गांव में हो सकता है। आप भी पेड़ पौधे लगाएं, पानी जमा करने के उपाय सोचें और पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुखो माजरी गांव की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा, तकनीकी समन्वय बटीलैन लिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, परामर्श अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओ, कैसे लगे आपको हमारे आज के कार्यक्रम और हमारी आज की जानकारी, जरूर लिखिएगा। तो अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम
1: चेतना,
0: जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

रेडियम वेब 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 3 बजने को है, हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपकी

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 5 बजे हैं, हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं आरक्षण फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। गीत प्रसून जोशी का है और इसकी धुन बनाई है शंकर एहसान लॉय ने।

अब आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गाना, जिसे गाया है के ने। गीत है सईद कादरी का और संगीत है प्रीतम का।

0: सैयारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जुबीन नौटियाल की आवाज़ में। गीत और संगीत ऋषभ कांत का था और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कुछ ही पलों बाद युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
3: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: सलाम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं आपका कार्यक्रम व्यूवाणी, सो स्टे ट्यून्ड ऑन 100.3 एफएम विद मी योर होस्ट आरजे साक्षी
1: एंड विद मी आरजे पूजा। दोस्तों आज मैं बहुत सुकून महसूस कर रही हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत ही पाक और मुबारक है।
0: दोस्तों आज दुनिया में ईद मिलाद उन नबी का त्यौहार बड़े ही अदब और प्यार से मनाया जा रहा है। ये वही मुकद्दस यानी पवित्र दिन है जब इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था।
1: उन्होंने दुनिया को हमेशा अमन, भाईचारे और इंसानियत की राह दिखाई। आज के दिन लोग मस्जिद और घरों को रोशनी से सजाते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं और पैगंबर साहब की अच्छी बातों को याद करते हैं।
0: दोस्तों आप सभी को ईद मिलाद उन नबी की दिली मुबारकबाद। हंसते रहिए, प्यार बांटते रहिए, सुनते रहिए हमारा स्टेशन।

0: हर रोज सुबह का एक ही नज़ारा होता है, सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें, मेट्रो में धक्का मुक्की और अलार्म से लेकर ऑफिस की बायोमेट्रिक मशीन तक घड़ी की सुइयों पर दौड़ती जिंदगी। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इसी 9 से 5 के ढर्रे में बिता देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि काश ऐसा होता कि आज काम करने का समय, जगह और माहौल काश मेरी पसंद का होता।
1: दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन पर टिकी हमारी आंखें, मीटिंग्स और हेडलाइंस की अनगिनत फाइलें, और शाम को थकान से चूर होकर हम उसी जाम से गुजरते हैं वापस उसी रास्ते पर। मेट्रो कॉर्पोरेट्स लाइफ की इस चकाचौंध के पीछे एक अनकहा तनाव रहता है जिसे हम वर्किंग प्रोफेशनल जिंदगी में रोज जीते हैं लेकिन हम उस कभी कह नहीं पाते हैं। काम की इस आपाधापी में सैलरी तो मिल जाती है लेकिन सुकून और अपनों के लिए वक्त पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि आज इंसान का मन इस मैकेनिकल ढर्रे से बाहर निकलकर थोड़ी चैन की सांस लेने की जगह तलाश रहा है।
0: बिल्कुल,
1: और ये तलाश कैसे पूरी होगी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ।

0: आज की डिजिटल दुनिया में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब के बजाय लोग अपनी शर्तों पर काम करना पसंद कर रहे हैं, और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी। तो आइए समझते हैं कि आखिर फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी क्या है।
1: दोस्तों, सबसे पहले फ्रीलांसिंग का मतलब है जब कोई व्यक्ति किसी एक कंपनी से बंधकर काम करने के बजाय इंडिपेंडेंट होकर क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करता है, उसे हम फ्रीलांसिंग कहते हैं।
0: बिल्कुल साक्षी। और अगर बात गिग इकोनॉमी की करें तो ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहाँ पर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब और प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क होते हैं, जैसे कि कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये सब गिग इकोनॉमिक्स के हिस्से हैं।
1: दोस्तों, फ्रीलांसिंग काम करना देखने में जितना फैसिनेटिंग लगता है, ये उतना चैलेंजिंग भी है।
0: बिल्कुल।
1: और इसके क्या है प्रोज एंड कॉन्स, किस तरह से ये मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, अब हम उस पर थोड़ी बात करेंगे आपसे।
0: तो साक्षी, सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्रीलांसिंग आखिर जरूरत क्यों है, और खासकर यूथ के लिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहला ये है कि आप कब और कहाँ कितना काम करना चाहते हैं, इसका पूरा फैसला आपके हाथ में है। और सेकेंड, जो सबसे ज़रूरी है और जो सबसे बेसिक भी आप कह सकते हैं, वो अपने आप में है, ग्लोबल रीच, यानी इंटरनेट के ज़रिए आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं। और तीसरा जो इसका बेस है, वो है स्किल बेस्ड इनकम। आपकी कमाई आपकी क्षमता और अनुभव पर निर्भर करती है, ना कि निश्चित वेतन पर।
1: और इसीलिए आज के टाइम में डिग्री तो इम्पॉर्टेंट है, बट स्किल उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसे दोस्तों हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही फ्रीलांसिंग के भी अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर उसके पहले चैलेंज की बात करें तो वो है इनकम अनसर्टेनिटी, कमाई कभी ज़्यादा या कभी कम भी हो सकती है आपकी। और दूसरा है लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा आपको, PF एंड ये भी नहीं मिलेगा आपको, पेड लीव्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको लगातार खुद से सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपना क्लाइंट खुद से ढूंढना पड़ेगा। एंड फोर्थ है वेरी इंपॉर्टेंट, हाई कॉम्पिटिशन, आपको खुद को लगातार बेहतर बनाना होगा, अपनी स्किल को एनहेंस करना पड़ेगा, नई नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी।
0: भारत में इंटरनेट की रीच बढ़ते ही फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब केवल IT प्रोफेशनल्स ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे शहरों के जो यूथ्स हैं, वो वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिलीवरी वर्क में इंडिपेंडेंट हो रहे हैं।
1: तो दोस्तों, अगर आपके पास ऐसी स्किल है जिसकी बाज़ार में मांग है, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, या डिज़ाइनिंग और कोडिंग, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकता है। बस इसके लिए शुरुआत में थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको अपनी स्किल पर काम करना पड़ेगा और अपने काम की खोज करनी पड़ेगी।
0: बिल्कुल। और आने वाले वर्षों में गिग इकोनॉमी न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी ये बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। साक्षी, मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम था जहाँ पे हर कोई यही सोचता था कि कोई ना किसी कंपनी में जॉब मिल जाए, लेकिन आज वो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। और साक्षी, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है फ्रीलांसिंग को लेके?
1: मुझे ऐसा लगता है कि जो ट्रेडिशनल वे अभी तक का था, एक डिग्री लो, कहीं किसी कोई कंपनी ज्वाइन करो, फिर रिटायरमेंट, मतलब बोरिंग सी लाइफ, 9 to 5 जॉब। लेकिन इसमें बेनिफिट ये है फ्रीलांसिंग में कि आप 9 to 5 जॉब के अलावा भी अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं तो आप फ्रीलांसिंग करके एक्स्ट्रा इनकम भी कमा सकते हैं और साथ में अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो 9 to 5 जॉब करते हैं, MNCs में जॉब करते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है कोडिंग में, वहाँ उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन राइटिंग, बहुत लोगों को वॉइस आर्टिस्ट में इंटरेस्ट होता है, तो ऐसे जो आपके इंटरेस्ट हैं, साथ में मैं ये भी कहूँगी आप अपने एप्टीट्यूड को फॉलो कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसलिए आप टाइम रहते हुए अपने एप्टीट्यूड को पहचानिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, और उसी के साथ अपनी पर्सनैलिटी को, अपने स्किल को एनहेंस करिए, ग्रूम करिए, ताकि आप, और एक मार्केट में ये भी ये चलता है कि जो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करता है,

0: डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ती है। तो आप अगर काम को सीख भी रहे हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल पर भी ध्यान रखिए, ताकि आप अपने स्किल को अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकें।
1: बिल्कुल, और आई थिंक सीवी में भी बहुत ज़रूरी है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है। तो हमेशा ये सोचते रहना कि देख लेंगे एक टाइम पे, अगर करना होगा करेंगे, उसके बजाय आज से खुद के लिए बेहतर सोचना आप शुरू करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में वो चीज़ बहुत काम आएगी। और फ्रीलांसिंग ने सबको हक दे रखा है कि किसी भी रिलीजन में, कोई भी कैसा भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, वो अपने करियर को एक शेप दे सकते।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
1: आई एम हियर
2: दीप तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना
1: दिमाग चार्ज कर अपना
3: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक
1: देखा
2: पापा रुको मैं पे करता हूँ नो सिग्नल
3: अब क्या करोगे
2: तेरी वाईफाई है ना
1: बुद्धू सुधर जा
3: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय
3: RBI कहता है
4: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट हर घर की वाणी आकाशवाणी हर दिल की वाणी आकाशवाणी और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात संगीत ड्रामा स्पोर्ट्स पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर नया भारत नया आकाशवाणी
5: वेलकम बैक दोस्तों तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट में जो कि है प्रेरणा पुंज और जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस सेगमेंट में हम ऐसे महान व्यक्तित्वों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने हमारे समाज के लिए इस मानवता के लिए बहुत कुछ योगदान किया और जब उनके बारे में पढ़ते हैं उनके बारे में सुनते हैं और देखते हैं तो हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करें तो हमारे आज के इस खास सेगमेंट में जो हमारे प्रेरणा पुंज है वो हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान क्रांतिकारी प्रखर अधिवक्ता और महान राष्ट्रवादी विचारक थे उन्होंने भारत से बाहर रहकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी थी
6: उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात के मांडवी में हुआ था उनकी इंग्लिश और संस्कृत सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी थी वे महर्षि दयानंद सरस्वती की आइडिया और फिलॉसफी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे
5: दोस्तों आपको बता दें उनसे प्रभावित होकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उन्हें संस्कृत का प्रोफेसर अपॉइंट किया बाद में उन्होंने इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई की
6: और बाद अगर अचीवमेंट्स की करें तो उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस बनाया जो विदेश में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स और जो युवा क्रांतिकारी थे उनका मेन हब बन गया
5: साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम का न्यूज़पेपर निकाला जिसमें ब्रिटिश रूल के अत्याचार और पॉलिसीज पर खुलकर क्रिटिसिज्म किया जाता था
6: साल 1905 में उन्होंने इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडिया को अंग्रेजों से आज़ाद कराना
5: दोस्तों उन्होंने इंडियन स्टूडेंट को ब्रिटेन में हायर एजुकेशन हासिल करने और देश सेवा से जुड़ने के लिए स्कॉलरशिप्स देना शुरू किया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कॉन्टिन्यूस प्रेशर की वजह से उन्हें लंदन छोड़कर पेरिस और बाद में स्विट्जरलैंड जाना पड़ा
6: अपनी लाइफ के आखिरी दिनों तक वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में सोचते रहे उनके विश थे कि कंट्री के आज़ाद होने के बाद उनकी अस्थियां भारत लाई जाए और उनकी ये विश साल 2003 में पूरी हुई जब उनकी अस्थियों को स्विट्जरलैंड से लाकर गुजरात के मांडवी में क्रांति तीर्थ मेमोरियल में स्थापित किया गया
5: तो दोस्तों कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम सोच रहे हैं कि पूजा क्यों ना पे दोस्तों के लिए एक म्यूजिकल ट्रैक हो जाए
6: बिल्कुल साक्षी

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: वेलकम बैक दोस्तों। तो हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है पूजा, वो है प्रश्न मंच। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें अपना उत्तर हमारी ईमेल आईडी और हमें व्हाट्सएप करेंगे। तो हमारा जो कल का प्रश्न था वो था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 में क्या प्रावधान है? और इसका उत्तर है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान और उसकी प्रक्रियाओं में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। और ये प्रावधान संविधान के भाग 20 के अंतर्गत आता है। और ये प्रावधान हमारे संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जो हमारा आज का प्रश्न है वो है,
4: आज का सवाल है, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? सवाल एक बार फिर से, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? आप इसका सही जवाब हमारी ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniald@gmail.com और हमारा नंबर है 8004926250। आई रिपीट 8004926250।

0: तो श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे यानी पूजा यादव को
1: और मुझे यानी साक्षी पांडे को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुवा क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं। इनमें 105 भारतीय शामिल हैं। लापता लोगों में 291 विदेशी नागरिक और 93 नेपाली नागरिक हैं। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। ये शुरुआती आंकड़े हैं और अभी इनका सत्यापन किया जा रहा है। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। बाढ़ के कारण अब तक 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा नंबर है 9779107500। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस कठिन समय में भारत के लोगों की संवेदनाएं नेपाल के लोगों के साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने से बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए

0: तैयारियां तेज कर दी गई हैं। गंडक नदी से लगे 6 जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष निगरानी रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिमी चंपारण के बगहा और वैशाली के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। गंडक नदी में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की एक टीम गोपालगंज और बेतिया में तैनात की गई है। साथ ही एक अन्य टीम को मुजफ्फरपुर में तैयार रखा गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री शाह ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को तैनात किया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंप दिए। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भारतीय चिकित्सा संघ ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। संघ ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। संस्था ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए CM इम्पैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की उम्र तक पढ़ना और लिखना सीख सके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा 2026 का औपचारिक समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे और पारी घोषित कर दी थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। आइए आपको जानकारी दे दें इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों की। पहले सुनिए इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पर पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे अजय कुमार से नीत वचन। इसके अलावा श्रद्धा रावत की वार्ता होगी जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि। 7:30 पर होगा कार्यक्रम किस्सा गोई। इसमें सुनिएगा सादत हसन मंटो पर आधारित ये कार्यक्रम होगा। 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8 बजे और 10 बजे। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा पंडित गोपाल मिश्र का सारंगी वादन। ये थी जानकारी इस सभा के शेष कार्यक्रमों की और अब डालते हैं एक नज़र कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य कार्यक्रमों पर। कल शाम 4 बजे आप सुनेंगे संदेश टू सोल्जर्स। इस कार्यक्रम को हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुबह 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर श्याम लखनपाल से की गई बातचीत। विषय होगा फसलों में रासायनिक खाद के प्रयोग में सावधानियां। सुबह 6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराग अग्रवाल की वार्ता होगी लॉन्ग कोविड एक जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर सुनिएगा पंडित

संजीव अभ्यंकर का गायन, दिन में 12:15 पर पंडित सी आर व्यास का गायन और शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे संगीता शंकर का वायलिन वादन। पंचायत घर कार्यक्रम में शाम 6:30 पर ग्रामीण भाइयों को सुनवाएंगे किसान चर्चा, इसमें प्रतिभागी होंगे महिषेंद्र उपाध्याय और ज्ञान सिंह पटेल। शाम 7:31 पर काव्य कौमुदी कार्यक्रम में आप सुनेंगे अमिता मेहरोत्रा और अभिषेक केसरवानी से उनका कविता पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रिया के स्वर में गीत और भजन। 8:30 पर होगा कार्यक्रम सबरस और गजलों पर आधारित कार्यक्रम कहकशा का समय होगा रात्रि 9:30। ये थी जानकारी इस सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले हमारे कुछ मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

0: सुबह सवेरे आध्यात्मिक चेतना का कीजिए विकास आराधना के साथ।
1: विचारों की तरंग और भावनाओं की उमंग, नमस्कार प्रयागराज के संग।

0: ही कलाकार में फिल्मी सितारों का सफरनामा। जोड़िए दिल से दिल के तार हेलो फरमाइश के साथ।
1: गृह लक्ष्मी के साथ होंगी घर की

0: लोक रंग लोक उमंग लेकर आता है पनघट।
1: युवाओं की सोच को आवाज देता कार्यक्रम युवावाणी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
0: और पंचायत घर में होंगी खेत खलिहान और चौपाल की बातें।

0: संस्कृत हिंदी और उर्दू कार्यक्रमों का संगम सिर्फ आकाशवाणी पर।
1: तुषार है मैं तेरी शायरी।
2: समाज का प्रतिबिंब और जन जन की आवाज आईना के साथ।
1: तू आशिक है मैं तेरी आशिकी।
0: सिल्वर स्क्रीन से खुलेगा सिनेमा की सुनहरी यादों का एल्बम।

0: लिफाफों में बंद एहसासों के रंग, चिट्ठी आई है के संग। पहली
1: बार सुबह से रात तक आपकी आवाज आपके साथ। चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक चिक

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। अब प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान, आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। नेपालदेशे आकस्मिक आप्लावेन 84,300 पर्यटकाः विलीनाः, यत्र 100+ भारतीयाः संदिग्धाः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना नेपाल प्रधानमन्त्रिणा बालेन्द्र साहेन सह वार्ता विहिता, शोक संवेदना व्यक्ता, मानवीय सहायतायै च आश्वासनं दत्तम्। नेपालस्य आप्लावेन गण्डक नद्याः जलस्तर वृद्धेः आशंकां विलोक्य बिहार राज्येन जलप्लावन सज्जता तीव्रीकृता। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन सर्वविध सहायतां प्रदातुं दृढाश्वासनं दत्तम्। देशे प्रसृत्यमानान् इन्फ्लुएंजा प्रकरणान् विलोक्य आईएमए संस्थया स्वास्थ्य संचेतना प्रख्यापिता। न भेतव्यं न च संक्षोभः करणीयः, सर्वैः केवलं जागरूकता परिपालनीया इति संस्थया उद्घोषितम्। टोरंटो नगरे वित्तमन्त्रिणः उद्घोषः, तीव्रनगरीकरणेन प्राविधिक क्रान्त्या च भारतस्य संरचनात्मकं रूपान्तरणं जायमानमस्ति। अपि च कोलंबो स्पर्धायां श्रीलंका दलस्य दृढः प्रत्याघातः, फॉलो ऑन प्राप्य अपि चतुर्थ दिवसांते भारतस्य उपरि 16 धावनांकानां अग्रता। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। नेपालदेशस्य रसुवाक्षेत्रे अद्य प्रातः भोटे कोशी नद्याम् आगतेन आकस्मिक जलाप्लावेन महती विभीषिका संजाता, यत्र 100+ भारतीय पर्यटकान् समेत्य 84,300 पर्यटकाः विलुप्ताः। नेपाल पर्यटन परिषद

0: पंचो राम राम राम।
1: हम कहा दुर्गा भैया।
0: हाँ भैया,
1: भाई एक पुराण काकूत बाटे और जो की पीढ़ी दर पीढ़ी हम तो सुनत चला आवत है, मूल आज भी बहुत प्रासंगिक बाटे। अगर ईमानदारी से इतमान से सोचा बिचारा तो लागत कि भाई प्रकृति कितना कुछ देत बाटे, हम तो ओका समझ सकी और सवाच सकी ना। तो
0: बिल्कुल,
1: खेत खलिहान देश समाज कितना भल रहा है, कितना सुखी रहा है।
0: और एक चीज भैया, हमेशा देखा बुजुर्ग कहे हैं कि प्रकृति के पास सब कुछ बा,
1: सब कुछ बा,
0: अगर उसका सही उपयोग करे तो सब कुछ प्रकृति देती
1: है। भैया प्रकृति का मतलब माता समझता है ना, माँ समझ के जाबा, अपना तो से जाबा, माई का राह दिखावा, मनबा जनबा तो सुखी रहबा। तो देखा जो नहीं कहा रहा कि भाई जोन भी एक फसल का पौधा बाटे जमीन के अंदर का चार अंगूर जमीन को हो गया, चार अंगूर ऊपर जोन है वो भाई जोन

0: पशु पक्षी यहाँ हुनकर
1: होइ
0: समझत हन, आ गाय बछेरू वहाँ चरत हन। ओकरे ऊपर के जोन बाटे वो भाई भूसा कूना में
1: पशुओं के
0: बड़े काम आए, और जो सबसे ऊपर का रहा था वो मनुष्य के बड़े हमरे तोहरे बड़े बाटे,
1: यानी सबके निर्धारित बा,
0: सबका निर्धारण बाटे। तो होत का कि अब जोन भी फसल उत्पादन होत है तो मनई कभो कभो अपने स्वार्थ में, कभो कभो जल्दबाजी में, या कभो कभो कहला तो हम तक कहब कि भाई बाजार का या प्रकृति का ना समझे बूझे की वजह से तमाम ऐसन अवशेष छोड़ दिए थे, खास तौर पर गेहूं के फसल में और पुआल धाने के फसल में। तो होत का कि बाद में ओका अब कैसे सारें कैसे करें, जल्दी दूसरों तोड़ ले के है तो करत हैं का वहाँ आग लगा दिए थे, जला दिए थे। तो जले से भाई ना सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होत है, साथ ही साथ जोने माटी में जोने खेते में फसल का उपजाए यहाँ वो तपत है, गर्म होत है, ओकर उपजाऊपन जात है।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया, उपजाऊपन जात है। और जौन सोचत हैं कि भाई जलाए दे, एक तो बहुत सारे कीट मित्र खत्म हो जाते
0: हैं। बहुत बड़ी बात कही है। हाँ, मित्र कीट खत्म भाई भैया तो देर सवेर चल के फसल का नुकसान होता। तो कहे का मतलब ये बाटे भाई कि अगर हम तक कही का देखा सबसे सरल और अच्छा रास्ता बाटे कि जब भी कोनो फसल काटे तो हल्का सा पलेवा दे के एक दुई बार जुताई करा दी ना, तो वो सरी के माटी में खाद का काम करे,
1: खाद के काम करे, माटी के उर्वरा शक्ति बढ़ाए दे।
0: तो कहे जड़ में देखा नत्रजन रहा था भाई, जोन की अपने तरीके से वायुमंडल से खींच के खेत में ले जात है। तो कहे का मतलब भी बाटे कि भाई रास्ता कुल बाटे मूल प्रकृति के समझे के बाद खेत के समझे के बाद।
1: अगर कम शब्दों में हम भैया बताई धीरे धीरे कि जौन पुरनिया रहन सब तो करत रहन, ये जो नए तरीके से नए नए सोच आए कि भाई हमारा समय कम लागे, भाई गोरु बछरुआ रखब बंद कर दें तो कहन भूसा का करी तो भाई ओका नहीं उपयोग में लाएन तो जलाए देते रहें। तो अब संकट ये बात है कि जब जल गया तो भूसों के लिए भाई एक संकट खड़ा हो गया,
0: खड़े है
1: जौन आप कहें कि पर्यावरण के खतरा बाट है। लेकिन अब ये समझे के बात है कि आज बहुत सारे ऐसी तकनीक बा कि ओका बायोगैस हो या चाहे जो उनका हम सब कहे कि भाई पराली अगर आप ओका कह दे सड़ा के जोता दे तो माटी को उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है, और या ऐसन भी आजकल डिकम्पोजर वगैरह आ गया है कि ओका खाद के रूप में भी तैयार कर सका,
0: खाद के रूप में तैयार कर सका। तो हम कहते हैं भाई अगर कहूँ इकट्ठा हुआ बाटे ना, खास तौर पर देखा यह मौसम में जैसे बजरी बाटे जुनहरी बाटे तो एक तनिक खूंथी बड़ी होत समझत है ना, और ऊपर रहा अगर पंचहरे चाहे तो आसानी से निकलू सकत कुदारे के
1: मार आराम से।
0: हाँ खेत भाई हरा बाटे गील बाटे तो आराम से निकाल सकत है। ओका हम कहा था लाए कि अगर कंपोस्ट का खाद बाटे समझ केचुआ खाद बाटे ओमा ढाँक दे तोप दे तो धीरे धीरे भूरा बन के खाद बन जाता। नतजन उनमें पहले से आए तो इतना बढ़िया खाद तैयार हो सकता कि खेते के बड़े समझ ले कि अमृत बाटे।
1: बिल्कुल बिल्कुल अमृत बाटे। और पहले तो भैया ये हो रहा कि जौन भाई बाग बगीचा के या फिर दुआरे मुहारे जौन खर पतवार रहें जौन पाती होती इकट्ठा होत रहें, अब वो भाई गड्ढा में तायदा या जौन घरे के भाई जौन भाई बासी खाना या अन्य कुछ भी
0: हाँ,
1: मिले
0: तमाम भी तो करो भाई
1: रख के वो ही खाद के रूप में तैयार हो सकता है,
0: पूरे तरीके से खाद बना सकता है। बस जरूरत यह बात के बाद भाई की चेतन। अच्छा सबसे बड़ी बात यह है कि एकर सबका प्रशिक्षण का पूरी पूरा ब्यौरा व्यवस्था सरकार की तरफ से बात।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अगर मनई चेतय जानय इच्छुक हो तो तमाम रास्ता है। और एक बात दुर्गा भैया हम और बता दी, देखा जोन केचुआ का खाद बाटे भाई शहर में या गांव में पैकेट में बनाए के कितना महंग बिका
1: बेचा था है।
0: हम कहते भाई खेती के साथे साथे खेत आधारित रोजगार धंधा अगर कर लें ना व्यवसाय कर लें तो दो तरफा उनका लाभ होए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो पंचन के ये कुल चीजन पर चेतई के बाटे अपनावे के बाटे। और दुर्गा भैया एक बात देखा पंचन सब कहा क्या है कि खेती किसानी के साथे समझत है ना, अगर ओकर चौहद्दी मेड़बंदी मजबूत अनाज बाटे तो सिर्फ खेते देख के न रह पाएगा, जोर से बारिश होए पता चला मुसबिल्ला फूटा मेड़ टूटा कुल उपजाऊ मिट्टी
1: बही गई
0: ताल तलैया में बही गए, पता चला वो भाई मिट्टी जोन की कई

0: आलसी सेवत पखिवत तैयार करिए
1: तैयार
0: हम,
1: होते हैं।
0: तो मेड़बंदी पंचहरे मजबूत करें, चौकस करें, और साथ ही साथ अगर कुआं इनारा का पानी पियाता है या हैंडपम्प का पानी पियाता है तिहो देखे रहा को करे अगल बगल मुसबिल्ला तो ना आया है, कहते पानी भाव खुल के इतना
1: हाँ
0: जाता
1: खुल
0: है
1: के जात तो नहीं
0: तो
1: है।
0: हमें बाहरे का दूषित पानी जात है तो नुकसान कैसे करता है।
1: हाँ भाई देखा ऐसे में बारिश के भैया कहा जाए मौसम भा आपके दैव खूब प्रसन्न हुआ है ऐसे में देर से
0: हाँ
1: आए
0: हाँ बारिश
1: लेकिन
0: हुई बाहो बहुत बा
1: दुरुस्त
0: भाई
1: बढ़िया बारिश होती बात है। ये बिना मेड़बंदी तो भाई बहुत जरूरी बात।
0: बहुत जरूरी है।

0: आपके देव खूब प्रसन्न हुआ है इस समय देर से
1: हाँ
0: आए,
1: हाँ बारिश
0: लेकिन
1: हुई बहुत बहुत
0: दुरुस्त
1: बाबा
0: बढ़िया बारिश होती बाटे। तो ये बिना मेड़बंदी तो भाई बहुत जरूरी बा।
1: बहुत जरूरी है। हम कहते भाई देखा है, पहले देखे रहें सवाचे रखें, खास तौर पर धान का जो फसल रहा था, तो हम आदमी सोचा था कि भाई पानी खेते में लागत रहा है, मूल कभों कभों हो तो का कतहों से छोट कबील हो तो फिर धीरे धीरे बाढ़ चला जाता हूँ, तो मेड़ उदार देता था ऐसा कुल पंचन होशियार
0: और
1: रहा
0: सबसे
1: भाई।
0: बड़ी चीज भैया कि अगर पानी भरा बा तो एक तो नमी बनी रही, दूसरी चीज बा कि जल स्तर के भी एक बड़ा कहते है, चाहे थोड़े बहुत हो फायदा बहुत होता है।
1: फायदा होता सही कहा था। हम कहा देखा भाई तो बत कही रही पंचन है सुबह अमूल, आज देखा जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि, भाई परिवर्तन जलवायु में जो हो रहा बात है ओकर
0: हाँ
1: कृषि
0: बहुत
1: पर
0: कुछ
1: का कुछ
0: मौसम बदलत बाटे।
1: प्रभाव पड़ता है, कैसे ओका पंचरे महसूस करता हूँ, कौन कुछ रास्ता बाटे ओका सही करे के बड़े, तो एपा पंचरे एक बत कही सुनी है। और हम कहा नीति वचन के दिन बाटे तो पंचरे नीति के बात भी सुनी है, मूल ओकरे पहले एक विकास गीत बाटे इंद्रजीत पटेल और संघातिन का, पंचरे सुनने पे बात कही हुई।
0: सुनवाई दे।

0: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
1: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
0: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
1: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
2: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: हाँ भैया देखा आज तक गाँव पंचायत सुने सने सौ रहा सुने अब जो बात कही होत रही भाई ना कि देखा नीति वचन के दिन बटे तो नीति की बात में ही रहा था कि भाई ऐसा बात जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी जन कल्याण के बड़े समाज कल्याण के बड़े प्रकृति के कल्याण के बड़े
4: हाँ मानवता के लिए कि भाई मनुष्य के जो भी कह जाते कि जो भी उपाय या आचरण कर सके मनुष्य बन सके ओके लिए भाई नीति वचन राहत है।
3: हाँ तो देखा एप्पा भैया प्रभाकर त्रिपाठी भैया नीत के बाद बताओ था पंचायत सुने।

नीति वचनों के संदर्भ में सबसे पहले हम सब लोगों को नीति का वास्तविक अर्थ समझ लेना चाहिए। नयनम नीति ही, अर्थात जो आगे ले जाए उसे नीति कहते हैं। संस्कृत में नीति शब्द संस्कृत की नी धातु से भाव अर्थ में तिन प्रत्यय करने पर निर्मित होता है। नीति हमारे हिंदी के ग्रंथों में, संस्कृत के ग्रंथों में विपुल साहित्य भंडार के रूप में भरा पड़ा है। अरण्यकालीन संस्कृति में हमारा जो वैदिक वाङ्मय था, जिसमें उपनिषद हुए, वेद हुए, श्रुतियां हुई, उन सब में नीति के आख्यान, नीति विषयक तत्व, नीति विषयक वाक्य, नीति के सिद्धांत पूर्णतः भरे पड़े हैं। हिंदी के क्षेत्र में श्री रामचरितमानस मानव मानस का दर्पण है, और हमारे मानस में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने चरित्र के माध्यम से, अपने अभिकथनों के माध्यम से कालजयी रचना रामचरितमानस में महात्मा तुलसी ने ऐसी नीतियों को पिरो दिया, एक ऐसा माला बना दिया जिसके पहनने से, जिसके धारण करने से, जिसको समझने से, जिस पर चलने से हमारा उत्थान होता है। वस्तुतः हम जिस मार्ग पर कार्य करने से हम मनुष्यों का जीवन सफल और सुंदर होता है, समाज सुघड़ होता है, हम अपने जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाते हैं, उसे नीति कहते हैं। रामचरितमानस में विभिन्न पक्षों पर नीति का उद्घोष है, जैसे लोक शिक्षा, लोक प्रेरणा, लोकोपदेश, लोक व्यवहार, लोकाचार, लोकानुभव। इस प्रकार से महात्मा तुलसी ने अनुभवजन्य ज्ञान के आधार पर हमें गुरु महिमा के बारे में, आदर्श जीवन के बारे में, अस्पृश्यता के उन्मूलन के बारे में, लोकतंत्र के निर्माण के बारे में, मित्र धर्म

के बारे में, पितृ धर्म के बारे में, अतिथि धर्म के बारे में, इस प्रकार से जीवन के विविध पक्षों पर महात्मा तुलसी ने अपने मानस में नीतियों के माध्यम से समाज को जागृत करने का सुयत्न किया। यदि हम उदाहरण लें तो तुलसीदास एक चौपाई में लिखते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा। जब धूल हवा का साथ करती है यानी सत्संगति पाती है तो आसमान में हिलोरे लेती है, वही धूल जब जल का साथ करती है तो कीचड़ बन जाती है। अर्थात समाज में हम मनुष्यों को सत्संगति पर आरूढ़ होना चाहिए। साथियों, सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः, ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव वदन्ति ते एव सज्जनाः भवन्ति। सत्संगति महिमा नहीं गोई। यदि हम कुसंगति में जाएंगे तो आप जान लें कि कुसंगति का ज्वर सबसे अधिक भयानक होता है। साथीगण, सताम सज्जनानाम आचारः के संबंध में हम स्पष्ट करते हैं कि तन से कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है, आचरणों से ही देवता और मनुष्य पहचाना जाता है। हमारी नीति यह कहती है कि हमें आचरण प्रधान जीवन व्यतीत करना चाहिए। व्यक्ति के इस भौतिक शरीर का कोई महत्व नहीं है, व्यक्ति के आचरणगत शरीर का महत्व व्यक्ति के जीवन में है। इसी प्रकार से संत शिरोमणि तुलसी गुरु महिमा का वर्णन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र थे। इतने बड़े राजा के पुत्र थे फिर भी गुरु आश्रम में जाकर शिक्षा लेते हैं। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। राजा दशरथ चाहते तो गुरु को अपने दरबार में बुलाते, पर गुरु महिमा जो आदर्श स्वरूप में होनी चाहिए, जो नीति के रूप में होनी चाहिए, उसका उल्लेख गोस्वामी जी इस प्रकार कर रहे हैं। और आदर्श जीवन के लिए गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि प्रात काल उठिकै रघुनाथा मातु पितहि गुरु नावहि माथा। हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय मनीषा, जिसकी ओर आशा भरी निगाहों से समग्र संसार निहार रहा है, वो अतिथि देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव का जय घोष करती है। अगली पंक्ति में तुलसीदास जी जन कल्याण के लिए एक नीति का उल्लेख करते हैं। जब निश्चर यानी राक्षस वर्ग गांधी तनय विश्वामित्र जी को यज्ञ नहीं करने देते और वो राम को मांगने यानी किसी के पुत्र को मांगने राजा दशरथ के दरबार में जाते हैं, फिर दशरथ के सामने एक अनिर्णय की स्थिति होती है, क्या मैं अपने पुत्रों को जन कल्याण के लिए दे दूं? तुलसीदास लिखते हैं, सौंपे भूप ऋषि ही सुत, बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पदशीष। महाराज दशरथ समाज कल्याण के लिए, ये नीति कहती है कि यदि राष्ट्र के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ भी न्योछावर करना हो, कुछ भी बलिदान करना हो, तो हमें कर देना चाहिए। महाराज दशरथ राम के चरित्र के साथ जोड़कर हमें ये देखने को मिलता है कि नीतियों के कारण ही हमारा समाज उत्थान को प्राप्त करता है। अंततः श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं और राक्षसों का नाश करते हैं। समर्पण, ऐश्वर्य का त्याग, मोह का त्याग, यह भी हमारी एक नीति है। इसे भी रामचरितमानस में तुलसीदास जी उद्घाटित करते हैं। एक समय महाराज दशरथ अपने दरबार में बैठते हैं, हाथ में उनके दर्पण आता है। श्रवण समीप भये सित केशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, नृप जुवराज राम किन देहु, जीवन जन्म सफल कर लेहु। ऐसा विचार उनके मन में आता है कि अब हमारा अपन तीसरी अवस्था को प्राप्त हो रहा है, तो हमें राज का भोग अब छोड़ देना चाहिए। यानी हमारी संस्कृति ये कहती है कि एक अवस्था के बाद हमें वैराग्य की ओर, वानप्रस्थ की ओर, समाज के कल्याण की ओर, स्वकल्याण की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा भी जयघोष गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मानस में कर रहे हैं। आज पूरे संसार में लोकतंत्र की धूम है, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन हो, इस पर समग्र संसार एकमत है। हमारे महात्मा तुलसी ने अपने रामचरितमानस में इसे उस समय उकेरा था जब गुरु आज्ञा पाकर महाराज दशरथ राम को गद्दी देने की बात करते हैं, उसके पहले एक सभा बुलाते हैं। तुलसी की पंक्तियां चरित्रार्थ हो रही हैं नीति वाक्यों पर, जो पांच ही मत लागई नीका, करहु हरस ही राम ही टीका। राम को आप राजगद्दी तभी दीजिए जब हमारे समाज के अधिकांश लोगों को प्रिय लगे। इसलिए उन्होंने अपने मंत्रियों की, अपने सभासदों की, अपने पूर्ववासियों की एक सभा बुलाई और उसमें सबकी सहमति हुई। यही वास्तविक लोकतंत्र है, यानी लोकतंत्र में जनता के निर्णय का महत्व है। प्रजा धर्म और पुत्र धर्म के संबंध में भी तुलसी का स्पष्ट
मत

है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब जंगल जाने की बात आती है तो वो अपनी माँ से कहते हैं, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे माँ सुनो, पुत्र वही है। संस्कृत में पुत्र का यदि हम अर्थ करें तो पुंग का अर्थ हुआ नर्क और त्र का अर्थ हुआ तारण करने वाला, यानी माता पिता को जो नर्क से बाहर ले जाए, यानी माता पिता के कल्याण के लिए जो काम करे वही पुत्र है। यह हमारी नीति कहती है। आज के समाज में वृद्धाश्रमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, शायद हम अपने इन नीति वचनों से भटक रहे हैं। यदि अपने इन नीति वचनों पर रह जाएं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, तो शायद वृद्धाश्रम घटेंगे और समाज में माता पिता का वह खोया हुआ सम्मान हम सब लोग पुनः दे पाएंगे। इसीलिए हमें नीति को दोहराने की आवश्यकता है। और भाई का विश्वास भाई के प्रति, राम को भरत के कारण, भरत की माता कैकेयी जंगल की मांग करती है, वो जंगल चले जाते हैं। अब जब भरत जी उन्हें मनाने जा रहे हैं तो जरा विश्वास देखिए, भरत ही हो इन राज मधु। हे भाई लक्ष्मण, भरत को अहंकार नहीं हो सकता, ये भाई का भाई के प्रति विश्वास है। आज के समाज में भी यदि भाई का यह विश्वास पुनर्स्थापित हो तो समाज में वैमनस्य समाप्त हो जाएगा। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरि हर पद पाए, ब्रह्मा विष्णु अथवा महेश का पद मिल जाए फिर भी भरत को अहंकार नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का उद्घाटित हो रहा है। पितृधर्म के संबंध में आज अपने समाज को देखें, जहां वृद्ध माता पिता न्यायालयों की शरण में जा रहे हैं अपने भरण पोषण के लिए, वहां भगवान राम क्या कर रहे हैं, जैसे ही जंगल में सुनते हैं कि मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए तो करी पितु क्रिया वेद जस बरनी भे पुनीत पातक तम हरणी, वो वहीं पिंडदान करते हैं। यानी हम अपने स्वर्गवासी माता पिता के प्रति भी सम्मान का भाव धारित करते हैं, नैतिकता का भाव धारित करते हैं, नीति का भाव धारित करते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। राजधर्म के संबंध में राजा को कैसा होना चाहिए, तुलसीदास जी स्पष्ट लिखते हैं कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। ऐसा राजा जिसके राज्य में यदि प्रजा दुखी हो जाए, चाहे किसी भी क्षेत्र में दुखी हो जाए, तो ऐसा राजा नरक का अधिकारी होता है, नरकगामी होता है। ये राजपद की मर्यादा है, राज की नीति है, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अछूत नहीं है, इस पर भी तुलसी की स्पष्ट नीति है। हमारे नीति वचन रामचरितमानस का जो मानव मन का दर्पण है उसमें आता है। लिखते हैं जब भिलनी के साथ भगवान राम बैठते हैं तो कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खायऊ बारंबार बखानी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भिलनी के इन जूठे बेरों को ग्रहण करते हैं। कहाँ है स्पृष्टता समाज में? आज का समाज इन्हीं विषमताओं के कारण, इन्हीं दुरूहताओं के कारण खंडित हो रहा है। समाज में अशांति, हिंसा का वातावरण उत्पन्न हो रहा है। यदि भगवान राम की इस नीति वचन पर हम विश्वास करें कि हमारे लिए मनुष्य उसी तरह प्रिय है जैसे हमारा पुत्र, जैसे हमारा भाई, जैसे हमारी पत्नी, जैसे हमारे माता, जैसे हमारे पिता, यानी प्रत्येक व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की जो भारतीय मनीषा है उसे स्वीकार करे, तो समाज में भ्रातृत्व, भाईचारा, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, प्रेम जैसे मानवीय मूल्यों का उद्घाटन होता है। इसी प्रकार से महात्मा तुलसी लिखते हैं शरणागत के संबंध में, यदि कोई व्यक्ति क्षमा प्रार्थी हो जाए, किसी से कोई त्रुटि हुई और आपके समक्ष आकर वो क्षमा याचना कर लेता है, तो आपको किस प्रकार का आचरण करना चाहिए? यहां तक कि शत्रु रावण के भाई विभीषण भगवान के शरणागत जब होते हैं तो उनके सखा, उनके मित्रवर यानी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंत्रीगण कहते हैं, यह दुश्मन का भाई है, इसे स्वीकार मत कीजिए। भगवान राम वहां नीति वाक्य उच्चारित करते हैं तुलसी के शब्दों में, लिखते हैं, शरणागत कहूं जे तजहि निज हित अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिनहि विलोकत हानि। यानी कोई शरणागत हो जाए, कोई अपनी भूल को स्वीकार कर ले तो उसे कभी भी अपने से पृथक नहीं करना चाहिए, ये नीति कहती है। अगली नीति हमारी कहती है जन्मभूमि के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन उत्तर दिशि बह सरजू पावन। अपने साथियों से राम कह रहे हैं कि मेरी जन्मभूमि मुझसे अतिशय प्रिय है। इसी प्रकार समाज में अपने राष्ट्र के प्रति, जहां हमारा जन्म हुआ है, जिस धरती का हम अन्न खाते हैं, उसके

0: प्रति हम लोगों को आशावान होना चाहिए, धर्मवान होना चाहिए। वैसे तो रामचरितमानस में बहुत सी सूक्तियां हैं, पूरा का पूरा मानस, जिसे मैंने पहले ही कहा कि रामचरितमानस मानव मानस का दर्पण है। आप देखें उनकी एक चौपाई की, मंगल भवन अमंगल हारी, सकल भुवन की मंगल कामना है रामचरितमानस में। भारत की मंगल की कामना नहीं, संपूर्ण संसार के मंगल की कामना है, और यही भारतीय मनीषा है, यही भारतीय संस्कृति है मित्रों, और इसी आधार पर हम भारत के लोग अपनी संस्कृति के बल पर संसार में पूज्य हैं।
1: हाँ भैया, दुर्गा दिखाई तो नीति वचन रहा है। प्रभाकर त्रिपाठी भैया बताओ तो हैं पंचा से एक बात देखा, पंचा से यो कहा का है, नीत के बात है या भाई धर्म का बात है या मानवता के कल्याण का बात बाटे, कि अगर जलवायु में परिवर्तन भ तो तमाम चीज़ भाई प्रकृति में उथल पुथल हो जागा था, समझ
2: सुमेर भैया बिल्कुल।
1: तो ओ कतहों कतहों आदमी के, मनुष्य का, समाज का, गोरु बछड़ू
2: सब पे, सब पे प्रभाव पड़ा था,
1: सब पर प्रभाव डाला था। तो कैसे कुछ प्रभावित कर रहा बा खेती किसानी का, हमका ए पर बतकही हो मुल्क, पहले तो सनेस बाटे पंचर सुन लें।
3: बेटा ट्रेन रुकने तक यही इंतजार करना, चलती ट्रेन में चढ़ना उतरना बहुत खतरनाक होता है।
4: हाँ माँ मुझे सब पता है, ट्रेन रुकने के बाद ही प्लेटफॉर्म साइड से उतरूंगा और रेलवे ट्रैक पर कभी नहीं जाऊंगा।
3: अरे वाह मेरा बेटा तो बड़ा समझदार है। और ये कूड़ा कहाँ डालोगे?
4: डस्टबिन में। स्टेशन साफ रहेगा तभी तो सफर अच्छा लगेगा।
5: एक छोटी सी सावधानी जिंदगी भर की सुरक्षा, सुरक्षित रहें, स्वच्छता अपनाएं और दूसरों को भी जागरूक करें। स्वच्छ रेल परिसर, सुरक्षित रेल यात्रा, उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: तो सुमेर भैया संदेशा सुनागा, और जौन आप कहत रहन कि जलवायु परिवर्तन से सब पे प्रभाव पड़ा तो, और खासकर हम लोग तो भाई खेती बाड़ी से जुड़ा ही,
1: पूरा देश देखा किस
2: तो खेती पे का प्रभाव पड़ा है। इसमें श्रद्धा रावत से शैलेंद्र सिंह भैया बातचीत करे हैं, एक तुह सुनाओ पंच भैया भी सुने।
1: पंचों एक पुरान काकूत बाटे कि कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी, कहा कि मतलब ये भाई कि अपने देश का जो मिजाज बाटे, जो रवायत बाटे, जो संस्कृत बाटे, विविधता के लिए हुए बाटे। विविधता सिर्फ आम बोली भाषा व्यवहार या संस्कृत में ही नहीं, बल्कि प्रकृति के तौर पर भी, मौसम के तौर पर भी हमका आशीर्वाद देत बाटे। जहाँ सर्दी गर्मी बरसात खूब पड़ा था, साथ ही साथ भाई जो ऋतु है उनका परिवर्तन का भी आनंद आवा था। साथ ही साथ यह है कि भाई अपन देश जन जीवन जल और जंगल के नाम पे जाना जात रहा। मूल एमा कतहुन कतहुन चाहे विकास का दबाव हो, भौतिक विकास का दबाव हो, आर्थिक विकास का दबाव हो, जंगल और वन कटत जाता है, कम हो जाता है। ओकरी वजह से कतहुन कतहुन जलवायु में परिवर्तन हो रहा बाटे, व्यापक पैमाना पर हो रहा बाटे। बारिश के समय बारिश ना हो या दूसरे मौसम में बारिश होता, या तरीके से कुल मिलाई करके जोन भी होकर परिणाम बांटे सबके सामने बांटे। तो चिंता यह बात का बा कि यह जलवायु परिवर्तन कैसे संतुलित की जाए, कैसे एका पुनर्स्थापित की जाए, ताकि प्रकृति का संरक्षण हो सके, पर्यावरण का संरक्षण हो सके और जीवन खुशहाल हो सके, बीमारी आजारी से बचा जा सके। कहे मौसम परिवर्तन का, जलवायु परिवर्तन का बहुत कुछ प्रभाव हमारे सेहत पर पड़ा था। तो यहीं कुल विषय पर बतकही के बड़े अपने बीच में विशेषज्ञ आया है डॉक्टर श्रद्धा रावत जी, जो उनकी मौसम विज्ञान विभाग सुआर से नैनी में यह कुल पढ़ावा थे, जाना थे, करत देखा थे। डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत बाटे। सबसे पहले तो ये जाने चाहब कि सरल अर्थन बतावें कि मौसम परिवर्तन या जलवायु परिवर्तन का हुआ है और ये कैसे हमारे आम जनजीवन से जुड़ा बाटे।
6: नमस्कार पहले आप सभी को। देखिए आम भाषा में बात करें तो जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य है तापमान और वर्षा के पैटर्न में जो बदलाव हो रहा है, दीर्घकालिक बदलाव। अगर सूर्य की गतिविधि से ये बदलाव हो या किसी बड़े ज्वालामुखी के विस्फोट से तो ये प्राकृतिक है
1: जी।
6: लेकिन 1800 के दशक के बाद से, या आप ये कह लीजिए जब से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन और ये
1: औद्योगिकरण,
6: हाँ औद्योगिकरण हुआ है, तब से जो मानव गतिविधियां हैं उसकी वजह से मानव गतिविधियां जो हैं जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य चालक रही हैं। मुख्य रूप से आपका कोयला का जलाना, तेल गैस पेट्रोल डीजल, ये सब हमारा जो जीवाश्म ईंधन है, ये जलने के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेस जो उत्पन्न होती हैं, इनकी वजह से हमारे वातावरण में जो बदलाव, हमारे तापमान में जो वर्षा में और मौसम के पैटर्न में जो बदलाव है, वो जलवायु परिवर्तन।

0: परिवर्तन होता है।
1: और जलवायु को जो संतुलित करा था, पेड़ पालो,
0: हाँ
1: जंगल
0: जी,
1: जमीन, वो धीरे धीरे विकास के हत्थे चढ़त जात बाटे भाई। फैक्ट्री बनत जात हैं, शहर बनत जात हैं, घर द्वार बनत जात हैं, तो जो जंगल का एरिया बाटे, रकबा बाटे, वो घटत बात।
0: जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो, हाँ, इसको हम जो साइंटिफिक भाषा में बोलते हैं कि हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं अपनी ज़मीनों का। पहले जहाँ जंगल थे वहाँ हमने पहले खेती के लिए जंगल काटे,
1: जी
0: फिर अब हम उन खेती के ज़मीनों को बेच के उनको हम अपना कमर्शियल करके वहाँ बिल्डिंगें बना रहे हैं, हम वहाँ इमारतों का जंगल खड़ा कर रहे हैं। अब एक तरह से देखा
1: इमारतों
0: जाए
1: का जंगल, पेड़ पालों की जगह इमारत का
0: इमारत,
1: जंगल खड़ा हो रहा है, और इसे तरह तरह की दिक्कत। एकरे पीछे हम समझे तो एक बहुत बड़ा कारण आए, औद्योगिकरण और साथ साथ जनसंख्या का विस्फोट।
0: जी बिल्कुल, ये दो मुख्य कारण हैं। औद्योगिकरण की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज आई हमारे वातावरण में, उनकी वजह से आप ये समझ लीजिए कि पृथ्वी के चारों तरफ एक ग्रीन हाउस गैस का एक कंबल है। वो
1: जी
0: क्या कर रहा है, सूर्य की किरणों को जो पहले धरती से टकरा के वापस चले जाती थी, अब
1: जी
0: उनको सोख रहा है और वो हमारी धरती का तापमान और बढ़ा रहा है।
1: धरती गर्म हो जात
0: धरती
1: बा
0: गर्म होती जा
1: भाई,
0: रही
1: साल
0: है।
1: दर साल ही पता भी चलता है कि गर्मी के मौसम में कभों कभों तो ऐसा लागत कि जिसे सारा रिकॉर्ड, सारा पैमाना टूट गए हो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसे का कुछ प्रभाव पड़त हमारे कृषि में, आम जनजीवन में, एक बारे में बताऊँ।
0: देखिए, मैं एक लाइन कोट करना चाहूँगी। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के हिसाब से हमारा जो भारत है वो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित 10 शीर्ष देशों में शामिल है।
1: ओहो,
0: और इस समय लगभग लगभग आपका जो हमारे पृथ्वी का, विश्व का औसत तापमान जो है लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।
1: अच्छा,
0: अगर ये 1.5 या 2 या 3 और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, ये हमारे लिए जलवायु परिवर्तन संकट, घोर संकट की ओर हम और जाएंगे।
1: बढ़ जा। हाँ
0: रही बात जलवायु परिवर्तन का कृषि पर कैसे प्रभाव, तो आपने अभी बोला कि ये हम अपनी आम उसमें महसूस कर रहे हैं। जैसे इस समय औसतन तापमान हमारा जो है, मैं आपको बता रही थी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है।
1: जी
0: इसका असर सिर्फ इंसानों पे नहीं, हमारी कृषि पे भी आता है। हमारे जो अनाज हैं उनका अपना एक विशेष तापमान होता है हर चीज़ का। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें तो उसका उचित तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस का रहता है, और 35 से ऊपर जब ये तापमान चला जाता है तो ये उसके लिए एक नकारात्मक रूप से काम करता है फसल
1: जी
0: के लिए। अब आप अभी महसूस कर रहे होंगे मार्च के महीने में लू चलने लग रही है
1: हाँ, मार्च
0: जगह,
1: अप्रैल में लू
0: अप्रैल
1: चलता है।
0: मार्च ये जो महीने हैं हमारे को, आज से अगर हम 5 साल वर्ष पहले देखें तो ये चीज़ें मई में महसूस होती थी, मई
1: जी
0: जून।
1: हाँ, बीच मई के बाद
0: हाँ,
1: है।
0: अब ये चीज़ें अप्रैल और मार्च के आखिरी में हमें ये सब पता चल रहा है।
1: और डॉक्टर साहब, हम समझित अपने ही हैं, जो पारंपरिक कृषि है ज़्यादातर किसान वहीं पर आधारित है कि वर्षा के समय बारिश हुए तो धान लगे, धान का रोपनी हुए
0: बिल्कुल,
1: है, बहुत कुछ
0: इस वजह
1: कृषि।
0: से धान का भी देखिए डिले होता जा रहा है
1: जी
0: लगना। और जो वर्षा का पैटर्न है, आपने भी ये महसूस किया होगा कि जो पहले और अब में फर्क है। अब क्या होता है, वर्षा एक ही दिन में ऐसा लगता है हफ्ते भर की वर्षा हो गई है।
1: जी
0: पहले
1: हाँ,
0: होता था 4 दिन हल्की हल्की
1: झिम
0: हल्की,
1: झिम रिम
0: झिम
1: झिम,
0: झिम झिम झिम, वो 4 दिन तक चलती
1: तो
0: थी। वो शायद धरती के
1: धरती
0: लिए और फसलों के लिए
1: धरती को भी ठंडी करती रही
0: और
1: बारिश, और
0: फसलों के लिए
1: फसल
0: भी
1: के लिए
0: बहुत
1: भी
0: अच्छी
1: अच्छा
0: थी।
1: रहा था।
0: अब
1: जी
0: जो होता है एक ही बार में, जो इसको हम वर्षा के पैटर्न में बदलाव कह सकते हैं, ये भी हमारे जलवायु परिवर्तन का एक आप इंडिकेटर समझ लीजिए, जो बताता है कि
1: संकेत समझ ले।
0: संकेत समझ लीजिए।
1: और सबसे बड़ी चीज है, बिना मौसम के बारिश हुए, हवा बौखा चले, अंधड़ चले, तूफान चले, तो यह तरीके से कुल मिलाए करके ई कतहु न कतहु जलवायु का परिवर्तन हमारे बीच में बाटे, और हर क्यों महसूस भी करता है। और साथ ही साथ हम समझे थे कि एक तो भाई तापमान में वृद्धि हो जाए,
0: वर्षा
1: वर्षा
0: का
1: में दिक्कत हो, और उत्पादन में भी कतहु न कतहु कमी ले आए।
0: देखिए, जब तापमान हमारे, मैंने आपको बताया हर फसल का अपना एक तापमान
1: जी
0: होता है, अगर वो तापमान ऊपर नीचे जाएगा तो वो हमारी फसल के लिए नुकसानदायक है,
1: जी
0: उसका असर उत्पादन क्षमता में पड़ेगा उस फसल की।
1: जी
0: अब वर्षा, जिस फसल को ज़्यादा वर्षा चाहिए किसी पर्टिकुलर आप कह सकते हैं विशेष स्थिति में, जैसे कि अगर आपका गेहूं दाना जो भरने की जो आपकी स्थिति होती है, जिसे हम ग्रेन फिलिंग बोलते हैं साइंटिफिक भाषा
1: हाँ,
0: में,
1: क्रांतिक अवस्था में आता।
0: हाँ,
1: हाँ
0: या फिर जब वो फूल आते हैं
1: जी,
0: उस अवस्था में अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो आप समझ सकते हैं वो उत्पादन पे
1: नुकसान कई
0: नुकसान
1: जात भाई,
0: ही
1: फसल गिरी
0: फसल।
1: जात है, और
0: जी
1: हम
0: जी
1: समझे थे 10 से 25% तक नुकसान हो जात किसान
0: बिल्कुल,
1: का।
0: अगर भारत में अगर हम जो रिसर्च हो रही है उनका अगर हम अवलोकन करें तो वो 2010 से 2039 के बीच में जो जलवायु परिवर्तन

0: के कारण लगभग लगभग 5 से 9% के बीच में उत्पादन गिरने की संभावना जताई गई है।
1: बहुत बड़ा भाई नुकसान हुए।
0: और एक शोध के अनुसार वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो गेहूं का जो उत्पादन है वो 17% कम हो जाता है।
1: ओहो, अच्छा डॉक्टर साहब, काय से जोन कीड़ा है, रोग है, या आम दैनंदिन जीवन में जोन बीमारी है, यो बड़ा थे।
0: जी देखिए, उच्च तापमान और आर्द्रता जिसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी, ये हमारे कीटों को और बीमारियों को बुलाने का काम करते हैं।
1: जी
0: इसको हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हमारे कीटाणु और रोगाणु हैं उनकी इसमें वृद्धि हो जाएगी। गर्म जलवायु और जो है वो कीट पतंगों के प्रजनन क्षमता बढ़ाती है।
1: जी
0: तो इस वजह से हमारा क्या होगा, या तो हम उसमें कीटनाशक डालेंगे, दवाइयाँ छिड़केंगे, वो हमारे लिए इंसानों के लिए खराब है,
1: इंसान के लिए
0: और
1: खान पान
0: खान
1: दूषित हो
0: पान
1: जाए,
0: दूषित,
1: साथ माटी
0: साथ
1: दूषित
0: में
1: होए।
0: माटी दूषित, और साथ में वो जो ग्रीन हाउस गैसेस की हम उत्सर्जन की बात कर रहे थे वो
1: हाँ,
0: उसमें भी एक रोल प्ले करेंगे।
1: तो कहे का मतलब ये बाटे भाई कि जोन बाटे ही जलवायु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, ये बहुत तरीके से हमका आपका प्रभावित कर रहा है, एक बारे में सोचे विचारे जरूरत है। अच्छा, ऐसे बचे के बारे का कुछ करे का है?
0: इसको बचाने का सबसे, देखिए दो चार चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला तो हम अपना वर्षा के जल का उचित प्रबंधन करके
1: जी
0: वाटरशेड प्रबंधन कर लें। फसल उत्पादन में नई तकनीकों का जो विकसित की गई हैं उनका इस्तेमाल करें। अब फ्लड इरिगेशन ना देके हम ड्रिप इरिगेशन, या बोल सकते हैं आप उसको, जितना पानी की ज़रूरत है उतनी
1: उतना
0: की
1: ही।
0: दे,
1: हाँ
0: मतलब हमारे को पानी भी बचाना है।
1: जी
0: जलवायु परिवर्तन में हमारा एक रोल ये भी है कि हमें जल को भी बचा के रखना है, क्योंकि
1: जी
0: जल भी हमारा कम होता जा रहा
1: हाँ,
0: है,
1: जल ही जीवन है
0: जीवन
1: भाई।
0: है, सही
1: जी
0: बात। और जो बहुत ही इसमें एक अहम रोल है वो है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की तरफ हम अब बढ़ें। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर आप शब्दों से समझ लीजिए, जलवायु स्मार्ट कृषि,
1: जलवायु समर्थित कृषि या जलवायु मित्र कृषि, यह
0: कृषि
1: तरीके से करे का है,
0: बस
1: जिसमें कि रसायन का कम से कम प्रयोग करे
0: कम
1: का
0: से
1: है,
0: कम
1: उर्वरक का कम
0: उत्पादकता
1: से कम।
0: हमारी बढ़े, हमारा जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो वो, और कम से कम उसमें से कार्बन, आपका जो ग्रीन हाउस गैसेस जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन का
1: जी,
0: उत्सर्जन हो।
1: और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पालो लगाओ मैं।
0: ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, और जितना हो सकता है जैसा मौसम है उसके अनुसार कृषि का हम
1: डॉक्टर सिद्धा जी, आप आए, बहुत बढ़िया जानकारी दें, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन से हम कैसे बच सके, हमारे कृषि कैसे सुरक्षित रह सके, और कुल मिलाई करके देश, समाज या धरती का संरक्षण कैसे हो सके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: हाँ दीप भाई, तो देखा भैया बात कही रही है पंचन से, जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि, तो बहुत अच्छी बात हुई है। हम कहा भाई चला चलाओ तनी कुछ गौनाई सुनवाई दे पंचन कर।
2: तो भाई देखा, इंद्रजीत पटेल और संगातिन के एक तो कजरीबा, तो हूँ सुना सुमेर भैया, और पंच भैया भी सुना।
1: सुनवाई दे।

0: हाँ दुर्गा,
1: हाँ
0: उनका
1: सुमे भैया,
0: देखाई तो कजरी रही पंचरे सुमिन। एक बात पंचन चला चला कहा कि यह है भाई कि मौसम बदलत बाटे, आपन गोरू बछेरू लड़कियन गदेलन का ख्याल रखें, फसल ख्याल रखें, और विदा का समय हो तो विदा लीजिए। अच्छा पंचो, राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम पंचायत घर। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब प्रस्तुत है देश गान।

अभी आपने सुना देश गान। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से। समाचारों के लिए कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद ए मिलादुन नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और सिटी बसों में 27 से 29 अगस्त की मध्य रात्रि तक महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का शुभारम्भ करते हुए विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड भी प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं, कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई।
1: वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, उसके रोजगार तक, उसकी उद्यमिता तक और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के

0: स्वावलंबन का की गारंटी, यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है।
1: मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का प्रदेश के विभिन्न जिलों में सजीव प्रसारण देखा गया। मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में, कपिल देव अग्रवाल हापुड़ में, अनिल राजभर कौशाम्बी में, सुनील शर्मा गौतम बुद्ध नगर में, राज्य मंत्री संजय गंगवार पीलीभीत में और कैलाश सिंह राजपूत कन्नौज जिले में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अम्बेडकर नगर, अयोध्या और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया। नेपाल तिब्बत सीमा के पास रसुआ क्षेत्र में आज सुबह भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सीमावर्ती महाराजगंज और कुशीनगर जिले में प्रशासनिक निगरानी बढ़ा दी गई है। कुशीनगर जिले में नारायणी नदी के जलस्तर में वृद्धि की आशंका के मद्देनजर राज्य आपदा मोचन बल की टीम तैनात कर दी गई है। नेपाल में बाढ़ के कारण 384 पर्यटक लापता हैं, इनमें 105 भारतीय शामिल हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हुई है। पर्यटकों और उनके परिजनों की सहायता के लिए नेपाल पर्यटन बोर्ड ने टोल फ्री नंबर 1234, हेल्पलाइन 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रभावित क्षेत्रों में मौजूद पर्यटकों से प्रशासन के सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के करीब 150 स्थानों समेत देश भर में 1500 स्थानों पर खेलो इंडिया संवाद के तहत युवाओं को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत माई भारत द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा। ये खेल युवा नेतृत्व, नागरिक जिम्मेदारी, स्वयं सेवा, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण को एक साझा मंच प्रदान करेगा। इससे युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से सीधे जुड़ने का अवसर मिलेगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल चर्चा का हिस्सा बने। मेरा युवा भारत के राज्य निदेशक गोपेश पांडे ने बताया कि राजधानी लखनऊ में ये आयोजन 7 विभिन्न स्थानों पर होगा। समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आज मेरठ के पुलिस लाइन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कैंसर स्क्रीनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक भानु भास्कर और मंडल आयुक्त भानु चंद्र गोस्वामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री वाजपेयी ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये पहला ऐसा स्क्रीनिंग सेंटर है जहां विभिन्न प्रकार के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसका एम्स झज्जर से टेली कंसल्टेशन किया जाएगा। इससे जरूरतमंद मरीजों को स्क्रीनिंग और इलाज की सुविधा मिलेगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। देश के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा ए, H1N1 के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने फ्लू जैसे लक्षण वाले मरीजों की समय पर पहचान, आवश्यक जांच और उपचार के साथ गंभीर मरीजों के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के संबंधित विभागों को सतर्क रहने तथा संक्रमण नियंत्रण के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट, CSIR नेट तथा ICAR, AIEEE PG और AICE PhD 2026 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम इस सप्ताह जारी करेगी। एजेंसी ने बताया कि परिणाम और अंतिम उत्तर कुंजी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने को कहा है। रक्षाबंधन पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने चंडीगढ़ लखनऊ और दिल्ली वाराणसी रूट पर विशेष ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे प्रशासन के अनुसार चंडीगढ़ लखनऊ चंडीगढ़ आरक्षित स्पेशल ट्रेन कल रात 7:40 पर चंडीगढ़ से रवाना होकर अगले दिन 9:30 लखनऊ पहुंचेगी। वहीं दिल्ली वाराणसी दिल्ली स्पेशल ट्रेन कल रात 8:10 पर दिल्ली से चलकर अगले दिन सुबह

0: 6 बजे लखनऊ और 11:45 पर वाराणसी पहुंचेगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पैगंबर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर मिलाद महफिलें और सीरत सम्मेलन आयोजित किया गया। जगह जगह मिलाद जुलूस भी निकाले गए। इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। राजधानी लखनऊ में भी विभिन्न स्थानों पर जुलूसे मोहम्मदी और जुलूसे मदहे सहाबा निकाले गए। एक रिपोर्ट।
1: लखनऊ में मोहम्मदी मिशन द्वारा जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया, जो कि चौक स्थित ज्योतिबा फुले पार्क में पहुंचकर एक जलसे में परिवर्तित हो गया। वहीं जुलूस मदहे सहाबा अमीनाबाद के ऐतिहासिक झंडा वाला पार्क से शुरू होकर ऐशबाग ईदगाह तक गया। जुलूस में विभिन्न अंजुमन नाद पढ़ते हुए चल रही थी। इससे पहले कल रात भर शहर के विभिन्न स्थानों पर जलसों और मुशायरों का आयोजन किया गया, जिसमें पैगम्बर मोहम्मद साहब के जीवन पर और उनकी शिक्षाओं पर प्रकाश डाला गया। जुलूस के रास्तों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सबील और भंडारों का आयोजन भी किया गया। मुमताज अली, आकाशवाणी लखनऊ।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सुल्तानपुर, जौनपुर, बदायूं, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर और अमरोहा में भी मिलादुन्नबी का पर्व अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: ईद मिलादुन्नबी के मौके पर अमरोहा में भी आज जुलूस मोहम्मदी निकाले गए, जिसमें बड़ों के साथ बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए और मोहम्मद साहब की शान में नाद पड़ी गयी। जगह जगह विभिन्न समुदाय द्वारा जुलूस पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जुलूस के समापन अवसर पर मुल्क में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी गयी। सुरक्षा के चलते जुलूस के साथ भारी तादाद में पुलिस बल तैनात रहा। मरगूब हुसैन, आकाशवाणी समाचार, अमरोहा।
0: प्रदेश भर में रुक रुक कर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कल के लिए भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा का किया शुभारंभ। कहा, रक्षाबंधन पर 27 से 29 अगस्त तक महिलाएं सहयात्री के साथ कर सकेंगी निशुल्क यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रदेश के 150 केंद्रों समेत देश के 1500 संस्थानों के युवाओं से करेंगे खेलो इंडिया संवाद। खेल, युवा नेतृत्व, फिटनेस और राष्ट्र निर्माण पर होगी चर्चा। धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है ईद मिलादुन्नबी का पर्व। जगह जगह निकाला गया मिलाद जुलूस और प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला जारी। नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन सतर्क। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम किस्सा गोई। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है सादत हसन मंटो पर आधारित। स्वर है नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के।

0: قصه گویی.
1: दोस्तों नमस्कार, वंदना जी नमस्कार।
2: नमस्कार नेहा जी, दोस्तों को वंदना राठौर का नमस्कार।
1: दोस्तों ओहिसा गोई के इस अंक में हम हाजिर हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी और अफसाना निगार के साथ, शायद जिसकी बातें आपके हृदय को और जहन को इस कदर छू लेंगी कि जब आप कार्यक्रम के समापन तक होंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद उसके रंग में आप ढल चुके हैं।
2: और जब उन कहानियों पर आक्षेप लगे तो कहानीकार ने कहा कि मैंने तो वो सब लिखा जो समाज में मुझे मिला, मेरी कहानी समाज का आईना है। और हम चाहते हैं नेहा जी कि इस कहानीकार की जितनी भी कहानियां हैं उनको पढ़ते समय एक भावना जो होती है करुणा की, इंसानियत।

0: की वो अगर मन में रहेगी तब गहरे तक हम उसमें उतरेंगे और बहुत कुछ जान सकेंगे, और एक संवेदनशील मन का होना बहुत ज़रूरी होगा इसके लिए।
1: बिल्कुल, उस अफसाना निगार ने एक बार कहा सबसे, मेरी जिंदगी एक दीवार है जिसका पलस्तर मैं अनाखूनों से खुरचता रहता हूँ। कभी चाहता हूँ कि इसकी तमाम ईंटें पराग गंदा कर दूँ, कभी ये जी में आता है कि इसके मलबे के ढेर पर एक नई इमारत खड़ी कर दूँ।
0: दोस्तों, ये अल्फाज हैं उर्दू अदब के महान अफसाना निगार सआदत हसन मंटो साहब के, जिनकी जिंदगी उनके अफसानों की तरह न सिर्फ दिलचस्प थी बल्कि बेहद संक्षिप्त भी थी।
1: जीवन के 42.5 साल अपनी शर्तों पे जिए, उनकी शख्सियत में कभी रंग नजर आया लापरवाहियों का, तो कभी देखी गहरी सोच भरी समझ, और उनकी लेखनी की बेबाकी तो सुभान अल्लाह कोई जवाब ही नहीं।
0: किसी ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने यानी मंटो साहब ने जिंदगी को एक बाजी की तरह खेला और हार कर भी जीत गए। उर्दू भाषी समुदाय उर्दू शायरी को अगर गालिब के हवाले से जानता है तो फिक्शन के लिए उसका हवाला मंटो है।
1: ४० में ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में जब उन्हें नौकरी मिली तो उन्होंने रेडियो के लिए बहुत कुछ लिखा। यहाँ नून मीम राशिद कृष्णचंदर और उपेंद्रनाथ अश्क का उन्हें साथ मिला था। मंटो ने लगभग रेडियो के लिए 100 से शायद अधिक ड्रामे लिखे ना?
0: बिल्कुल, और फिल्म इंडस्ट्री से भी उनका जुड़ाव अरसे तक रहा। विभाजन के बाद मंटो पाकिस्तान जा बसे। जीवन और लेखन का संघर्ष ऐसा रहा कि पागल खाने तक जा पहुंचे।
1: इस बात को जब हम सुनते हैं तो जो हृदय है वो करुणा से और गहन सोच से भर उठता है।
0: लेकिन नेहा जी, पागल खाने जाने के बाद भी उन्होंने कहानियां ढूंढी। तभी एक कहानी जो काले जई बनकर उभर कर आई थी, टोबा टेक सिंह, वो हमारे समक्ष निकल कर आती है।
1: दोस्तों, कस्सा गोई में आज खंजर को कलम बनाकर बनावटी रिश्तों और दोहरे समाज की तल्ख हकीकत को कुरेद कर अपनी रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंचाने वाले विद्रोही रचनाकार मंटो की लिखी मार्मिक कहानी अब आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है
0: खोल दो।
1: अमृतसर से स्पेशल ट्रेन दोपहर 2 बजे को चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए।
0: सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने आंखें खोली और अपने चारों तरफ मर्दों औरतों और बच्चों का एक मुतलाकी समंदर देखा तो उसकी सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गईं। वो देर तक गदले आसमान को टकटकी बांधे देखता रहा।
1: यूं तो कैंप में हर तरफ शोर बरपा था लेकिन बूढ़े सिराजुद्दीन के कान जैसे बंद थे, उसे कुछ सुनाई नहीं देता था। कोई उसे देखता तो ये ख्याल करता कि वो किसी गहरी फिक्र में गर्क है, मगर ऐसा नहीं था। उसके होशो हवास शल थे, उसका सारा वजूद खला में मुअल्लक था।
0: गदले आसमान की तरफ बगैर किसी इरादे के देखते देखते सिराजुद्दीन की निगाहें सूरज से टकराई। तेज रोशनी उसके वजूद के रगो रेशे में उतर गई और वो जाग उठा। ऊपर तले उसके दिमाग पर कई तस्वीरें दौड़ गई, लूट आग भागम भाग स्टेशन गोलियां रात और सकीना।
1: सिराजुद्दीन एकदम उठ खड़ा हुआ और पागलों की तरह उसने अपने चारों तरफ फैले हुए इंसानों के समुंदर को खंगालना

0: शुरू किया। पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता कैंप में खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कोई पता न मिला।
1: चारों तरफ एक धांधली सी मची थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफ

0: कि सारी अंतड़ियां बाहर निकली हुई थी। इसके आगे वो और कुछ न सोच सकता।
1: सकीना की माँ मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी जिसके मुतालिक उसकी माँ ने मरते हुए कहा था, मुझे छोड़ो और सकीना को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ।
0: सकीना उसके साथ ही थी, दोनों नंगे पांव भाग रहे थे। सकीना का दुपट्टा गिर पड़ा था, उसे उठाने के लिए उसने रुकना चाहा था, मगर सकीना ने चिल्ला कर कहा था, अब्बा जी छोड़िए, लेकिन उसने दुपट्टा उठा लिया था।
1: ये सोचते सोचते उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा, उसमें हाथ डालकर एक कपड़ा निकाला। सकीना का वही दुपट्टा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? सिराजुद्दीन ने अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर न पहुंच सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन तक ले आया था? क्या वो उसके साथ ही गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठा ले गए?
0: सिराजुद्दीन के दिमाग में सवाल ही सवाल थे, जवाब कोई भी नहीं था। उसको हमदर्दी की जरूरत थी, लेकिन चारों तरफ जितने भी इंसान फैले हुए थे सबको हमदर्दी की जरूरत थी। सिराजुद्दीन ने रोना चाहा, मगर आंखों ने उसकी मदद न की। आंसू न जाने कहां गायब हो गए थे। 6 रोज बाद जब होशो हवास किसी कदर दुरुस्त हुए, तो सिराजुद्दीन उन लोगों से मिला जो उसकी मदद करने के लिए तैयार थे।
1: आठ नौजवान थे जिनके पास लॉरी थी, बंदूकें थी। सिराजुद्दीन ने उनको लाख लाख दुआएं दी और सकीना का हुलिया बताया, गोरा रंग और बहुत ही खूबसूरत है, मुझ पर नहीं अपनी माँ पर थी, उम्र 17 बरस के करीब है, आंखें बड़ी बड़ी, बाल स्याह, दाहिने गाल पर मोटा सा तिल, मेरी इकलौती लड़की है, ढूंढ लाओ, तुम्हारा खुदा भला करेगा।
0: रजाकार नौजवानों ने बड़े जज्बे के साथ बूढ़े सिराजुद्दीन को यकीन दिलाया कि अगर उसकी बेटी जिंदा हुई तो चंद ही दिनों में उसके पास होगी। आठों नौजवान ने कोशिशें की, जान हथेलियों पर रख कर वो अमृतसर गए। कई औरतें, कई मर्दों और कई बच्चों को निकाल निकाल कर उन्होंने महफूज मुकामों पर पहुंचाया। 10 रोज गुजर गए, मगर उन्हें सकीना नहीं मिली।
1: एक रोज वो उसी खदमत के लिए लॉरी पर अमृतसर जा रहे थे कि 6 हरडा के पास सड़क पर उन्हें एक लड़की दिखाई दी। लॉरी की आवाज सुनकर वो बिदकी और भागना शुरू कर दिया। रजाकारों ने मोटर रोकी और सबके सब उसके पीछे भागे। एक खेत में उन्होंने लड़की को पकड़ लिया। देखा तो बहुत खूबसूरत थी, दाहिनी गाल पर मोटा तिल था। एक लड़के ने उससे कहा, घबराओ नहीं, क्या तुम्हारा नाम सकीना है?
0: लड़की का रंग और भी जर्द हो गया, उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन जब तमाम लड़कों ने उसे दम दिलासा दिया, तो उसकी वहशत दूर हुई और उसने मान लिया कि वो सिराजुद्दीन की बेटी सकीना है। 8 रजाकार नौजवानों ने हर तरह सकीना की दिलजोई की, उसे खाना खिलाया, दूध पिलाया और लॉरी में बिठा दिया। एक ने अपना कोट उतारकर उसे दे दिया, क्योंकि दुपट्टा न होने के बाइस वो बहुत

0: उलझन महसूस कर रही थी और बार बार बाहों से अपने सीने को ढांकने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थी।
1: कई दिन गुजर गए, सिराजुद्दीन को सकीना की कोई खबर न मिली। वो दिन भर मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन कहीं से भी उसकी बेटी का पता न चला। रात को वो बहुत देर तक उन रजाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआएं मांगता रहता, जिन्होंने उसको यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो चंद दिनों में ही वे उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन ने कैंप में उन नौजवान रजाकारों को देखा, लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। लॉरी चलने ही वाली थी कि उसने पूछा, बेटा बेटा, मेरी सकीना का पता चला?
0: सबने यक जबान होकर कहा, चल जाएगा चल जाएगा, और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया।
1: शाम के करीब कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था, उसके पास ही कुछ गड़बड़ सी हुई। चार आदमी कुछ उठा कर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी थी, लोग उसे ही उठा कर लाए हैं। सिराजुद्दीन उनके पीछे पीछे हो लिया। लोगों ने लड़की को अस्पताल वालों के सुपर्द किया और चले गए।
0: कुछ देर वो ऐसे ही अस्पताल के बाहर गड़े हुए लकड़ी के खंभे के साथ लगकर खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर चला गया। कमरे में कोई भी नहीं था, एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी थी। सिराजुद्दीन छोटे छोटे कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा।
1: कमरे में दफतन रोशनी हुई। सिराजुद्दीन ने लाश के जर्द चेहरे पर चमकता हुआ दिल देखा और चिल्लाया, सकीना सकीना सकीना।
0: डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? सिराजुद्दीन के हलक से सिर्फ इस कदर निकल सका, जी मैं इसका बाप हूं।
1: डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो।
0: सकीना के मुर्दा जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई। बेजान हाथों से उसने इजार बंद खोला और शलवार नीचे सरका दी।
1: बूढ़ा सिराजुद्दीन खुशी से चिल्लाया, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है।
0: डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्क हो गया। दोस्तों, ये थी सादत हसन मंटो की बेहद संवेदनशील कहानी, खोल दो।
1: उफ, पिघलते शीशे की तरह इस कहानी का एक एक शब्द दिल और दिमाग को पिघला गया है। ऐसा लग रहा है मानो दिल में वेदना का स्वर चीत्कार कर रहा हो। दिल और रूह दोनों जख्मी से जान पड़ते हैं।
0: सच, मंटो साहब की ये मार्मिक कहानी खोल दो विभाजन और उस दौरान हुई अमानवीय हिंसा का एक रोंगटे खड़ा कर देने वाला दस्तावेज ही तो है। दोस्तों, खोल दो शब्द के दो अर्थ यहाँ पर अगर आप देखें

0: तो जो मौन व्यंजना इसमें समाई हुई है कि एक तरफ डॉक्टर की ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोलने की मासूमियत दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ वहशी दरिंदों द्वारा औरत के साथ किए जुल्म की विभीषिका जो है वो भी नज़र आती है।
1: हाँ, जीवन की सांसें हार कर भी उन्होंने अदब के दामन में जीत के वो किस्से टांगे जो युगों युगों तक पाठकों के दिल में हलचल पैदा करते रहेंगे।
0: सच, उनकी कहानियों को पढ़ते हुए मंटोमेनिया से खुद को बचाना मुश्किल है।
1: एकदम सच। आज जब मैं मंटो साहब की कहानियों को पढ़ रही हूँ, उनके लिखे हुए अफसानों को पढ़ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि मंटो किंगडम में आप अपने आप को पाते हैं और उसका हिस्सा बन जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: है ना?
0: क्योंकि वो समाज की कहानियाँ होती हैं ऐसी जो हमारे आसपास फैली हुई होती हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करके नेहा जी बढ़ जाते हैं आगे की नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन मंटो ने खुद को इससे बचाया नहीं, बल्कि उसमें वो डूब गए और उसमें से जो बहुत सारी बातें थी, भावनाएं थी, जज्बात थे, एहसास जो छुपे हुए थे और जो सच्चाई थी, वो निकाल कर बाहर उसी रूप में हमारे सामने खड़ी कर दी।
1: 18 अगस्त 1954 को उन्होंने जफर जुबैरी की ऑटोग्राफ बुक पर लिखा था, यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है। उनके सीने में कहानी लेखन के सारे रहस्य और राज दफन हैं। वो मानो मिट्टी के नीचे लेटा सोच रहा है कि वो बड़ा कहानीकार है या खुदा।
0: देखिए, 18 अगस्त 1954 को वो खुद ये बात लिखते हैं मंटो साहब, और इसके कुछ ही महीने बाद यानी 18 जनवरी 1955 को झूठी दुनिया का जो सच्चा अफसाना निकार था वो सदा के लिए खामोश हो गया। और नेहा जी
1: जी,
0: आज जब मंटो साहब का जिक्र हम कर रहे हैं अपने किस्सा गोई प्रोग्राम में और उनकी कहानी को जब हमने पढ़ा, तो वो जो टीस थी, वो जो एक सोच उभरी, वो ज़रूर हमारे श्रोताओं के दिलों तक भी पहुंची होगी। वो सन्नाटा जो गूंज रहा था, उसमें बहुत कुछ छुपा हुआ था, तो उन रहस्यों को हमारे जो श्रोता हैं वो ज़रूर सुलझाने की कोशिश करेंगे और वो ये बताएंगे कि उन्हें हमारा ये आज का कार्यक्रम कैसा लगा।
1: और ये बताने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया पे जो हम पोस्टर्स अपलोड करते हैं उसके कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर भी आप अपने मैसेज को टाइप करके भेज सकते हैं, चाहे तो वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा नंबर नोट करिए, हमारा नंबर है
0: 800-492-6250। तो दोस्तों, किस्सा गोई के एक और नए रोचक अंक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।
1: नमस्कार।
0: किस्सा गोई,
2: किस्सा गोई, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था सआदत हसन मंटो की कहानी खोल दो पर। वाचन स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर के थे, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, जिंदगी का नाम है चलते रहना। रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितने ही मोड़ क्यों ना आएं, हमें अपने कदम रोकने नहीं हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार कोशिश करते रहते हैं। हमें हार मिले तो उससे भी सीखना चाहिए, जीत मिले तो उत्साहित होना चाहिए, लेकिन सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए। कभी रास्ते आसान होते हैं, कभी कदम लड़खड़ाते हैं, कभी लगता है कि मंजिल बहुत दूर है, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि एक एक कदम आगे बढ़ाने वाला इंसान ही आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचता है। आइए एक खूबसूरत गीत के साथ खुद से वादा करें कि रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं और कोशिश करना कभी

बिल्कुल श्रोताओं, जीवन चलने का नाम है और हमें यूं ही चलते रहना है, और ऐसे ही चलते रहने से हमें अपनी मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम, जो कि है चित्रपट संगीत। कीजिए बस थोड़ा सा इंतज़ार।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है चित्रपट संगीत कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं नमस्ते लंदन फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान और कृष्णा ने। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

रांझना, यह है उस फिल्म का नाम जिसका गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। आवाजें हैं जावेद अली और कीर्ति सरगतिया की। गीत इरशाद कामिल का है, संगीत है ए आर रहमान का।

आजा नच ले। आइए सुनते हैं इस फिल्म में राहत फतेह अली खान को। गीत के बोल जयदीप साहनी के हैं और इसकी धुन बनाई है सलीम सुलेमान ने।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं चित्रपट संगीत। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह और मुस्तफा अजीज नाज। गीत है नासिर फराज का और इसकी धुन बनाई है शैल प्रीतेश और नितिन शंकर ने।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं ओम शांति ओम फिल्म का गाना, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार विशाल शेखर।

इस गीत के साथ ही आज का चितपर संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर बाद होगा हमारा अगला कार्यक्रम, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम के आरंभ में आपको सुनवाने जा रहे हैं चंद्रू आत्मा के स्वर में भजन। रचना है कबीर दास की।

आबिदा परवीन के गाए इस सूफी गीत के साथ ही आज का सबरस कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार संध्या हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। नेपाल तिब्बत सीमा पर अचानक भीषण बाढ़ में 46 लोगों की मौत, 100 से अधिक भारतीयों सहित लगभग 500 लोग लापता। भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों में तेजी आने के साथ ही हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश ने पड़ोसी देश में बाढ़ के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए तैयारियां तेज की। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। पेचिंग में सीमा वार्ता के 25वें दौर में 8 सूत्रीय सहमति बनी। ओणम और ईद मिलाद हर्षोल्लास से मनाया गया। और क्रिकेट में मेजबान श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन दूसरी पारी में 6 विकेट पर 229 रन बनाए। मैच पर भारत की पकड़ मजबूत। और अब समाचार विस्तार से। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटेकोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा तथा धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा। एक रिपोर्ट।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851316807 और दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 9779091075000। दूतावास ने बताया कि वो बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारत नेपाल को जल्द से जल्द राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते

0: हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: नेपाल में बाढ़ के बाद गंडक नदी में जलस्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के 6 जिलों पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी स्थिति पर लगातार और करीबी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम चंपारण के बगहा और वैशाली जिले के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से जल्द सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और जल साधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि फिलहाल गंडक नदी का जलस्तर अपेक्षाकृत कम है, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। हालांकि स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए संभावित जल प्रवाह को देखते हुए वाल्मीकि नगर बराज से 2.5 लाख क्यूसेक तक पानी छोड़े जाने की संभावना है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है।
2: उस पर हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
0: आपदा मोचन बल के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी ने बताया कि बिहार में 9 टीमें तैनात हैं और कई अन्य टीमें अलर्ट पर हैं।
3: मानसून के सीजन में हमारी कुछ टीमें पहले से ही प्रिपरेशन थी। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि फ्लड का पानी जो नेपाल में है वो इंडिया में एंटर करेगा, तो उसके बाद यहाँ पे भी फ्लड की सिचुएशन बन सकती है। उसके मद्देनजर हमारी टीमों को वहाँ पे भेजा गया।
0: इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृह मंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। वहीं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। नेपाल में अचानक बाढ़ के कारण दोनों जिलों में गंडक और नारायणी नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण कल दक्षिण उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में भी तेज वर्षा की संभावना है। कल दिल्ली में भी वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग यी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया और 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे के समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि व्यस्ततम रेल लाइनों को 4 लेन में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं जो तकरीबन 11,000 किलोमीटर तक फैले हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली हावड़ा, हावड़ा चेन्नई, चेन्नई मुंबई, मुंबई दिल्ली, दिल्ली चेन्नई, मुंबई हावड़ा और दिल्ली गुवाहाटी 7 व्यस्ततम रेल मार्ग हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उच्च शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जारी निर्देशों पर हुई प्रगति का जायजा लिया गया और चल रही पहलों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने और प्रभावी ढंग से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने आज दिल्ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रथम 2,500 पात्र महिला लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र सौंपे। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि ये महिलाओं के सशक्तिकरण, कल्याण और सम्मान की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि देश की प्रगति के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण आवश्यक है।
4: एक अगस्त से लेकर के आज तक 9,22,000 बहनों ने इस योजना में अपना नाम रजिस्टर किया। इस दिल्ली लक्ष्मी योजना में पहली 2,500 बहनों को हमने अप्रूवल सर्टिफिकेट सौंपा है, क्योंकि ये पहली

0: जिन्हें इस योजना का लाभ मिलने जा रहा है।
1: मुंबई पुलिस ने एमपीएससी की ड्रग इंस्पेक्टर परीक्षा का प्रश्न पत्र कथित तौर पर लीक होने के मामले में महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग के 3 अधिकारियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अदालत ने सभी 6 आरोपियों को बुधवार तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति कल रायपुर में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित करेगी। इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 200 लोगों को आमंत्रित किया गया है। मेघालय सरकार ने स्कूली बच्चों में बुनियादी पठन कौशल को बेहतर बनाने और सीखने की कमियों को दूर करने के लिए सीएम इंपैक्ट रीड एंड राइज मेघालय कार्यक्रम शुरू किया है। इसका लक्ष्य है कि हर बच्चा 7 वर्ष की आयु तक पढ़ना और लिखना सीख सके। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। चिकित्सा संघ ने लोगों को फ्लू के लक्षणों के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक्स नहीं लेने को कहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासी आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलम वासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है।
2: तिरुओणम के अवसर पर केरलम में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। ओणम पर्यटन सप्ताह के अंतर्गत राज्य के विभिन्न हिस्सों में सांस्कृतिक कार्यक्रम जारी हैं। जिला मुख्यालयों के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केरलम का सबसे बड़ा फसल उत्सव ओणम अब समापन की ओर है। तिरुअनंतपुरम से स्मृति एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सिद्धार्थ सिंह।
1: इस बीच कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केरलम मंडल में लगभग 4,40,000 पेंशन भोगियों को आज अगस्त 2026 की पेंशन उनके खातों में भेज दी। सामान्य तौर पर पेंशन का वितरण महीने की अंतिम तिथि को होता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी भी आज उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मिलाद जुलूस भी निकाले गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कश्मीर घाटी में इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और दरगाहों में हजारों श्रद्धालु जुटे और विशेष नमाज अदा की।
3: ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में पूरी घाटी में हजारों की तादाद में अकीदतमंद मस्जिदों और दरगाहों में जमा हुए और खसूसी नमाजों और मजहबी मजलिसों में शामिल हुए। सबसे बड़ी मजलिस श्रीनगर के दरगाह हजरत बल में हुई, जहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास निशानी को लोगों के सामने नुमाया किया गया और उनकी जिंदगी पर रोशनी डाली गई। ऐसी ही मजलिसें घाटी के दीगर इलाकों में भी हुई, जहां पर लोगों ने जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क की खुशहाली के लिए दुआएं की। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में छड़ी मुबारक यात्रा आज धार्मिक और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संचालित की गई। इसके साथ ही श्री बूढ़ा अमरनाथ जी यात्रा के समापन की औपचारिक शुरुआत हो गई। यात्रा समापन रक्षाबंधन के दिन होगा। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पत्रा देवी हुतात्मा स्मारक राष्ट्रीय एकता, साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसने गोवा की मुक्ति में योगदान दिया था। श्री सिंह ने स्मारक के उद्घाटन समारोह में कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों से लोग गोवा आए और इसकी स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। और अब खेल खबरें। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने फॉलो ऑन मिलने के बाद दूसरी पारी में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक 6 विकेट पर 229 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही श्रीलंका ने 16 रन की बढ़त ले ली है। श्रीलंका की पहली पारी में 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। भारतीय टीम श्रृंखला में 1-0 से आगे है। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन में वीर चोटरानी और विल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। चोटरानी ने क्वार्टर फाइनल में मिस्र के मोहम्मद अल शेरबिनी को और विल्वन सेंथिल कुमार ने मलेशिया के

0: on day four after receiving follow-on from India in the second and final test in Colombo. Sri Lanka now lead by 16 runs. Earlier in the day, the visitors enforced the follow-on after bowling Sri Lanka out for 290 in their first innings. India had declared their first innings at 503, powered by centuries from Dhruv Jorel and Devdutt Padikkal. The visitors are currently leading the two-match series 1-0. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive flash flood hits Nepal-Tibet border, claiming 46 lives and leaving nearly 500 people missing, including over 100 Indians. India assures all possible assistance as rescue and relief operations intensify in the Himalayan nation. Bihar and Uttar Pradesh step up preparedness amid possible rise in water levels of rivers after flash floods in the neighboring country. India and China reaffirm commitment to peace and tranquility in border areas, agree on 8-point consensus at 25th round of boundary talks in Beijing. And in men's cricket, India tighten grip on Colombo test as host Sri Lanka struggle at 229 for 6 in their second innings at stumps on day 4 after follow-on. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashwani hai. खबरों के साथ मैं शमीम अहमद। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक जबरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। 100 से ज्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन इस्तेहकाम के तहत अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलाद उन नबी जोशो खरोश के साथ मनाए गए। और मर्दों के क्रिकेट में कोलंबो टेस्ट में भारत ने अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। फॉलो ऑन के बाद चौथे दिन का खेल खत्म होने तक मेज़बान श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। अब खबरें तफसील से। नेपाल में आज सुबह भोटेकोशी दरिया में अचानक सैलाब आने से तिब्बत सरहद के नज़दीक रसुवा खित्ता इसकी जद में आ गया। तकरीबन 500 अफराद के लापता होने की इत्तला मिली है। इनमें 100 से ज़्यादा भारतीय शहरी भी शामिल हैं। सिक्योरिटी अहलकारों ने बताया है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों से अब तक 46 लाशें मिली हैं। इन अहलकारों ने बताया कि मुतासरा इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों से कम 93 अफराद को बचाया गया है। नेपाल के सियाहती बोर्ड के मुताबिक लापता अफराद में गैर मुल्की सयाह और नेपाली शहरी शामिल हैं। हुक्काम ने कहा है कि लापता अफराद में कम से कम 105 भारतीय शहरी और 37 गैर मुकीम भारतीय अफराद शामिल हैं। इनमें से बेशतर लोग तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। हुक्काम के मुताबिक लापता गैर मुल्की शहरियों में कई मुल्कों के अफराद हैं। इनमें बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, मलेशिया, जनूबी अफ्रीका और नीदरलैंड शामिल हैं। नेपाल के वज़ीर आज़म बालिंदर शाह ने मुतासरा ज़िलों के हुक्काम और विफाकी अरकान पार्लियामेंट के साथ मीटिंग में सूरत हाल और बचाव और राहत कार्रवाई का जायज़ा लिया। मुतासरा लोगों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी इमदाद की खातिर टोल फ्री नंबर 1234 जारी किया गया है। इसके अलावा हॉटलाइन नंबर 1144 और टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 पर भी जानकारी हासिल की जा सकती है। काठमांडू में भारतीय सिफारतखाने ने नेपाल में अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। सिफारतखाने ने कहा है कि इमदाद हासिल करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर +9779851316807 और +9779701705000 पर सिफारत खाने से राबता कायम कर सकते हैं। भारतीय सिफारत खाने ने कहा है कि वह अचानक सैलाब से मुतासर होने वाले भारतीय शहरियों के लिए जल्द बचाव और राहत की खातिर नेपाल सरकार के मुतालिका हुक्काम के साथ राबता कायम किए हुए है। इधर सरकारी ज़राए के मुताबिक भारत जितना जल्द मुमकिन हो सके नेपाल के लिए इमदादी सामान भेजने की तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नेपाल में ज़बरदस्त सैलाब से लोगों की अमवात और नुकसान होने पर

0: लोगों को मुबारकबाद दी। उधर कश्मीर वादी में भी ईद मिलाद उन्नबी पूरे जोश खरोश के साथ मनाई गई। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में आज चौथे दिन का खेल खत्म होने तक श्रीलंका ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 6 विकेट पर 229 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को पहली इनिंग्स में 290 के स्कोर पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। भारत की तरफ से प्रसिद्ध कृष्णा और मानव सुथर ने 3-3 विकेट लिए, जबकि सारांश जैन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। नेपाल तिब्बत सरहदी इलाके में अचानक ज़बरदस्त सैलाब आने से 46 अफराद की मौत हो गई। 100 से ज़्यादा भारतीय शहरियों समेत तकरीबन 500 अफराद लापता हैं। बचाव और राहत कार्रवाई तेज़ कर दी गई है। भारत ने नेपाल को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। पड़ोसी मुल्क में अचानक सैलाब आने के बाद दरियाओं में पानी की सतह में मुमकिन इजाफे के तनाजुर में बिहार और उत्तर प्रदेश में तैयारियाँ तेज़ कर दी गई हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों में अमन और इस्तेहकाम के तहत अपने अहद को दोहराया है और पीचिंग में सरहद के मामले पर 25वें दौर की बातचीत में 8 नुकाती इत्तेफाक राय पर रजामंदी जाहिर की है। आज ओनम और ईद मिलाद उन नबी जोश खरोश के साथ मनाए गए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: चर्चा का विषय है
2: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है परिचर्चा, भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधियों की बातचीत। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
3: हिमालय की ऊंचाइयों पर खींची एक ऐसी रेखा जिसे दोनों देश अपने अपने नक्शों में अलग अलग तरह से देखते हैं, एक ऐसी सीमा जो सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं है बल्कि सुरक्षा का सवाल है, संप्रभुता का सवाल है, विश्वास का सवाल है और शायद एशिया की भविष्य की राजनीति का भी सवाल है। भारत और चीन, दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश, दो प्राचीन सभ्यताएं, दो उभरती हुई वैश्विक शक्तियां, लेकिन इनके रिश्तों का सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा। साल 2020 के बाद पूर्वी लद्दाख में पैदा हुआ तनाव, गलवान की हिंसक झड़प, भारी सैन्य तैनाती और कई वर्षों तक चला गतिरोध, इन सब ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि भारत और चीन के बीच सीमा पर शांति केवल सीमा तक सीमित मुद्दा नहीं है। सीमा पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर व्यापार पर पड़ता है, कूटनीति पर पड़ता है, राजनीतिक विश्वास पर पड़ता है और पूरे द्विपक्षीय संबंधों की दिशा बदल जाती है। अक्टूबर 2024 में देपसांग और डेमचौक सहित 2020 के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग व्यवस्था को लेकर समझौते के बाद दोनों देशों के बीच बीजिंग में हुई भारत चीन विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं दौर की वार्ता एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में उभरी है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई इस मुलाकात का केंद्रीय बिंदु यही रहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही द्विपक्षीय संबंधों के विकास का मुख्य आधार है। आज की चर्चा में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या 25वें दौर की ये बातचीत सीमा विवाद के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस आधार तैयार कर पाई है या फिर ये प्रक्रिया केवल विश्वास की बहाली तक ही सीमित है। इस गंभीर और रणनीतिक मुद्दे पर गहन विश्लेषण के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास मेहमान, रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार सेवानिवृत्त और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्ष वी पंत। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल अशोक कुमार, आपके साथ शुरुआत करते हैं। देपसांग और डेमचोक जैसे फ्रिक्शन पॉइंट से पेट्रोलिंग और बफर जोन की व्यवस्था के संदर्भ में डोभाल और वांग ई की वार्ता को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या हम केवल टैक्टिकल डिसएंगेजमेंट यानी रणनीतिक रूप से पीछे हटने की स्थिति में हैं, या स्ट्रैटेजिक डीएक्सलेशन यानी सेनाओं की वापसी की दिशा में कोई वास्तविक प्रगति हो रही है? क्या लगता है आपको?
4: मेरे ख्याल से अगर आप इसका घटनाक्रम ध्यान से देखें तो अक्टूबर 24 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी और उसी मुलाकात के तहत एक स्ट्रेटजिक डायरेक्शन दोनों कंट्रीज के लोगों को, डिसीजन मेकर्स को दिया गया कि हमें इस मुद्दे को सुलझाना है। और उसके बाद पिछले जो 24वें मीटिंग

0: हुई थी एसआर रिप्रेजेंटेटिव्स की, उसमें तो उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम पहले जो अर्ली हार्वेस्ट वाले ऑप्शंस हैं उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो मुद्दों पर जहाँ पर ज्यादा विवाद है उसकी तरफ बढ़ेंगे। आपको पता ही होगा कि सिक्किम का इलाका और हिमाचल प्रदेश का इलाका और उत्तराखंड इलाका, ये तीन जगह ऐसे हैं जहाँ पर ज्यादा डिफरेंस नहीं है भारत और चीन के अप्रोच में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जहाँ विवाद है भी उस पर भी भारत अपने क्लेम के मुताबिक उन जगहों पर उसकी मौजूदगी है, जबकि चाइना का सिर्फ क्लेम है। और केवल उत्तराखंड में बारामती का मामला ऐसा है जहां पर उसमें ग्रेजिंग के दौरान में अक्सर हर साल आता है और फिर उसके बाद में वापस चला जाता है। इसके पहले दोनों देशों ने अपने नक्शे भी एक्सचेंज किए थे, दोनों को मिला करके हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को मिला करके मिडिल सेक्टर माना जाता है, उसके नक्शे एक्सचेंज हुए थे और दोनों ने अपनी पोजीशन डिलिनिएट की थी। तो वहां पर एकदम से क्लैरिटी है कि हम क्या क्लेम कर रहे हैं और चाइना क्या क्लेम कर रहा है, और गैप बहुत थोड़ा है जो रिजॉल्व किया जा सकता है। पहली बातचीत में हम वहां तक पहुंच चुके हैं, उस बातचीत के बाद में बाकी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, और इस बार चूंकि 12-13 सितंबर को इंडिया में ब्रिक्स की समिट होने वाली है, तो काफी कयास लगाए जा रहे थे कि इस 25वीं मीटिंग में कोई बड़ा निर्णय सामने आएगा जिससे इस दिशा में एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन में कुछ सुनने को मिलेगा। लेकिन जब बातचीत खत्म हुई कल बीजिंग में, तो वहां पर ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ। इनफैक्ट इतना ही नहीं, जो पहले लो हैंगिंग फ्रूट की बात हो रही थी उसको रिजॉल्व करने की, उसका भी जिक्र ना तो चाइनीज के स्टेटमेंट में आया ना भारतीय स्टेटमेंट में आया। मोटे तौर पे ये कहा गया कि 24वीं मुलाकात के बाद में दोनों देशों के बीच में प्रगति हुई है। ये चीज तो स्पष्ट नहीं है कि प्रगति किस किस फील्ड में हुई है, लेकिन पूरा टोन आप देखेंगे उस भाषा का, जो बातचीत के जो अंश बाहर सामने आए हैं, उसे लगा है कि दोनों देशों में एक आंतरिक इच्छा है कि इस मामले को स्ट्रेटजिक लेवल पर सुलझाया जाए। भारत ने ये चीज स्पष्ट मेंटेन किया है कि जब तक सीमाओं पर शांति नहीं रहती है, ये चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे कूटनीतिक क्षेत्र हो, या और भी कोई रिलेशनशिप का क्षेत्र हो, उसमें रिलेशंस स्टेबल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए उम्मीद है कि आगे आने वाले टाइम्स में जब WMCC की मीट होगी तो शायद इस दिशा में और प्रगति हो। मेरा मानना यह है कि दोनों देशों की तरफ इसको रिजॉल्व करने की इच्छा है, लेकिन दोनों की अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं और इसलिए इसका रिजोल्यूशन होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो विश्व में मौजूदा परिस्थिति चल रही है उसको देखते हुए मैं इस कदम को और जो स्टेटमेंट आए हैं उनको काफी पॉजिटिव तरीके से देखता हूं।
1: हर्षी, अगर आपसे समझना चाहें और अपने श्रोताओं को थोड़ा बैकग्राउंडर बताएं, तो 2020 में कन्फ्रंट्रेशन और गंभीर संकट रहा, 2024 में डिसएंगेजमेंट अरेंजमेंट्स की बात हुई, 2025 में डी एक्सकलेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और अर्ली हार्वेस्ट जैसे विचारों पर संस्थागत चर्चा हुई, इस वर्ष यानी 2026 में बाउंड्री डिलिमिटेशन, राजनीतिक समाधान की दिशा में स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत। क्या यह कहना सही होगा कि भारत चीन संबंध अब क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टेबलाइजेशन, पॉसिबल रिजोल्यूशन की तीन स्तरीय प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, या जैसा कि अभी जनरल अशोक बता रहे थे कि रिजोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल करना अभी जल्दीबाजी होगी? क्या कहेंगे आप?
2: मुझे भी ऐसा लगता है कि रेजोल्यूशन तो अभी कुछ दूर दिख रहा है, रेजोल्यूशन नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो क्राइसिस में ये संबंध थे और जो बॉर्डर इश्यूज जिस तरह से सेंटर स्टेज पर आ गए थे 2020 के बाद, उसके बाद ये सतत प्रयास मुझे लग रहा है भारत की तरफ से और चीन की तरफ से कि कैसे डीएस्केलेशन हो और उससे ज्यादा एक पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दोनों साइड्स में बने, क्योंकि संबंध जो भारत ने एक अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया था कि जब तक बाउंड्री में LAC में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी, तब तक ये मानना कि भारत और चीन के संबंध एक नॉर्मल दो देशों के जैसे संबंध होते हैं उस तरह से हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएगा। भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया था 2020 के बाद, और लगातार इस बात पर भारत अड़ा रहा कि जब तक हम बॉर्डर पर एक नॉर्मल सी नहीं देखेंगे, तब तक जो ब्रॉडर रिलेशनशिप है ये नॉर्मल नहीं होगी। तो मुझे लगता है उसको देखते हुए स्टेबलाइजेशन बॉर्डर पर हो गया है।

उसको देखते हुए एक कॉन्फिडेंस दोनों देशों से निकल कर आ रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं, और टॉप लीडरशिप दोनों देशों की चाहती है कि जो मुद्दे हैं, खासकर बॉर्डर का जो मुद्दा है, उसको पॉजिटिवली डील किया जाए। लेकिन रेजोल्यूशन अभी भी काफी दूर नजर आता है, क्योंकि रेजोल्यूशन के लिए कुछ जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो होने पड़ेंगे। एक तो दोनों देशों को स्ट्रेटिजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटिजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है।

0: स्ट्रेटेजिकली वो रेजोल्यूशन स्ट्रेटेजिकली कंपैटिबल होने पड़ेंगे। देखिए, अगर हम चीन की विदेश नीति को इस समय समझें, जैसा दुनिया में बहुत बदलाव आ रहा है और अमेरिका जिस तरह से अपने पार्टनर्स और एलाइज के साथ डील कर रहा है, उसको देखते हुए कहीं पर चीन को ऐसा लगता है कि अगर वो एक रिस्पॉन्सिबल पावर के तौर पर खड़ा नजर आएगा तो उसके संबंध अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर हो पाएंगे। तो चीन ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहा है कि वो उस तरह का एक एग्रेसिव प्लेयर नहीं है जिस तरह का वो कुछ सालों पहले नजर आता था, एटलीस्ट पॉलिसी वाइज। तो उसको देखते हुए वो ये चाहेगा कि भारत भी कुछ कदम बढ़ाए और भारत और चीन के बीच में कुछ सामंजस्य बने जो एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में ला पाए। अब सवाल यहाँ पर ये होगा कि क्या ये चीन की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है या ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखते हुए, और उस टैक्टिकल एडजस्टमेंट पर भारत कितना विश्वास कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ और भारत चीन संबंधों में एक बात जो लगातार होती रही है कि ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल मिसिंग रहा है। भारत क्यों और किन मुद्दों को लेकर चीन के ऊपर ट्रस्ट करे, ये बहुत बड़ा विषय है भारत चीन संबंधों में, और अभी तक मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां पैदा नहीं हुई हैं जहां पर भारत की तरफ से ये 100% कहा जा सके कि हम चीन को एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है जो ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का 25th राउंड हुआ है टॉक्स का, ये उसी दिशा में संकेत दे रहा है कि दोनों देश ये चाहते हैं कि बॉर्डर पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, और इसी बात को कमेंट भी किया दोनों इंटरलॉक्यूटर्स ने, वांगी ने और अजीत डोवल ने। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इस बात के लिए एक दूसरे की तारीफ और प्रशंसा की कि दोनों देश कमिटेड हैं इस समय कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहे। यहाँ तक तो हम पहुंच गए हैं और ये मुझे लगता है पॉजिटिव डेवलपमेंट है पीपल टू पीपल टाइज के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ये हमको एक लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी।
1: जी हाँ, बिल्कुल जल्दीबाजी होगा ये कहना। मेजर जनरल, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम थोड़ी बात सीमा प्रबंधन की करें तो LAC की अस्पष्टता और विभिन्न अवधारणाओं के कारण अक्सर लोकल फ्लैश पॉइंट्स बनते हैं। इस बातचीत में बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर जो सहमति बनी है, क्या वो 1993, 1996 और 2013 के द्विपक्षीय समझौतों के ढांचे को पुनर्जीवित कर पाएगी, या आपको लगता है कि एक नया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने की आवश्यकता है?
2: हमारे पास में 1993, 1996, 2005 और 2013 में जो एग्रीमेंट्स हुए थे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स डिसाइड हुए थे, उन्होंने बहुत हद तक दोनों तरफ की सेनाओं को ग्राउंड पर भी आपस में एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करने से बहुत हद तक रोका है। 2020 के गलवान क्लैश में, हालांकि ये बहुत दुखद घटना हुई है, बावजूद इसके दोनों तरफ से किसी ने भी आर्म्स का, शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। हम लोगों ने तो रायट कंट्रोल इक्विपमेंट होता है उसका भी इस्तेमाल नहीं किया था, चीन ने उनका इस्तेमाल किया, पहले से तैयार हुए लेजर्स का इस्तेमाल किया और इस तरह से हमको वहां पर थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन मोटे तौर पर जहां पर भी चाइनीज ट्रांसग्रेशन होता है या दोनों तरफ के पेट्रोलों में क्लैश होता है, मोटे तौर पर वो चीज ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है, धक्का मुक्की होती है, पुश होता है, बट फायरिंग के जैसे केसेस जो सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दें वो अभी तक सीमित रहा है। लेकिन गलवान वाला जो क्लैश था उसने इन आत्मविश्वास के पॉइंट्स पर एक नया मेजरमेंट लाने की कोशिश की है, और हमको जरूरत है कि हम अपने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं और जो बॉर्डर पे क्लैश होते हैं उनको हैंडल करने के तरीकों में और पॉजिटिव डेवलपमेंट लाएं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे क्लैश होते हैं, अगर वहां पर कोई भी लोकल कमांडर बहुत मैच्योर नहीं है और अपने देश द्वारा किए गए एग्रीमेंट्स को फुल्ली ऑनर नहीं करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को नहीं मानता है और इनएडवर्टेंटली या थोड़े से उग्रवादिता की वजह से गोली चल जाती है, तो जाहिर है दूसरा पक्ष भी उसका रिस्पॉन्ड करेगा और वह मामला काफी तूल पकड़ सकता है। कभी कभी वो मामला टैक्टिकल लेवल से बढ़ करके स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट के लेवल तक जा सकता है। तो इसलिए अब जरूरत है कि हम इस चीज पर और संजीदगी से काम करें, और उस संजीदगी को ग्राउंड पर उतारने का मेरी समझ से सबसे बढ़िया मॉडल यह है कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करें। बॉर्डर का जो रिजोल्यूशन है वो तो लॉन्ग टर्म इशू है, उसके अपने बहुत ढेर सारे चैलेंजेस हैं, बट मेरा मानना यह है

0: कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को अगर दोनों देशों में पॉलिटिकल विल हो तो उसको डिलिनिएट करना और ग्राउंड में आइडेंटिफाई करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं।
1: जी
0: लेकिन मुझे लगता है मौजूदा समय में दोनों देश के सबसे पावरफुल लीडर्स हिस्ट्री में एक साथ हैं, शी जिनपिंग का चाइना में कंट्रोल एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी की इंडिया में लोकप्रियता और जो पॉलिटिकल पावर है, अगर दोनों में एक पॉलिटिकल विल हो तो मेरे ख्याल से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिलिनिएट करके डिमार्केट करके आगे बढ़ना कोई असंभव सी चीज नहीं लगती। मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारे दोनों देशों में वो विश्वास की कमी है, और इसका जीता जागता उदाहरण आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने पाकिस्तान के अगेंस्ट लॉन्च किया था, उसमें चीन का कोई लेना देना नहीं था, बावजूद इसके चीन ने पूरा सेटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड करना, सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करना, वहां पर कमांड कंट्रोल सेंटर एस्टेब्लिश करना, हर तरह की मदद पाकिस्तान को की। और इस समय ये माना जा सकता है कि जो वेपन सिस्टम चीन में है वो पाकिस्तान को भी अवेलेबल होंगे, सबमरीन्स मिल रहे हैं, ढेर सारी चीजें हो रही हैं, और ऐसे में भारत का चीन के इंटेंशन पर विश्वास करना और भी मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगी, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी दोनों देश डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेंगे, तब तक इस मुद्दे पर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो सकती है, पोस्चरिंग हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर हकीकी बदलाव होना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एक छोटी सी मुझे आशा इसलिए दिखती है
1: जी
0: कि इस समय जो विश्व में बदलाव हो रहे हैं, जो ग्रुपिंग्स बन रही हैं डिफरेंट कंट्रीज की रीजनल सिक्योरिटी में, जो यूएस का अप्रोच चल रहा है, और कभी कभी तो ब्रिक्स को नाटो के अगेंस्ट एक बुलवर्क भी माना जा रहा है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया का एक साथ आना उसके विरोध में खड़ा हो सकता है। तो अगर एक इंटरनेशनल कंपल्शन हुआ और इस कंपल्शन को रशिया, चाइना और इंडिया तीनों के अपेक्स लीडर्स ने, यानी प्रेसिडेंट पुटिन, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने समझा, आपसी विश्वास को बढ़ाया और एकजुट हुए, जो उसका स्पायरल बेनिफिट होगा वो आपसी संबंधों में भी होगा, वो रिश्ते को रिजॉल्व करेगा, इंडिया और चाइना के बढ़ते हुए रिश्ते, इंडिया पाकिस्तान के बीच के डायलॉग को भी बेहतर कर सकते हैं, रशिया, चाइना और इंडिया के जो रिलेशनशिप में अगर बेहतरी हुई तो उससे भी इंडिया चाइना के रिश्ते को फर्दर इम्पेटस मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि मौजूदा समय में विश्वास की जो कमी है उस पर काम करना जरूरी है, साथ ही साथ एलएसी को डिलिनिएट करना, उस पर काम होना चाहिए, बॉर्डर रिजोल्यूशन वो तो थोड़ा सा बाद में ही रखना पड़ेगा।
1: प्रोफेसर पंत, अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएं तो भारत का स्पष्ट रुख रहा है कि जब तक सीमा पर शांति नहीं, तब तक अन्य द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं हो सकते। इसके विपरीत, चीन व्यापार और कूटनीति को सीमा विवाद से अलग रखने की बात करता है। 25वें दौर की इस बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि भारत अपनी इस लिंकेज नीति पर अडिग रहने में सफल रहा है?
2: मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने ये तो कन्विंस चीन को कर दिया है कि जो संबंध है भारत चीन के, इनको टुकड़ों में नहीं देख सकते, इनको अलग अलग डिस्टिंक्ट एंटिटीज के तौर पर नहीं देखा जा सकता। तो मुझे लगता है उसी का मतलब एक तरह से इस बात पर अग्री करने लगा है कि दोनों साइड्स को पॉलिटिकल सेटलमेंट करना चाहिए और बाउंड्री का, और वो ही दूरगामी इंटरेस्ट है दोनों साइड्स के, वो पूरे कर सकता है। हमने ये भी सुना भारतीय एनएसए को, डोवल साहब को ये कहते हुए कि लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत और चीन दोनों पार्टनर्स हैं, और जो एक प्रिडिक्टेबल फॉरवर्ड लुकिंग इंडिया चाइना रिलेशनशिप है ये महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए, और जिसका जिक्र अभी हुआ कि दुनिया बदल रही है, और उस बदलती हुई दुनिया में भारत और चीन अगर साथ काम करेंगे तो उससे बहुत कुछ बदल सकता है, और फेवरेबली जो बदल सकता है, क्योंकि दोनों का इंटेंट काफी हद तक ग्लोबली अगर हम देखें उसमें मिलता है कि हम दोनों देश ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, दोनों देश रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इम्पोर्टेंस है एक दूसरे के कमिटमेंट को देखें, और खासकर 2005 का जो अग्रीमेंट था पॉलिटिकल पैरामीटर्स का, गाइडिंग प्रिंसिपल्स का, जिससे कि एक फेयर, रीजनेबल और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल पैकेज सॉल्यूशन बनता, इसकी बात दोनों ने करी है। तो कहीं पर भारत अपनी इस बात से चीन को कन्विंस करने में सफल रहा है। पुराना जो ढर्रा है वो नहीं चल सकता कि हम बाउंड्री इशू है उस पर प्रोग्रेस ना दिखाएं, और दूसरी तरफ हम ट्रेड की और पीपल टू पीपल टाइज की और कल्चरल टाइज की, पोलिटिकल सिमेट्री की बात करें। तो मुझे लगता है वहां पर जरूर ये प्रोग्रेस हुई है, लेकिन

0: प्रोग्रेस अभी भी आधी है, क्योंकि रिटोरिकली दोनों देश एक साथ भले ही हो, लेकिन ऑन द ग्राउंड जो प्रपोजल्स हैं वो अभी भी अलग अलग तरीके से इवेल्युएट किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए बॉर्डर मैनेजमेंट की बात, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन की बात बढ़ चढ़ कर इस बार हुई, क्योंकि अगर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव होता है तो उससे परसेप्शन भी इम्प्रूव होता है कि दोनों देश कमिटेड हैं लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन के लिए। लेकिन अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक होता है, अगर वहां पर तनातनी बॉर्डर एरियाज पर चलती रहे और वो मीडिया कवर करता रहे, बार बार ये बताता रहे लोगों को कि कैसे सेनाएं हमारी आमने सामने खड़ी हैं, वो एक दूसरे के सामने लगातार आ रही हैं, तो उससे वो जो ऑलरेडी लो ट्रस्ट फैक्टर है, ऑलरेडी लो विश्वास है, वो और कम होता है। तो मुझे लगता है इस बात को एड्रेस करने की इस राउंड में जरूर कोशिश करी और एक बैलेंस आउटकम निकल कर आया। अब ये बैलेंस्ड आउटकम क्या हमको एक सीरियस नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी के तौर पर आगे ले जाने की क्षमता दोनों देश रखते हैं, ये मुझे लगता है आने वाला समय।
1: मेजर जनरल अशोक जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर और तैयारी पर थोड़ी बातचीत अगर की जाए तो चीन द्वारा एलएसी के पार थिएटर कमांड स्तर पर बुनियादी ढांचे जिनमें एयरलिफ्ट्स है, हेलीपैड्स है और कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने जवाब नहीं दिया, भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी सीमाई कनेक्टिविटी को भी मजबूत किया है। लेकिन एक रक्षा विश्लेषक के रूप में आपके अनुसार क्या सीमा पर यह ढांचागत संतुलन भारत को कूटनीतिक मेज पर अधिक बार्गेनिंग पावर यानी सौदा करने की शक्ति प्रदान कर रहा है? क्या लग रहा है आपको?
2: इसको अगर आप देखेंगे तो एक दोनों तरफ के टेरेन को देखना आपको बहुत आवश्यक है। जो चीन की तरफ का टेरेन है वो तिब्बतन प्लेट्यू है, और जबकि हमारे यहाँ बॉर्डर पे जाने के लिए हम ऊपर चढ़ाई करते करते जाते हैं। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि गलवान क्लैश के बाद में, या जब अक्टूबर 24 के बाद में फ्रिक्शन पॉइंट से डिसएंगेजमेंट का एग्रीमेंट हुआ था, तो फोर्सेस को पीछे ले जाने वाली सहमति अभी तक नहीं बन पाई है, क्योंकि जो चीन है उसका आर्गुमेंट था सेनाएं पीछे जाएं इक्वल डिस्टेंस में, जबकि अगर मान लो 20 किलोमीटर चीन की सेनाएं पीछे जाती हैं और 20 किलोमीटर हमारी पीछे जाते हैं, तो उसको 20 किलोमीटर कवर करने के लिए 2 घंटे लगेंगे और हमको 2 दिन लग सकते हैं। और भारत का मानना यह था कि दोनों सेनाओं का विड्रॉल हो, वो इक्वल रिस्पॉन्स टाइम के बेसिस पे हो, क्योंकि दोनों तरफ के टेरेन डिफरेंट है। तो एक तो वो रियलिटी होना जरूरी है। दूसरे क्या है कि चीन ने 2015 में थिएटर कमांड बनाया था, जो उसका वेस्टर्न थिएटर कमांड है, जो कंप्लीट चाइना बॉर्डर जो इंडिया को देखता है उसमें बनाया गया है। इसमें कुछ एक खामियां भी हैं, बट बावजूद इसके उसके ज्यादातर जो रिसोर्सेज हैं वो सिंगल कमांडर के तहत सेंटर्ड हैं। हमारे पास उस समय एक समय ऐसा था कि जिसमें हमारा जो चाइना का बॉर्डर है उसमें नॉर्दर्न कमांड भी शामिल था, वेस्टर्न कमांड भी शामिल था, सेंट्रल कमांड भी शामिल था, ईस्टर्न कमांड भी शामिल था। और उसके बाद में कुछ एडजस्टमेंट हुए जिससे थोड़ा सा वेस्टर्न कमांड को जो हिमाचल प्रदेश का इलाका था वहां से करके उसको सेंट्रल कमांड के अंदर लाया गया, बट अभी भी 3 कमांड्स में वो बाइफरकेटेड है। उसके अलावा उसमें एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एयरफोर्स एंड उनकी भी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन अब जो थिएटर कमांड की बात इंडिया में चल रही है, वहां पे कंप्लीट नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे एक सिंगल थिएटर होगा, तो वो भी फोर्सेस को ऑप्टिमाइज करेगा हमारे रिस्पांस मैकेनिज्म को बेहतर करने के लिए। दूसरा है कि हमने 2014 के बाद में पिछले 12 सालों में बॉर्डर्स में अभूतपूर्व सुधार किया है। अगर आप वहां पे जाएं तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप उसी इलाके में आ रहे हैं जहां पर उसकी स्थिति 2013-14 में हुआ करती थी। चाहे वो अरुणाचल का इलाका हो, चाहे लद्दाख का इलाका हो, टनल्स बन गई हैं, रोड्स बन गए हैं, रोड्स चौड़े हो गए हैं, लेटरल कनेक्टिविटी बढ़ गई है, एयरफील्ड्स आ गई एकदम फॉरवर्ड एरियाज में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया का भी बहुत जोर है। लेकिन यह है कि चूंकि हमने शुरुआत थोड़ी लेट की थी और इसलिए अभी हमको अपना फुल पोटेंशियल पाने के लिए और भी मिशन मोड में काम करना पड़ेगा। जोजिला का में सुरंग बन रही है, अभी जल्दी ही ऐसा होगा कि हमारा बॉर्डर का एरिया जो है और बॉर्डर के लोग जो हैं वो सब लैंड रूट से कनेक्टेड हो जाएंगे, कोई मौसम के मोहताज नहीं होंगे, और फोर्सेस को भी इस बेहतर कनेक्टिविटी से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूवमेंट करना इजी हो जाएगा। हमारा जो कैपेबिलिटी डेवलपमेंट है फोर्सेस का, जैसे एयरफोर्स की लिफ्ट कैपेबिलिटी है, हम ओन एयरक्राफ्ट C-295 बना रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर लॉन्गर डिस्टेंस में भी फोर्सेस को शिफ्ट करना पड़ा तो वो सब भी संभव हुआ। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेफिसिट था जिसमें चीन को एडवांटेज मिला था,

0: उसको गैप को खत्म करने के लिए इंडिया बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपको याद होगा अगर आप वर्बैटिम पढ़े, 2005 का जो एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें यह भी कहा गया था दोनों देशों के बीच में कि किसी फ्यूचर बॉर्डर सेटलमेंट में वहां की जो सेटल्ड पॉपुलेशन है हम उसका ध्यान जरूर रखेंगे। और इसलिए भारत के बहुत जरूरी है कि वाइब्रेंट विलेजेस के माध्यम से अपने फॉरवर्ड एरियाज में, क्लेम एरियाज में लोगों को बसाए। लेकिन लोग तभी बस सकते हैं जब वहाँ बुनियादी ढांचा, एजुकेशन की फैसिलिटीज, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज और वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज हो। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट्स को, सेना को, सबको एक साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी काफी काम हो रहा है, उसको और भी ज्यादा तीव्र दिशा देने की आवश्यकता है।
1: प्रोफेसर पंत आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि चीन की वर्तमान आर्थिक चुनौतियां, अमेरिका चीन की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता और इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की मजबूत स्थिति, इन वैश्विक कारकों ने क्या बीजिंग को भारत के साथ वार्ता के लिए आने पर प्रेरित किया है? और साथ ही साथ क्या ये चीन का एक टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या फिर लॉन्ग टर्म रणनीतिक बदलाव की दिशा में उठाया गया कदम? क्या लगता है?
2: जो आपका दूसरा सवाल है कि ये टैक्टिकल एडजस्टमेंट है या स्ट्रेटेजिक रियलाइनमेंट है, मुझे लगता है इसका जवाब तो कुछ समय बाद ही मिल सकता है हमको, जब हमको ये समझ में आए कि ये एक क्लियर पता चले कि चीन क्या, जो उसने पॉलिसी अप्रोच अभी लिया है, क्या इस पर वो अडिग रहेगा। क्योंकि चीन में हमने देखा है बहुत चेंजेस, बदलाव आते हैं और चीन की पॉलिसीज में बदलाव आते हैं, और वो बदलाव ऐसे होते हैं कभी कभी कि वो जो, जैसा भारत ने कहा है कि जो अग्रीड होता है उसको वो ओवरटर्न कर देते हैं। और इसीलिए जब जो गलवान इतना बड़ा शॉक हुआ वो इसलिए हुआ कि ये तो एक अग्रीड था कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर, जो अग्रीमेंट भारत और चीन के बीच में था, उसको ओवरटर्न करके वहां पर जो गलवान वाला एपिसोड हुआ, तो उससे ट्रस्ट में बहुत बड़ी कमी आई। अब देखना पड़ेगा लगातार आगे आने वाले समय में कि किस तरह से चीन बिहेव करता है, क्या चीन अपनी पॉलिसीज पर अडिग रहता है, क्या चीन भारत के साथ अच्छे संबंधों को बढ़ाने में कुछ गुड फेथ नेगोशिएट करता है। लेकिन मेरे ख्याल से जिसका जिक्र पहले भी हो चुका है, देखिए समस्याएं और भी हैं चीन के भारत संबंधों में, जैसा ऑपरेशन सिंदूर के समय में हुआ, और चीन और पाकिस्तान के संबंध जिस तरह के हैं, चीन जिस तरह से इंडियन ओशन में प्रेजेंस अपनी बढ़ा रहा है, वो सारी जो समस्याएं हैं वो अपनी जगह बनी हुई हैं। तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपनी कोई रणनीतिक जो उसकी समझ है भारत के बारे में, भारत के बढ़ते हुए, जिसका आपने जिक्र किया, भारत का प्रभुत्व है, प्रभाव है दुनिया में, वो बढ़ रहा है, और चीन के लिए बिल्कुल एक परेशानी का सबब होगा कि चीन जो अपना प्रभुत्व चाहता है इंडो पैसिफिक में, हिंद प्रशांत में, उसमें भारत जैसा देश अगर उसको चैलेंज करता है तो चीन साम दाम दंड भेद सब कुछ करके उसको कोशिश करेगा कि भारत एक सेकेंड टीयर पावर के तौर पर ही खड़ा रहे। तो
1: जी
2: मुझे लगता है इसीलिए ये बात को मानना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि चीन दूरगामी पॉलिसी अप्रोच भारत के लिए ले रहा है, और वो अपने संबंधों को इस कदर ठीक करना चाहता है भारत के साथ कि बॉर्डर इशू जो भारत चीन संबंधों के कोर में है उस पर वो उसको टारगेट करके उसको सॉल्व करे। तो मुझे लगता है कि जो बदलाव आ रहे हैं दुनिया भर में वो एक रोल प्ले कर रहे हैं, चीन के अंदर भी समस्याएं हैं, चीन बाहर से भी थोड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से टारगेट कर रहा है, और मुझे लगता है उसको देखते हुए चीन को भी लगता होगा कि एक अच्छा मौका है कि भारत के साथ अपने संबंधों को सुधार कर ट्रस्ट डेफिसिट जो है भारत के साथ उसको कम किया जा सकता है। लेकिन क्या ये हो पाएगा चीन से, और क्या भारत चीन को इस नजरिए से और अपना नजरिया भारत बदल पाएगा पूरी तरह से, ये मुझे लगता है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा आगे आने वाली जियोपॉलिटिक्स।
1: श्रोताओं, शांति और समाधान में अंतर होता है। शांति का अर्थ है टकराव न होना, स्थिरता का अर्थ है टकराव की संभावना को कम करना, लेकिन समाधान का अर्थ होता है उस मूल समस्या को समाप्त करना जिससे टकराव बार बार जन्म ले सकता है। भारत और चीन के सामने आज शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि क्या वे सीमा विवाद को केवल मैनेज करेंगे, क्या वे इतिहास के इस लंबे अध्याय को धीरे धीरे समाधान की दिशा में लेकर आगे बढ़ाएंगे। इसका जवाब केवल बीजिंग या नई दिल्ली की एक बैठक में नहीं मिलेगा, इसका जवाब मिलेगा सीमा पर ग्राउंड रियलिटी से, सैन्य तैनाती के फैसलों से, कूटनीतिक निरंतरता से और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति से। क्योंकि दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच शांति केवल द्विपक्षीय हित नहीं है, ये एशिया की स्थिरता से जुड़ा प्रश्न है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में एक सकारात्मक समाधान देखने को मिलेगा। मेजर जनरल अशोक कुमार जी और प्रोफेसर हर्ष वी पंत जी, चर्चा का विषय है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत आभार।
2: जय हिंद।
3: अभी आप सुन रहे थे भारत चीन संबंध, सीमा समाधान, शांति और स्थिरता पर विशेष प्रतिनिधि।

0: की बातचीत। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक मेजर जनरल अशोक कुमार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
1: चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं किस्मत फिल्म के गाने के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और शमशाद बेगम ने। गीत एसएच बिहारी का है और संगीत है ओपी नैयर का।

मेरे जीवन साथी, आइए सुनते हैं इस फिल्म में किशोर कुमार को। गीत के बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं और इसकी धुन बनाई है आर डी बर्मन ने।

लता मंगेशकर को आपने सुना फिल्म पेइंग गेस्ट में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार एसजी बर्मन। अब जो गीत श्रोताओं आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म वक्त से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे, गीतकार साहिर और संगीतकार रवि।

आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब जो गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म नील कमल से। गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफ़ी, गीतकार हैं साहिर और संगीतकार रवि।

कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाने जा रहे हैं उमराव जान फिल्म का गाना, जिसे गाया है आशा भोसले ने। बोल शहरयार के हैं और धुन बनाई है खयाम ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स, एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पंडित गोपाल मिश्र का सारंगी पर बजाया राग मारू बिहाग।

अभी आपने सुना पंडित गोपाल मिश्र का सारंगी पर बजाया राग मारू बिहाग। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है, मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। नेपाल तिब्बत सीमा के भोटे कोशी नदी में आई अचानक बाढ़ से अब तक 105 भारतीयों और 37 प्रवासी भारतीयों सहित करीब 500 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 46 शव बरामद किए गए हैं और 93 लोगों को बचाया गया है। अधिकांश भारतीय तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। अचानक आई बाढ़ से रसुवा और धादिंग जिले प्रभावित हुए। बाद में इसका असर नुवाकोट और चितवन तक पहुंचा।
1: लापता लोगों में ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका और नीदरलैंड्स के नागरिक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये शुरुआती आंकड़े हैं। प्रभावित क्षेत्र में खोज और बचाव अभियान जारी है। प्रारंभिक जांच के अनुसार भूकंप के कारण हिमस्खलन हुआ, इससे पिघली हुई बर्फ का पानी कोशी नदी में आ गया और अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ से रसुवा क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, गोरखा और चितवन के प्रभावित क्षेत्रों के सांसदों के साथ स्थिति पर चर्चा की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: काठमांडू में भारतीय दूतावास ने प्रभावित भारतीय नागरिकों की सहायता और जानकारी के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। हेल्पलाइन नंबर हैं 9779851318007 और 9779701075000 पर संपर्क कर सकते हैं। दूतावास ने बताया है कि वह बाढ़ प्रभावित भारतीय नागरिकों के शीघ्र बचाव और राहत के लिए नेपाल सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में आई बाढ़ से हुई जनहानि और तबाही पर दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में नेपाल के साथ है। उन्होंने कहा कि भारत इस आपदा से प्रभावित लोगों के लिए नेपाल सरकार के राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बचाव और राहत कार्यों के लिए दोनों देशों की टीमें आपस में मिलकर काम कर रही हैं। भारत ने बाढ़ से जूझ रहे नेपाल की सहायता के लिए 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री तथा आवश्यक दवाइयां भेजी हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत इस संकट की घड़ी में नेपाल और वहां के लोगों के साथ है। नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद बिहार में अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि स्थिति पर नजर रखने के लिए उच्च स्तरीय टीम गठित की गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से टेलीफोन पर बातचीत की। गृहमंत्री ने राज्य सरकार को स्थिति से निपटने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ से हुई तबाही पर चिंता व्यक्त करते हुए महाराजगंज और कुशीनगर के स्थानीय प्रशासन को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने तथा द्विपक्षीय संबंधों के स्वस्थ और स्थिर विकास के लिए अनुकूल वातावरण निर्मित करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। सीमा के मुद्दे पर भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच वार्ता का 25वां दौर कल पेइचिंग में आयोजित किया गया। चीन के विशेष प्रतिनिधि सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य और केंद्रीय विदेश आयोग के कार्यालय के निदेशक वांग जी तथा भारत के विशेष प्रतिनिधि और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत चीन सीमा मुद्दे पर गहन विचार विमर्श किया तथा 8 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की। दोनों पक्षों ने सीमा के मुद्दे पर समाधान के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए ने इन्फ्लुएंजा AH1N1 के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है। आईएमए ने कहा कि अधिकतर संक्रमण हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। दुनिया भर में रह रहे केरलम वासियों ने आज तिरुओणम का पर्व मनाया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह पौराणिक राजा महाबली के स्वागत और नई फसल के आगमन की खुशी में सभी केरलवासियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन ईद मिलाद उन नबी आज देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। हंगरी में पीएसए बुडापेस्ट स्वेश ओपन में भारत के वीर चोटरानी और सेल्वन सेंथिल कुमार सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। 11:10 हुए हैं, हमारी आज की ये सभा अब संपन्न होती है। कल की प्रातःकालीन सभा में 5:53 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।